FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवंत 1948 के श्रावण मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं और अब हमारा आज का प्रसारण प्रारंभ होता है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगा हर्ट्स पर। सुबह के 6 बजे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों

0: की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रूपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमी कंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगे और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगे। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रूपये और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रूपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण किया जा रहा था आकाशवाणी दिल्ली से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे समूह स्वरों में इस देशवंदना के साथ।

आराधना की शुरुआत की हमने समूह स्वरों में इस देश वंदना के साथ, और अब बढ़ते हैं भक्ति गीत की ओर और सुनते हैं सबसे पहले हरिओम शरण के स्वर में ये प्रभु वंदना।

0: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, और इस कार्यक्रम में अब हम सुनते हैं श्री राम भजन शर्मा बंधु के स्वर में।
1: जैसा अवसर

0: अनूप जलोटा के स्वर में इस भक्ति गीत के साथ ही आज की आराधना अब यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बात। आज आपको गेंदा फूल की खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी। वाचन स्वर है रुपेश कंवर का।
1: संगवारी और राम राम, जय जोहर। मैं हूँ अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रुपेश कुमार कंवर। बरसात के सीजन चला थे संगवारी हो, बरसात के सीजन में हमारे किसान भाई मन खेती किसानी के संग संग आनी बनी के बूता काम करते, और आए दिन अपन यही कथन कि जितके ज़्यादा हो अमन खेती किसानी के माध्यम से और अक्तिया बूता काम करी, ताकि हमारे गठरी में हर हमेशा 2-4 रुपया माठे चढ़े। अभी बेरा के बात करें किसान भाइयों, तो हमारे कतेक किसान भाई मन जब नंदिया के तीर में बसे हवा और जब उनका टीकरा हवा है, वन टीकरा में अभी बेरा गेंदा फूल की खेती करके अवैया बेरा में दोहरा दोहरा आमदनी उमन कमाबेज करी। संगवारी हो, आज खेती की बात में अपन कर गोर बात करबो गेंदा फूल के रोग नियंत्रण हमन कैसे करी। अपन जानते हवा संगवारी हो, बरसात के बेरा में कहीं कहीं जोन भी हमन फसल अपना थन में कई प्रकार के रोग व्याधि कीट लगे के संभावना बने रहते। बेरा रहता अगर हमन कीट के नियंत्रण या रोग के नियंत्रण अगर पावतन, तो जो फसल में नुकसान होवत है 40-50% वो नुकसान हमन बचा सकत हन। बरसात के बेरा में ये बात के और ज़्यादा चेत करे के आवश्यकता होते संगवारी हो, तो हमन अगर फूल की खेती करतन तो वहाँ विशेष करके हमारा नियंत्रण निगरानी करना चाहिए। काबर की लगातार पानी गिरत है संगवारी हो, जहाँ जल के भरा हो ही वहाँ हमार गेंदा फूल के नुकसान होकर संभावना बने रहते। प्रयास रहे पानी निकासी की उचित व्यवस्था बनाई, संगे संग नाली बनाई, ताकि वहाँ पानी के ठहराव बिल्कुल झन हो। संगवारी हो, गेंदा फूल में कई प्रकार के रोग कीट लगते, जो सबसे ज़्यादा हमारे

0: गेंदा फूल ला नुकसान पहुंचाते। उकठा रोग है, जड़ गलन है, ये सबसे ज्यादा हमारे जो फसल हवा है गेंदा फूल के वाला ज्यादा से ज्यादा नुकसान करे के प्रयास करते हैं। बचाव बेड बना, जिसे बचाव की बात करी संगारी हूँ, तो गेंदा फूल की खेती करत हन तो हमारा बेड बना के अगर खेती करत हन तो हम कहीं ना कहीं हमारा ज्यादा से ज्यादा हमन ये रोग है उकर से हम बचा सकते हैं। टाइकोडर्मा 5 किलोग्राम अगर माटी में मिला के खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो बीमारी हुआ थे, कीड़ा लगा थे, वो लगे के संभावना बहुत कम रहते हैं। इलाज की बात करी संगवारे हो, कापर ऑक्सोक्राइड 3 ग्राम लीटर छिड़काव करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उकठा रोग है, जड़ गलन है, ओकर से मन निदान पा सकत। माहो थ्रिप्स संगवारी हो, कहीं ना कहीं हमारे जो फसल हवा है गेंदा फूल के वाला सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते। इमिडाक्लोपिड 0.3 ml पानी में मिला के अगर छिड़काव करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो फसल हवा है ओकर से हम जो रोग लगे है ओकर से हम निदान पा सकते हैं। लाल मकड़ी प्रोपार गाइड 1 ml पानी में मिला के अगर स्प्रे करते हैं तो लाल मकड़ी है ओकर से हम निदान पा सकते। तोड़ाई और कमाई की बात करी किसान भाइयों, तो रोपाई के 50 से 60 दिन बाद हम अगर हम 2 से 3 दिन में तोड़ाई करते हैं 3 से 4 महीने तक आसानी से कर हम गेंदा फूल के आमदनी कमा सकते हैं। उपज की बात करी किसान भाइयों, अफ्रीकन गोंदा के 120 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ पाछू हम प्राप्त कर सकते हैं। देसी किस्म जो हवा है 80 से 100 क्विंटल एकड़ पाछू हम अच्छे से हम एकर आमदनी कमा सकते हैं। कई बार ऐसे होते कि हम गोंदा फूल की खेती करते हैं और हम ड्रिप पद्धति अगर नहीं अपनावत हन तो ओकरो माध्यम से भी कई प्रकार के रोग व्याधि घलो आते हैं। एक खातिर आदि ने अपन यही कथन कि हमें पानी भी बचाना हवा तो ड्रिप पद्धति के माध्यम से अगर हम गोंदा फूल की खेती करते हैं तो बीमारी आके बहुत कम संभावना बने रहते हैं। संगवारी हो, गोंदा फूल में कोनो प्रकार के रोग व्याधि कीड़ा आते तो हमन का करी कि जो उद्यान विभाग के उद्यानिकी विस्तार अधिकारी हवे उनका कर हमें संपर्क करना चाहिए और बताना चाहिए कि अभी बेरा हमारे खेत में जो गोंदा लगाए हैं वो मानी मानी के रोग व्याधि आते हैं, निदान हमन कौन प्रकार से करी। संगवारी कहीं कहीं अगर हमें बेरा रह जो रोग व्याधि आए, कीड़ा आए, ओकर से अगर निदान पावत हन तो जो फसल में नुकसान हुआ थे 40 से 50% नुकसान हम बचा सकत हन और कहीं न कहीं अवैया बेरा में गोंदा फूल की खेती के माध्यम से हम दोहरा से दोहरा आमदनी कमा सकत हन। राम राम, जय जोहार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 6:35 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं रामचरित मानस गान। संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का और मुख्य स्वर ए हरिहरन और वाणी जयराम के हैं।

श्री राम की कोई भी सीख, कोई भी तर्क लक्ष्मण के उनके साथ वन जाने के संकल्प को नहीं टिका सका, तो श्री राम को समर्पित छोटे भाई की अनुनय विनय माननी पड़ी। तब उन्होंने लक्ष्मण से जाकर माता की अनुमति ले लेने को कहा। हर्षित हृदय से लक्ष्मण माता के पास पहुंचे और उन्हें विस्तार से सब कुछ कह सुनाया। घटना चक्र की गति से माता सुमित्रा इस प्रकार सहम गईं, जैसे जंगल में लगी आग से हिरनी भयभीत हो जाती है। कैकेयी की करनी पर उन्होंने अपना सिर पीट लिया। श्री राम तथा सीता के प्रति लक्ष्मण के प्रेम और आदर तथा समर्पण की भावना से वो भली भांति परिचित थी। बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता है और तुम पर अथोर स्नेह रखने वाले श्री राम तुम्हारे पिता के समान हैं। जहां उनका निवास हो वही अयोध्या है। यदि वे वनगमन करें तो तुम्हारे यहां होने का कोई अर्थ नहीं है। गुरु, पिता माता, भाई देवता तथा स्वामी की

से सेवा करनी चाहिए। जो भी पूजनीय तथा प्रिय लोग हैं वे केवल राम के कारण पूज्य और प्रिय हैं। अतः श्री राम और सीता के साथ वन जाओ और जीवन को सार्थक करो। मैं बड़भागी हूँ जिसके पुत्र का श्री राम चरणों में ऐसा अनुराग है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, अतः वन में तुम पूरी निष्ठा मन वचन और कर्म से उनकी सेवा करना।

0: अभी हम रामचरित मानस गान का प्रसारण कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन। विषय है जीभ का सदुपयोग।
1: हम अपनी जिह्वा का उपयोग दो बड़े कामों के लिए करते हैं, एक तो वाणी के लिए और दूसरे स्वाद के लिए। व्यवस्थित जीवन के नाम पर दोनों ही कामों में उस पर नियंत्रण रखा जाना जरूरी रहता है, क्योंकि जैसे ही हमारा नियंत्रण उस पर से समाप्त हुआ, वैसे ही हम किसी न किसी प्रकार की हानि के लिए भेद्य हो जाते हैं। जीभ पर काबू रखने वाला आदमी सामाजिक व्यवहार में भी बहुत बड़ा बन सकता है और अपना स्वास्थ्य भी अपने हाथों में सुरक्षित रख सकता है। वाणी पर संयम न रखने वाले व्यक्ति के शत्रुओं की संख्या हर रोज बढ़ती जाती है। सभी प्रकार की बकबक और चकचक वाणी पर से नियंत्रण हट जाने के कारण ही होती है। यदि तू तड़ाक और गालियों का प्रयोग न किया जाए तो सैकड़ों झगड़े कम किए जा सकते हैं। गलत बहस का अंत दो में से एक व्यक्ति के बिल्कुल चुप हो जाने पर थोड़े बहुत समय में अनिवार्यतः हो जाता है। कहते हैं कि एक चुप 100 बोलतों को हराता है। बोलने वाला थक जाता है, चुप रहने वाला नहीं थकता। मौन व्रत का महत्व तो कितना अधिक है, इस बात को हम सामान्य सांसारिकों की तुलना में महात्माओं ने अधिक गहराई से जाना है। ऐसा व्रत रखना, बुरा नहीं बोलना तथा वाणी पर संयम रखना जैसे उद्देश्यों की ही चरम स्थिति है। मीठा बोलना और कड़वा न बोलना भी जीभ को स्वाद के साथ जोड़कर वाणी के नियंत्रित प्रयोग की ओर संकेत करते हैं। इसी प्रकार जबान पर लगाम रखना और जबान संभाल कर बोलना मुहावरे भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि जीभ को ढील देने से अनर्थ हो सकता है। मनुष्य के मन में बहुत प्रकार के विचार रहा करते हैं, लेकिन सभ्य मनुष्य अपने शिष्ट व्यवहार

के कारण अपने मन की हजारों गलत बातें अपनी जबान पर नहीं लाया करता। इस प्रकार बोलचाल पर उसका यह संयम ही है जो उसे दूसरों की नजरों में नहीं गिरने देता। वाणी पर संयम का एक पहलू यह भी है कि जिह्वा को सदा मस्तिष्क का अनुगामी होना चाहिए, अर्थात आदमी के दिमाग से उसकी जबान आगे नहीं चलनी चाहिए। सोचने से पहले ही कुछ बोलने वालों को अक्सर पछताते हुए देखा जाता है। अब जीभ के दूसरे बड़े उपयोग के बारे में सोचें। स्वाद के चक्कर में फंसकर हम बहुत कुछ ऐसा खा जाते हैं जो स्वास्थ्य के नियमों की दृष्टि से अहितकर होता है। स्वाद ही के कारण हम ठूस ठूस कर खाने की प्रवृत्ति के भी शिकार हो जाते हैं, जिसे सभी पैथियों वाले हानिप्रद बताते हैं। जीभ और नियत पर संयम रखने वाले, अर्थात खाने पीने के मामले में अपने को नियंत्रित रखने वाले, मतलब यह 36 प्रकार के व्यंजनों के बीच बैठकर भी ग्राह्य और अग्राह्य के संबंध में उपयुक्त समय और उचित मात्रा पर अपना वश रखने वाले व्यक्ति शारीरिक व्याधियों से दूर रहते ही हैं, दीर्घायु भी होते हैं। मेरे एक औपचारिक मित्र एक बार खांसी से परेशान होते हुए मुझसे बोले, मेरा गला बहुत खराब हो गया है, लगता है तबीयत और ज्यादा बिगड़ेगी। मैंने 4 प्लेट पकौड़ियां खा ली, बहुत ही खराब तेल था। मैंने उनसे पूछा, जब आपको पता चल गया तेल खराब है तो आप पकौड़ियां ज्यादा क्यों खाते चले गए? इस पर वे बोले, मेरा एक पुराना परिचित मुझे होटल ले गया था, मैंने सोचा कि कौन मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, पेमेंट तो वही करेगा, स्वाद स्वाद में खाता चला गया। इस उदाहरण को सुनकर कोई भी समझदार व्यक्ति कहेगा कि उन सज्जन के मस्तिष्क और जीव में भविष्य लाभ की दृष्टि से बिल्कुल तालमेल नहीं था। जीव मनुष्य के ही नहीं सभी प्राणियों के पास है, अंतर केवल उसके उपयोग और सदुपयोग का है। मनुष्यों में भी किसी की जीव विष उगलती है, किसी की वाणी से अमृत बरसता है, किसी की जिह्वा तामसी रहती है और किसी की सात्विक, किसी की जीभ पर सफेद झूठ नाचता है और किसी की जिह्वा पर सरस्वती का वास रहता है। किसी की जीभ को बुरी चीजों और बुरी बातों की चढ़ लग जाती है, जबकि दूसरों की जीभ उन पर थू थू और उनसे तौबा करती है। अपनी जीभ से हम किस प्रकार के काम लें यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। और यहाँ यह प्रश्न सूत्र निकलता है कि अपने दैनंदिन जीवन में हम जीव के वश में रहते हैं या जीव हमारे वश में रहती है।

आप सुन रहे थे चिंतन FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब हम आपको जानकारी देंगे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

आज सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सुबह। सुबह 7:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नव में और 10:30 पर नए तराने का प्रसारण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुनिएगा 8:30 पर और आपके पत्र पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे सुबह 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग का प्रसारण होगा सुबह 9 बजे। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे विधि विभाग एवं न्याय मंत्रालय। सुबह 9:55 और 11:55 पर प्रादेशिक समाचार रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक विविध भारती से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण होगा। संदेश टू सोल्जर्स रिले किया जाएगा आज शाम 4 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण किया जाएगा। 5:35 पर महिला

सभा कार्यक्रम में सामयिक चर्चा का विषय होगा बच्चों को स्क्रीन से दूर कर क्रिएटिव बनाएं। और इसी कार्यक्रम में क्रम उड़ान के अंतर्गत अमिता श्रीवास से भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। ग्राम सभा का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर, जिसमें बेरा के गोठ के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी दी जाएगी। 7:30 पर किसानवाड़ी कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जिसमें आज की बात का विषय होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किसानों के हित में। इसके बाद बरसात में कंदवा चरने एवं त्वचा संबंधी रोग साथ ही उनका निदान विषय पर चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे की भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। संचालक होंगे जीतू भैया। रात्रि 8:00 संसद समीक्षा का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से, और आकाशवाणी दिल्ली से ही रात 10:00 संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:15 पर हमारे स्टूडियो से, और शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे रात 8:30 पर। इन्हीं जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों का अनुप्रसारण करेंगे।

0: यूनां संघटनं कृत्वा मादकमुक्त भारतस्य निर्माणम् इत्यस्ति। लोकसभायां लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः 26-2000 पारितः। अस्योद्देश्यं तावत् परीक्षा प्रकरणेषु वञ्चनायाः निरोधाय कठोरदण्डविधानं सहैव द्रुतगति न्यायालयानां स्थापनम् इत्यस्ति। अनेन लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमे 24-2000 संशोधनं विधीयते। अस्मिन् विधेयके 10-वर्षात्मकः कारावासः, 10-कोटिरूप्यकाणां दण्डः, सहैव सिद्धापराधिनां सम्पत्तेः अधिग्रहणम् इत्यादीनि प्रावधानानि सन्ति। विधेयकानुसारं प्रत्येकं राज्यम् अथ च केन्द्रशासितप्रदेशः दैनन्दिनवादश्रवणाय विशेषद्रुतगतिन्यायालयानां स्थापनं करिष्यति। चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिकराज्यमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणेषु शीघ्रन्यायार्थम् एतत् संशोधनम् आनीतम्।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: राज्यसभायां 26-2000 राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। एतत् विधेयकं राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण अधिनियमे 170-21 संशोधनं करोति। अस्य विधेयकस्योद्देश्यं वन्दे मातरम् इत्यस्मै राष्ट्रगीताय अपि राष्ट्रगानेन समं वैधानिक सुरक्षा प्रदानम् इत्यस्ति। एतादृशेषु अपराधेषु 3-वर्षात्मकः कारावासः, द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुमर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै, सांस्कृतिकन्यासाय, सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिकप्रतिबद्धतां दर्शयति।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघस्थितिः दुरापद्यते। अस्माद्धेतोः 4 जनाः मृत्युमुपगताः, सहैव 4,00,000 जनाः प्रभाविताः अभवन्। श्रावणमासस्य वार्षिकी कावडयात्रा अद्यारभ्य प्रवर्तते। अस्यां यात्रायां भक्ताः गङ्गाजलमानेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वार, गोमुख, गङ्गोत्री इत्यादिषु तीर्थस्थलेषु गच्छन्ति। अस्याः विशालयात्रायाः सुव्यवस्थायै उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेशसर्वकाराभ्यां व्यापकप्रबन्धाः प्रकल्पिताः इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और अपराधियों की संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने

विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा

0: अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को और सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने कहा कि देश को उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेड इन इंडिया उत्पाद गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपए का अनुसंधान विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने बताया कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण किया जा रहा था आकाशवाणी दिल्ली से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: श्रोताओं, एक नई सुबह, नई उम्मीदों और नए संकल्पों के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम आज सुबह में। इतिहास के पन्नों में ऐसे अनेक व्यक्तित्व दर्ज हैं जिनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा दे जाता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में ऐसे ही दो महान व्यक्तित्वों को याद करें जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में रहकर देश और समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। आज सबसे पहले याद करते हैं डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी को। वे भारत की अग्रणी महिला चिकित्सकों में एक थी। उनका जन्म 30 जुलाई यानी कि आज ही के दिन सन 1886 को हुआ था। आज से करीब 150 साल पहले, जब लड़कियों का स्कूल जाना भी आसान नहीं था, उस समय उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। वे भारत की पहली महिला चिकित्सकों में गिनी जाती हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में ही नहीं, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। महिलाओं की शिक्षा हो, उनके अधिकारों की बात हो या फिर बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य की चिंता, हर एक क्षेत्र में उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया। उस समय समाज में कई ऐसी कुरीतियां थी जिनसे महिलाओं का जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होता था। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई और बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास किए। इतना ही नहीं, वे सार्वजनिक जीवन में भी आगे बढ़ी और देश की पहली महिला विधायकों में शामिल हुई। उन्होंने कैंसर के मरीजों के लिए बेहतर इलाज की जरूरत को बहुत पहले समझ लिया था। इसी सोच के साथ चेन्नई के एक कैंसर संस्थान की स्थापना भी उन्होंने की और इस स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो आज भी लाखों लोगों के इलाज का भरोसेमंद केंद्र है। श्रोताओं, डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता तभी सार्थक होती है जब उससे समाज का भी भला हो। शायद यही वजह है कि उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सचमुच उनका जीवन सेवा, संवेदनशीलता और दृढ़ संकल्प का एक प्रेरणादायी उदाहरण है। तो अब हम कार्यक्रम आज सुबह में आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, आप सुनेंगे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर अर्थात अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देवाधिदेव महादेव के पूजन का विशेष पवित्र माह सावन आज प्रारंभ हो रहा है। आज से पूरे माह भर प्रत्येक शिवालयों में भगवान महादेव की साधना आराधना में लोग तल्लीन होंगे। इन मंदिरों में अनेकों प्रकार के अनुष्ठान आदि होंगे, जिससे मंदिरों के आसपास सड़कों में विशेषकर सुबह के समय जन समुदाय अधिक होगा। अतः सभी प्रकार के वाहन चालकों से अनुरोध है, ऐसे स्थानों से गुजरते समय पूरी सावधानी के साथ चले, धीरे चले। साथियों, सावन की छटा ही निराली होती है। वर्षा की फुहारों के साथ सावन माह में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व होता है। सिर्फ शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के साथ साथ

अपने आसपास के प्रसिद्ध शिवालयों के लिए भी कांवड़ यात्रा निकालकर जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में जाते हैं। आप सभी कांवड़ यात्रियों की श्रद्धा भक्ति का अंतर मन से सम्मान है, किंतु कुछ सुझाव भी है। जब भी कांवड़ यात्रा में निकलें, बोलबम के जय घोष के साथ साथ सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा का मंत्र भी ध्यान रखें। पूरी सड़क में बिखर कर न चलें, कतार में चलें तथा कांवड़ का धारण कुछ इस प्रकार करें कि वह सड़क में आड़ा ना हो, अर्थात सड़क में एक कांवड़ यात्री कांवड़ की लंबाई लगभग 3 से 4 फीट की जगह घेर कर न चले, क्योंकि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से यह उचित नहीं है। ध्यान रखें, हमेशा कांवड़ का एक सिरा कांवड़ यात्री के सामने तथा दूसरा उसके पीछे हो, ताकि सड़कों में दौड़ रहे अन्य वाहनों को भी पर्याप्त स्थान मिले। मित्रों, हम इस

0: ध्यान रखें, हमेशा कांवड़ का एक सिरा कांवड़ यात्री के सामने तथा दूसरा उसके पीछे हो, ताकि सड़कों में दौड़ रहे अन्य वाहनों को भी पर्याप्त स्थान मिले। मित्रों, हम इस संदेश के माध्यम से आप सभी को यह याद दिलाना चाहेंगे कि शहर के चौक चौराहों में सिग्नल लाइट का समय अब प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रारंभ किया गया है। सतर्क रहें, धीरे चलें, ताकि चौक में सिग्नल देखते ही आप तैयार हो सकें। इसे नजरअंदाज भूलकर न करें, क्योंकि कैमरा 2400 घंटे सातों दिन जागता रहता है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का ट्रैफिक अपडेट। और अब हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति ने तो समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने का मार्ग चुना, यानी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने, और दूसरे ने देश को स्वतंत्र देखने का सपना अपने जीवन से भी बड़ा माना। तो हम बात कर रहे हैं अब क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ बोस की। उनका जन्म भी 30 जुलाई को हुआ था, सन 1882 को। जब देश अंग्रेजों की गुलामी में था, तब बहुत से नौजवानों की तरह उन्होंने भी ये तय कर लिया था कि अब अन्याय को चुपचाप सहना नहीं है। उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों का रास्ता चुना और देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन दिनों आजादी की लड़ाई केवल भाषणों या सभाओं तक सीमित नहीं थी। कई युवा ऐसे थे जो हर पल अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए काम कर रहे थे। सत्येंद्रनाथ बोस भी उन्हीं निर्भीक युवाओं में से एक थे। वे बंगाल के क्रांतिकारी संगठन युगांतर से जुड़े और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई। श्रोताओं, उनकी उम्र बहुत लंबी नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से जीवन में ये दिखा दिया कि देश प्रेम उम्र नहीं बल्कि हौसले से तय होती है। मातृभूमि के लिए उनका समर्पण और साहस आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जरा सोचिए, एक और डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी थी जिन्होंने सेवा और समाज सुधार का रास्ता चुना, और दूसरी ओर सत्येंद्र नाथ बोस थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दोनों की राह अलग थी, लेकिन मंजिल एक ही थी, देश और समाज का कल्याण। यही कारण है कि आज भी हम इन दोनों महान विभूतियों को श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते हैं। तो उन्हें सलाम करते हुए अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और बातें और भी हैं, कुछ संदेश भी है, लेकिन उसके पहले सुनवाते हैं आपको ये गीत मुकेश की आवाज में।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम आज सुबह में इन संदेशों के बाद। इन दिनों मानसून पूरे शबाब पर है। बारिश की फुहारें धरती को हरियाली से भर देती है, किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाती है और नदियों तालाबों को नया जीवन देती है। लेकिन ये मौसम हमसे थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी

की भी अपेक्षा करती है। यदि आप तेज बारिश में वाहन चला रहे हैं तो गति एकदम सामान्य से कम रखें। जल्दबाजी करने के बजाय सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचना अधिक महत्वपूर्ण है। आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, क्योंकि गीली सड़क पर अचानक ब्रेक लगाने से वाहन के जो चक्के हैं वे फिसल सकते हैं। यदि सड़क पर पानी भरा हो और उसकी गहराई का आपको अंदाजा ना हो तो उसमें अपनी गाड़ी ले जाने से बचें। ये किसी ना किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। टू व्हीलर चलाते हैं अगर आप तो हेलमेट जरूर पहने, और यदि आप कार चलाते हैं तो इस समय हेडलाइट चलाकर रखें, और याद रखें सीट बेल्ट लगाना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। और हेडलाइट जब आप जलाते हैं तो सामने से आने वाले वाहन को आप आसानी से देख सकते हैं, और सामने से आने वाला जो वाहन चालक है वो भी आपकी गाड़ी को आसानी से देख पाएगा। श्रोताओं, यदि बारिश इतनी तेज हो जाए कि सड़क साफ साफ दिखाई न दे तो किसी सुरक्षित स्थान पर कुछ देर रुक जाना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होगा। बारिश का ये मौसम हमें प्रकृति के और भी करीब ले आता है, इसलिए हम सभी मिलकर पर्यावरण की रक्षा का संकल्प भी लें। और हाँ, हम यदि यातायात के नियमों की बात कर रहे थे और बारिश में किस तरह से आपको वाहन चलाना है और सुरक्षित रहना है इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे थे, तो पैदल चलने वालों के लिए भी सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप पैदल चलते हैं सड़कों पर तो सड़क पार करने से पहले ट्रैफिक सिग्नल पर ध्यान दें। जिस दिशा के वाहनों के लिए हरी बत्ती जल चुकी हो उस दिशा में सड़क पार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। केवल पैदल यात्रियों के लिए मिले संकेत या फिर सुरक्षित अवसर पर ही सड़क पार करें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें और मोबाइल फोन या ईयरफोन में व्यस्त होकर सड़क पर ना चलें। ट्रैफिक नियम केवल वाहनों के लिए, वाहन चालकों के लिए नहीं बल्कि जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ट्रैफिक नियमों का पालन करके आप न केवल अपनी बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रखिए, सड़क पर थोड़ी सी सावधानी जीवन भर की सुरक्षा बन सकती है। तो जब बारिश के मौसम की बात चली है तो क्यों ना हम वृक्षारोपण भी करें। छोटे छोटे पौधे हम ले आए, घर पर भी लगाएं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सड़क चलते कहीं दूर किसी खाली जगह में भी वो वृक्षारोपण करते हैं, और कभी कभी बीच बीच में देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। और इसके साथ ही जब वर्षा जल का हम संरक्षण करें और पेड़ पौधों की देखभाल करें, जो प्लास्टिक है या कचरा है उसको नालियों और जो जल स्रोतों में ना फेंकें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। और छोटी सी जिम्मेदारी जल भराव जैसी समस्याओं को कम करने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको कहा कि नालियों में कचरा ना फेंके, और साथ ही अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, ये संदेश दें, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। हम अपने घर का कचरा उठाकर जो हमारे आसपास की जो नाली है या नाले हैं हम वहां पर फेंक कर आ जाते हैं। अपना घर तो हम साफ रखते हैं लेकिन सारी गंदगी हम बाहर जमा करते हैं, और वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होते होते फंसता है। और जब बारिश तेज होती है तब नालियां नाले अपने उफान पर होते हैं, और वो सारा कचरा जिस घर में भी पानी भर जाता है, जिन घरों में पानी भर जाते हैं जो निचले इलाकों में है, उन घरों में वो सारा कचरा अंदर

चला जाता है। तो प्रकृति को हम जो देंगे वही वो हमें वापस लौटाएगी। इसलिए सुरक्षित रहना और प्रकृति का सम्मान करना दोनों ही हमारे उज्जवल भविष्य की पहचान है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। और अब विदा दीजिए कार्यक्रम आज सुबह से अपनी रेडियो साथी श्वेता को और स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

कार्यक्रम में आपको पहला गीत सुनवाने वाले हैं हम सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म चौराहा से। गीतकार आनंद बख्शी हैं और बंदिश है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

ये गीत आपने सुना फिल्म चौराहा से सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की आवाज़ों में। सुनवाते हैं आपको अब कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है 1942 अ लव स्टोरी से, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की मधुर आवाज़ों में ये गीत है, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडा गांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन

0: 4447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। इन नगमों में अगला गीत लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाजों में। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। संगीत है राम लक्ष्मण का और गीतकार हैं इस गीत के रविंदर रावल।

और अब आपको सुनवाने वाले हैं हम फिल्म कभी हाँ कभी ना का ये गाना, जिसे लिखा है मजरूह ने, संगीत है जतिन ललित का और स्वर अमित कुमार के हैं।

आइए बढ़ते हैं अब कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर। इसीलिए आए हमने फिल्म जमाने से क्या डरना से। उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में गीतकार है समीर और संगीतकार है आनंद मिलिंद।

0: ये गीत आपने सुना उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। फिल्म का नाम था जमाने से क्या डरना। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे इस गीत के आनंद मिलिंद। और अब इस गीत के साथ ही सदाबहार नवमे कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर बाद हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का अनुप्रसारण करेंगे।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय

0: लाने के लिए किया गया है।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
2: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3,79,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूर संचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूर संचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानखत ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ

0: करते हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति

0: लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है। गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सिर्फ तेज रफ्तार नहीं, हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल विथ स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 इयर्स इन जेल। पोलिंग बिगिंस फॉर बाय इलेक्शंस टू 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। Bihar government decides to reopen closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. Annual Kanwad Yatra for Shravana month to begin today. And para-athlete Dilip Kavit wins gold while Mohammad Basil bags silver in men's 100-meter race at Commonwealth Games. The Lok Sabha has passed the Anti-Paper Leak Bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
3: The earlier bill and the amendment are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
2: Polling has begun for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Voting is taking place for Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh. In Bihar, voting is underway for the by-election to the Bankipur Assembly constituency in Patna. Our correspondent reports that voters have been arriving at polling stations since early morning to cast their votes.
4: Polling is progressing peacefully across all 422 polling booths of 164 polling stations in the Bankipur Assembly constituency. Polling will continue till 5 p.m. A traditional stronghold of Bharatiya Janata Party, the seat is witnessing a contest among 25 candidates this time. A total of 3,79,616 voters will decide the electoral fate of the candidates. Although the main contest is believed to be between BJP's Neeraj Kumar, Jan Swaraj's Prashant Kishore, and Rashtriya Janata Dal's Rekha Kumari. The

माटी के स्वर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय जोहार, राम राम। मैं हूँ श्वेता पांडे और चलिए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की, छत्तीसगढ़ी गीतों के इस फरमाइशी कार्यक्रम में। पहला जो गीत है वो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं दत्रेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना और लक्ष्मीना यदु। सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश दिवांगन, मधु, हिमांशु और अंकित दिवांगन। भाटापारा दत्रेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। छत्तीसगढ़ बावली मर्रा कोना से उत्तम कुमार कौशिक, बिहारी लाल, हरीश कुमार और शिवम कुमार कौशिक। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। पेंड्रा धनगवा बरपारा छत्तीसगढ़ से कैलाश काशीपुरी, चंदरबाई, सुरेंद्र, संजना, श्याम शंकर काशीपुरी। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन दिवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल दिवांगन। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर माटी के स्वर कार्यक्रम का पहला गीत बरसाती कौशिक और ईश्वरी बनर्जी की आवाज में।

आज की रिमझिम फुहारों के बीच आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये पहला गीत आपने सुना बरसाती कौशिक और ईश्वरी बनर्जी की आवाज़ों में। और अगला गीत है आशाराम झालू की आवाज़ में, और इसे सुनने के लिए फरमाइश भेजी है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। ग्राम पाहरा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बनछोर, चंद्र किरण प्रीति छाया बनछोर, मगरलोड जिला धमतरी से पुनुराम साहू, तेजस्वरी साहू, राजश्री और राजवीर साहू, भर्री टोला डोंडी बालोद से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली गौतम, खेरथा बाजार गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश, धनवंतिन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र और व्रजकांत सारथी, बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना, अंशु और आशुतोष अंगारे। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत।

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम में अगला गीत है गंगाबाई की आवाज में, और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजी है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, थनक्ष और आरू साहू ने। साथ ही तेलीपारा बिलासपुर से रजन साहू, बेबी ईशानी, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास, लुतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज, हटरी चौक बिलाईगढ़ से किकराम देवांगन, रजनी देवांगन, प्रियंका और रेणु देवांगन, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम, राधेश्याम, जितेंद्र साहू, मारवाड़ी कुआं,

टपारा से सिया राम, अश्वनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, अनीशा, रायपुर से नीलू मेघ, ग्राम बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति। तो आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर लीजिए गंगाबाई की आवाज़ में सुनिए ये छत्तीसगढ़ी गीत।

और अब छत्तीसगढ़ी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर में अगला गीत है कविता हिरकनी की आवाज़ में, और इसे सुनने के लिए अपनी फरमाइश भेजी है शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा, देबू और लभी श्रीवास्तव ने। इसी गीत को सुनना चाहा है रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, श्रेया जैन, कल्पना, सौरभ, शौर्य और शुभम जैन। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। पेंड्रा धनगवा बरपारा छत्तीसगढ़ से

कैलाश, चंद्रबाई, सुरेंद्र, संजना, श्याम शंकर, दरकेश, प्यारे लाल सोनवानी और बनवारी कोल और उनके साथी, चांदनी चौक, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन। तो लीजिए सुनिए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर माटी के स्वर कार्यक्रम का ये गीत कविता हिरकने के स्वर में।

तो श्रोताओं, ये गीत मोला जावन देना रे अलबेला मोर, कविता हिरकने के स्वर में आप सुन रहे थे। और इस गीत के साथ ही माटी के स्वर कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ की लोक धुनों, लोक भाषा और लोक संस्कृति की ये सुगंध यूं ही आपके जीवन में अपनापन और उल्लास घोलती रहे, इसी कामना के साथ कार्यक्रम माटी के स्वर, जो है छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम, हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय जोहार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के स्वर, आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। और अब कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को स्टूडियो में शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने का विषय होगा बरसात में कंदवा चरने एवं त्वचा रोग संबंधी रोग एवं उनका निदान। और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा शरीर में होने वाले तिल व मसों का कैंसर में परिवर्तित होने वाले लक्षणों की पहचान एवं निदान के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 92 और 3100 26। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 30 जुलाई 2026 और 31 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विधि एवं न्याय मंत्रालय।
1: We bring you a talk on India's new labor codes by Dr. Pradeep Kumar Jena, Director, Ministry of Labor and Employment. This talk was a part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: There are around 44 central acts in the country with various provisions which were, with the definitions varying in varying acts, like for example, the definition of wage was different in 13-14 different acts. Similarly, authorities were defined differently. So it was very difficult to actually comply to those provisions under the various 44 central acts. So what we did is that 29 of them were subsumed and made into 4 labor codes. 12 acts got repealed because they were very old and not relevant to the present context. 3 acts have been retained, which are of a very specific nature, so that have not been subsumed with the 4 labor codes. These codes were enacted by the parliament in 2019 and 20. Wage code was in 2019, and the rest 3 codes, code on social security, industrial relations code, and the code on occupational safety, health and working conditions code, that was also enacted in 2020. But this course got implemented on 21st November. There is a lot of stakeholder consultations going on. And finally, November last year, these codes were implemented. These are the overviews. 2019, code on wages were enacted that consulted 4 acts. This code has the provision of uniform definition of wages, universal minimum wages, and timely payment of wages. Wages related acts have been subsumed here and accordingly updated. Similarly, the code on industrial relations consolidates 3 acts. This simplifies the dispute resolution. This promotes industrial harmony and improves business environment. And the third is the OSH Working Conditions Code 2020 that consolidates the maximum 13 number of acts, which is related to the welfare and working conditions of the workers. The fourth is Social Security Code 2020 that consolidates 9 acts, and this is related to the social security provisions of the workers. And this code has the vision.

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on India's new labor codes by Dr. Pradeep Kumar Jena, Director, Ministry of Labor and Employment. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्याय विभाग। प्रायोजक थे विधि एवं न्याय मंत्रालय। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9:15 हो चुके हैं। अब हम विविध भारती प्रसारण सेवा केंद्र के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

0: गीता लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गाना, आवाजें अरिजीत सिंह, शादाब फरीदी और अल्तमश फरीदी की थी। गीत को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा था और धुन प्रीतम ने बनाई थी।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।

0: जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

रेखा भारद्वाज, विशाल ददलानी और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य थे और संगीत दिया था प्रीतम ने। इस गाने के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, उन्हें कोदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें उस गायक की जो कभी अपनी नर्मो नाजुक आवाज से आपको लुभाते हैं। तुझे तक, तक, तक।

0: waste of time.
1: कभी वो अपने मस्ती भरे अंदाज से आपको पैर थिरकाने पर मजबूर कर देते हैं।
2: देखा

आज है सुरीले गायक सोनू निगम का जन्मदिन। आइए आज के फनकार कार्यक्रम में बातें करें जाने माने गायक सोनू निगम की।

जीरो से हीरो तक सफर तय करने वाले सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता अगम कुमार दिल्ली के मशहूर स्टेज गायक थे। अपने पिता की उंगली थाम सोनू ने 3 साल की नन्ही अवस्था से ही गायन का सफर शुरू कर दिया। अपने पिता के मार्गदर्शन में ही सोनू निगम ने अपने करियर के आकाश में रंग भरने शुरू किए। दिल्ली की बर्थडे पार्टियों और विवाह समारोहों में गाना गाने से लेकर हिंदी फिल्मों में सफल पार्श्व गायन तक सफर तय करना सोनू निगम के लिए काफी जटिल और संघर्षमय रहा, लेकिन उनके आत्मविश्वास, लगन और उनकी प्रतिभा ने कामयाबी का बुलंद सितारा बनाया।

सोनू निगम के बचपन के दिन काफी संघर्ष में रहे। उन्होंने 12वीं क्लास तक दिल्ली में पढ़ाई की, उसके बाद पत्राचार माध्यम से पढ़ा और शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से संगीत की तालीम ली। दिल्ली के बाद सोनू निगम मुंबई आए और शुरू हुई उनकी जद्दोजहद। शुरुआत में उन्हें कई इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उन्होंने कई म्यूजिकल शो में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। बाल कलाकार के रूप में जब उन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया तो उनके पास पुरस्कारों की झड़ी लग गई।

अपने करियर की शुरुआत में सोनू निगम मोहम्मद रफी की आवाज में गाने गाया करते थे। धीरे धीरे वे मोहम्मद रफी की आवाज बन गए थे। टी सीरीज की रफी की यादें नामक एल्बम के लिए सोनू निगम ने मोहम्मद रफी के गीत गाना शुरू किया। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का अवसर दिया। बतौर पार्श्व गायक सोनू ने अपना पहला गीत गाया फिल्म आजा मेरी जान के लिए। उन्हीं दिनों वे रेडियो के लिए विज्ञापन बनाने लगे। साथ ही 1995 में एक टेलीविजन चैनल के लिए मशहूर कार्यक्रम सारे गामा का संचालन भी शुरू कर दिया। पलक झपकते ही ये कार्यक्रम कामयाबी के परचम लहराने लगा। इसके बाद सोनू निगम को फिल्म बेवफा सनम के लिए गाने का मौका मिला। गाना था

सोनू निगम की सफलता का सितारा जिस फिल्म से चमका वो फिल्म थी बॉर्डर। अनु मलिक के संगीत से सजी इस फिल्म का सोनू निगम का गाया गीत हिट हुआ और लोगों के होठों पर सज गया। संदेश

1999 में सोनू निगम का नॉन फिल्मी गीतों का एल्बम दीवाना रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने प्रेम गीतों में अपना जलवा दिखाया। मोहब्बत करने वाले जोड़े अपनी मोहब्बत का इजहार दीवाना एल्बम के गीतों से आज भी करते हैं।

नदीम श्रवण के संगीत से सजी फिल्म परदेश का सोनू निगम का ये गाना खूब मकबूल हुआ। ये दिल दीवाना गाने ने लोगों को दीवाना बना दिया।

के बाद मोहम्मद रफी की परछाई कहलाने का फैसला सोनू निगम ने बदल दिया और अपनी एक अलग खास पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी हर कोशिश कामयाब रही। उनके गायन का उच्च शिखर आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया।

सोनू निगम ने कई भाषाओं में गाने गाए, मसलन कन्नड़, असमिया, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम वगैरह वगैरह। कई भाषाओं के साथ ही साथ हर तरह के गाने उन्होंने गाए। हर मिजाज का गाना दिल की धड़कनों तक उतरा। चाहे खुशी भरा पार्टी गीत हो, प्रणय निवेदन करता प्रेम गीत हो, उदास गीत हो या दर्द से रुला देने वाला गीत हो, हर गीत में उनकी आवाज बेमिसाल होती है। दिल को चीर देने वाला गम के सागर में डूबा, फिल्म के दृश्य को आंखों के सामने ला, आंसुओं से सराबोर करता ये गीत सुनिए।

मजबूरियों से हारो मत, उनका डट कर मुकाबला करो। इस फलसफे के साथ सोनू निगम ने करियर के कई आयाम तय किए। शास्त्रीय संगीत का खूब रियाज किया उन्होंने, ये रियाज उनके गायन में खूब झलकता है। अभिनय में भी उन्होंने अपना करियर आजमाया। फिल्म बेताब में वे बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर नजर आए थे। बाद में जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल जैसी फिल्मों में नजर आए। फिलहाल सुना जाए ये गाना।

0: खोया हूँ।
1: सोनू निगम ने कई म्यूजिकल शो में जज बनकर और होस्ट बनकर छोटे पर्दे पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनके स्टेज शोज खूब हिट होते हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। सोनू निगम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आइए एक नज़र डालें। फिल्म कल हो न हो इस गाने के लिए सोनू निगम को मिला सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार।

0: करती रहे।
1: इसके अलावा सोनू निगम को देश विदेश के अनगिनत पुरस्कार मिलते रहते हैं। लंबी फेहरिस्त है उन्हें मिले पुरस्कारों की। आइए सोनू निगम के कुछ मशहूर गीतों पर नजर डालें। ये फिल्म है रिफ्यू।

0: अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9:55 हुए हैं। अब हम प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: नौ बजकर 55 मिनट होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बस्तर के आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। प्रदेश में आज महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज बीजापुर, राजनांदगांव और कांकेर सहित 5 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाने वाले बस्तर दशहरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न आदिवासी समाज के प्रतिनिधि आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। 164 व्यक्तियों के इस प्रतिनिधिमंडल में परगना मांझी, चालकी समाज प्रमुख, बस्तर पंडुम के प्रसिद्ध जनजाति युवा कलाकार, जनजाति समाज प्रतिनिधि और बस्तर के पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ता शामिल रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में आज महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत महतारी वंदन योजना से लाभान्वित महिलाओं के साथ साथ अन्य इच्छुक महिलाओं को निःशुल्क पौधों का वितरण किया जाएगा। पौधारोपण के बाद हितग्राही निर्धारित सेल्फी लिंक पर पौधे के साथ अपनी तस्वीर अपलोड कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में देशभर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से नागरिक भागीदारी पहल दानवीर का शुभारंभ किया। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा कि यह पहल लोगों को अपने पैतृक गांवों के विकास में सार्थक योगदान देकर अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। बिलासपुर शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से स्थायी राहत दिलाने के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तथा बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर बिलासपुर के लिए प्रस्तावित 4-लेन रिंग रोड परियोजना की स्वीकृति और निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान, मुख्यमंत्री ट्रॉफी, नगद राशि, प्रेरणा निधि और डाइट मनी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र खिलाड़ी, प्रशिक्षक और निर्णायक 5 अगस्त तक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप sportsyw.cg.gov.in पर उपलब्ध है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 2-3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बस्तर संभाग के अनेक जिलों के साथ ही महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग सहित विभिन्न जिलों में कई नदी नाले उफान पर हैं। इस कारण अनेक गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। सड़कों के ऊपर पानी आ जाने के कारण यातायात बाधित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज बीजापुर, राजनांदगांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर जिले के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रायपुर, बालोद, दुर्ग और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थस्थलों की यात्रा करते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में अमरकंटक से भोरमदेव मंदिर तक होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रदेश में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार

चार नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित औद्योगिक विकास योजना की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। औद्योगिक पार्कों की स्थापना राजनांदगांव, धमतरी, जांजगीर चांपा और बस्तर जिले में की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बस्तर के आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। प्रदेश में आज महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया जाएगा और मौसम विभाग ने आज बीजापुर, राजनांदगांव और कांकेर सहित पांच जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार रिले किया जा रहा था आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है आपकी पसंद। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे फिल्म सत्यकाम के इस गीत के साथ। आवाज लता मंगेशकर की, कैफे आजमी ने इसे लिखा है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को पसंद किया है बिलगहना शक्ति बहरा से श्याम शंकर मिस्त्री, बाबा विजय, रागिनी गीता देवी, सुरेंद्र संजना, कैलाश चंद्रवंती, कुसुम और राधा पड़वार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक। बिरकोना से एस कौशिक, ग्राम रोहांसी से डगेसर राम साहू, नूतन घनश्याम और गौरव साहू। जिला मुंगेली सिंघनपुरी कुकुरहट्टा से लव सिंह, ठगवा सिंह, लोकू खीरू, महेश, अनुज साहू, तुलसी कोटवार, दशरथ सोनकर और रामनाथ। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार। बावली मर्राकोना से उत्तम कुमार कौशिक, बिहारी लाल, हरीश कुमार और शिवम कुमार कौशिक। लीजिए सुनिए आपकी पसंद कार्यक्रम का ये पहला गीत, आप सभी श्रोताओं की पसंद पर।

इस गीत के बाद अगला गीत सुनने वाले हमारे श्रोता हैं बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र, ब्रजकांत सारथी। बेमेतरा से ही श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा, आती, भाव्या और सुषमा सारथी। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का, तन्मय। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन। इंद्रनगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम राजा। मगरलोड से पूनू राम साहू, तेजस्वरी, राजश्री, राजवीर। मेहमतपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर अगला गीत फिल्म चुपके चुपके से, आवाज एक बार फिर से लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और संगीतकार हैं इस गीत के एस डी बर्मन।

आपकी पसंद कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म अनुपमा से। कैफी आजमी ने इसे लिखा है, हेमंत कुमार का संगीत है और लता मंगेशकर के स्वर। इस गीत को पसंद किया है लुत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, महारानी चौक भाटापारा से परश शर्मा, निधि रुचि नित्या शर्मा, भाटापारा से श्याम रतन मुंधड़ा, रचनाकार रावण भाटा, भाटापारा से बबला यादव, रिखी राम, श्रीमती कमलेश्वरी यादव, ग्राम रसेड़ा अगलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या, डिकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, दयालवन बिलासपुर से पद्माकर राउत, सविता, अश्लेषा और आदित्य राउत, और जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से फिरोज आलम, नाज प्रवीण, अर्श और अरसलान। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर लीजिए, सुनिए ये गीत।

और अब आपको सुनवाने वाले हैं हम फिल्म मेरा गांव मेरा देश का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी गीतकार हैं इस गीत के और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसे सुनने के लिए हमें खत लिखा है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, माया राम रजक, पुनेश्वर फानेश्वर, मुकेश कुमार हाव्या और तानिया रजक। शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान नासिर, अयाज अलफैज खान, हजरुन निशा, सादिया खान। बिल्हा से शेख नासिर महजबिन बानो। हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव। बावली से कमलेश साहू, हरेंद्र साहू, सुशील। खतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। बम्हर चाटीडी से गंगा देवी देवांगन, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की, बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन। पटपर भाटापारा से मोतीलाल भटपरिया, संतोष कुमार यादव, मंडुल यादव। ग्राम सूरजपुरा से सुरेंद्र कुमार यादव, श्रीमती प्रीति यादव, योगी कुमार और मोक्ष कुमार यादव। महावीर वार्ड भाटापारा से अमृता यादव, पार्वती, ईश्वरी, लक्ष्मी, प्रेरणा, डिम्पी यादव और हथबंध नेवधा से दुलारी प्रियंका, प्रीति उमेश्वरी और सुनती यादव।

सुनने के लिए अपनी फरमाइश भेजी है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास रानी मानिकपुरी। शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर। दगोरी उड़नताल से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता जागृति, सरला आकांक्षा और समीर गायकवाड़। बाजारपारा बेमेतरा से भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा। बिरगांव तखतपुर से जैमून कोल, दिलीप रामायणी और भुवनेश्वर कोल। पौड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म यकीन से, लता मंगेशकर के स्वर, बोल हसरत जयपुरी के और शंकर जय किशन का संगीत है।

ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम था यकीन। हसरत जयपुरी के बोल थे और बंदिश थी शंकर जयकिशन की। इस गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं नए तराने। फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाएंगे अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है एएम तुराज ने, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी।

और अब हम सुनेंगे अल्तमश फरीदी की आवाज में फिल्म एक विलेन रिटर्न का गीत। गीत और संगीत है तनिष्क बागची का।

0: नए तराने कार्यक्रम में अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले आइए आपको सुनाते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, आप सुनेंगे ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर अर्थात अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देवाधिदेव महादेव के पूजन का विशेष पवित्र माह सावन आज प्रारंभ हो रहा है। आज से पूरे माह भर प्रत्येक शिवालयों में भगवान महादेव की साधना आराधना में लोग तल्लीन होंगे। इन मंदिरों में अनेकों प्रकार के अनुष्ठान आदि होंगे, जिससे मंदिरों के आसपास सड़कों में विशेषकर सुबह के समय जन समुदाय अधिक होगा। अतः सभी प्रकार के वाहन चालकों से अनुरोध है, ऐसे स्थानों से गुजरते समय पूरी सावधानी के साथ चले, धीरे चले। साथियों, सावन की छटा ही निराली होती है। वर्षा की फुहारों के साथ सावन माह में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व होता है। सिर्फ शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के साथ साथ अपने आसपास के प्रसिद्ध शिवालयों के लिए भी कांवड़ यात्रा निकालकर जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में जाते हैं। आप सभी कांवड़ यात्रियों की श्रद्धा भक्ति का अंतर मन से सम्मान है, किंतु कुछ सुझाव भी है। जब भी कांवड़ यात्रा में निकलें, बोल बम के जय घोष के साथ साथ सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का मंत्र भी ध्यान रखें। पूरी सड़क में बिखर कर न चलें, कतार में चलें तथा कांवड़ का धारण कुछ इस प्रकार करें कि वह सड़क में आड़ा ना हो, अर्थात सड़क में एक कांवड़ यात्री कांवड़ की लंबाई लगभग 3 से 4 फीट की जगह घेर कर न चले, क्योंकि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से यह उचित नहीं है। ध्यान रखें, हमेशा कांवड़ का एक सिरा कांवड़ यात्री के सामने तथा दूसरा उसके पीछे हो, ताकि सड़कों में दौड़ रहे अन्य वाहनों को भी पर्याप्त स्थान मिले। मित्रों, हम इस संदेश के माध्यम से आप सभी को यह याद दिलाना चाहेंगे कि शहर के चौक चौराहों में सिग्नल लाइट का समय अब प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रारंभ किया गया है। सतर्क रहें, धीरे चलें, ताकि चौक में सिग्नल देखते ही आप तैयार हो सके। इसे नजरअंदाज भूल कर न करें, क्योंकि कैमरा 24 घंटे 7 दिन जागता रहता है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: और अब सुनवाते हैं आपको जुबिन नौटियाल की आवाज में दृश्यम 2 का ये गाना अमिताभ भट्ट।

आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। और अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आवाज जुबिन नौटियाल की है। फिल्म का नाम है सनक। लिखा है इस गीत को रश्मि विराग ने और संगीत जीत गांगुली का है।

और अब सुनवाते हैं आपको सड़क टू फिल्म का ये गाना। आवाज़ श्रेया घोषाल की है, रश्मि विराग ने इसे लिखा है और एक बार फिर से संगीत है जीत गांगुली का।

0: तो आप सभी श्रोताओं का भी शुक्रिया नए तराने कार्यक्रम सुनने के लिए। और अब इस खूबसूरत गीत जो हमने लिया था फिल्म सड़क 2 से, आवाज श्रेया घोषाल की थी, गीतकार थे रश्मि विराग और संगीतकार थे इस गीत के जीत गांगुली। कार्यक्रम नए तराने अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हसी का हवा महल, 22 की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
0: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 11 बजे हैं।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियाँ लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
0: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
2: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
0: श्रोताओं आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
2: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
0: श्रोता उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
2: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
0: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
2: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
0: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्याग पत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
2: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
0: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया। जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
2: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
0: श्रोताओं आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
2: जी
0: श्रोताओं आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
2: लब्ध प्रतिष्ठ।
0: इसका अर्थ है
2: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
0: तो श्रोताओं अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको

0: ताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
1: श्रोताओ, आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम। शीर्षक है पहली बूंद।
0: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई

0: पास्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
1: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पास्चर आई वुड बी नथिंग।
0: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?

0: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: अरे

0: 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए। लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
1: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
2: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है। ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
1: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
1: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
1: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
3: लुई पाश्चर
4: सर,
3: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
4: कहिए सर।
3: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
4: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
3: ठीक है।
1: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
1: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।

0: जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा, हाँ इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताईं।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
3: आप
5: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
3: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
5: मेरा
3: अच्छा,
5: बेटा।
3: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए

0: खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बबच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पास्टर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्टर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्टर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्टर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्टर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्टर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्टर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्टर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्टर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
3: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
4: जगबंधु,
3: चेतना,
4: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
6: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। 11:30 हुए हैं। अब से 11:55 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा केंद्र से जुड़े रहेंगे।

0: एल्बम का नाम था मैं और मेरा साया, डॉक्टर भूपेन हजारिका की आवाज थी। विविध भारती, एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय।
0: और अब जाने माने गायक सोनू निगम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पेश कर रहे हैं ये गाना।

0: अभी आप विविध भारती से कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। 11:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही क्षणों बाद हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बस्तर के आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। प्रदेश में आज महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया जाएगा और मौसम विभाग ने आज बीजापुर, राजनांदगांव और

0: कांकेर सहित 5 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाने वाले बस्तर दशहरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न आदिवासी समाज के प्रतिनिधि आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। 164 व्यक्तियों के इस प्रतिनिधिमंडल में परगना मांझी, चालकी समाज प्रमुख, बस्तर पंडुप के प्रसिद्ध जनजाति युवा कलाकार, जनजाति समाज प्रतिनिधि और बस्तर के पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ता शामिल रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में आज महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत महतारी वंदन योजना से लाभान्वित महिलाओं के साथ साथ अन्य इच्छुक महिलाओं को निःशुल्क पौधों का वितरण किया जाएगा। पौधरोपण के बाद हितग्राही निर्धारित सेल्फी लिंक पर पौधे के साथ अपनी तस्वीर अपलोड कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए कल 31 जुलाई तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इस पुरस्कार के लिए 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार के लिए भी 31 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत ऋणी और अऋणी किसानों के लिए पंजीयन कराने की अंतिम तिथि कल 31 जुलाई निर्धारित की गई है। वहीं डॉ खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए किसानों से 31 जुलाई तक आवेदन मंगाए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 2-3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बस्तर संभाग के अनेक जिलों के साथ ही महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग सहित विभिन्न जिलों में कई नदी नाले उफान पर हैं। इस कारण अनेक गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। सड़कों के ऊपर पानी आ जाने के कारण यातायात बाधित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज बीजापुर, राजनांदगांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर जिले के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रायपुर, बालोद, दुर्ग और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में पुलिस की टीम ने 4 शातिर और खूंखार डकैतों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अब तक 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने इन डकैतों को पकड़ने के लिए 1000 सीसीटीवी और एआई ट्रैकिंग की मदद ली थी। आरोपियों ने बीते 16 जुलाई को रोहरा निवासी ज्वेलर्स के ऊपर हमला करके 13 किलोग्राम चांदी और 70 ग्राम सोना सहित कुल 12 लाख रुपए कीमत की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बिलासपुर जिला स्थित सेंट्रल जेल में बुधवार की शाम को उम्र कैद की सजा काट रहे जांजगीर चांपा जिले के एक कैदी ने जेल परिसर में बने गैसी फायर प्लांट की जलती भट्टी में कूदकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक ये कैदी 2014 से बिलासपुर सेंट्रल जेल में दोहरे हत्याकांड की सजा में बंद था। दुर्ग जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टे में प्रयुक्त 1242 म्यूल बैंक खातों की पहचान कर 117 खाताधारक और 5 म्यूल एजेंट को गिरफ्तार कर लगभग 3 करोड़ की राशि होल्ड की गई है। जांच में पाया गया कि साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश, शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टा, कस्टमर केयर फ्रॉड और अन्य साइबर अपराधों से प्राप्त अवैध धनराशि को छिपाने और आगे स्थानांतरित करने के लिए म्यूल बैंक खातों का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बस्तर के आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। प्रदेश में आज महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया जाएगा और मौसम विभाग ने आज बीजापुर, राजनांदगांव और कांकेर सहित 5 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बज चुके हैं। अब से शाम 4 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा केंद्र के कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित

0: कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। राज्यसभा आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकेपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात के मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लिटस्को ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

आइए सुने यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज सोनू निगम को हम दे रहे हैं जन्मदिन की बधाइयां। तो कुछ ऐसे गाने जो सोनू निगम के बड़े सुहाने से गाने हैं जो हमारे सफर को बनाएंगे सुनहरा।

जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब।

0: दिल से फिल्म का ये गीत आपने सुना, एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम में उनके गाने हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
2: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाते थे, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण भवन सुयो विनायक करो ये नीति मारा दिलीप सेन जी पधारिया।
1: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ओले, ओले, ओले।
0: पर्दे इस फिल्म का गाना सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन। आनंद बख्शी, नदीम श्रवण।

बॉर्डर फिल्म का ये गीत जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक की तर्ज थी, रूप कुमार राठौर, सोनू निगम और साथियों की आवाजें थी। आज है सोनू निगम का जन्मदिन और विविध भारती पर

परदेश के बाद अब थ्री इडियट्स फिल्म का गाना सुनो निगम शान और स्वानंद किरकिरे। गीत स्वानंद किरकिरे, संगीत शांतनु मोहित्रा। दिन के 12:39 और विविध भारती पर ऑल इज वेल।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
5: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आए हाय
0: सुनो निगम और अनुराधा पौडवाल, फिल्म का नाम है तुम बिन।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिल चाहता है फिल्म का ये गीत आपने सुना, और इसी के साथ अब आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम की आज की इबारत हमने विविध भारती के सोशल मीडिया पेज पर यानी फेसबुक पर पोस्ट कर दी है और आप सभी ने पढ़ भी ली है। ये इबारत है, कुछ दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं होते, वो राह भी दिखाते हैं। उस दिन राह दिखाने वाले एक दोस्त ने कहा था, उतना ही उपकार समझ तू जितना साथ निभा दे। बात इशारों वाली थी पर फौरन समझ में आ गई थी। कुछ बहारें बीती और इस एहसास को जीना भी पड़ गया। एक सुरमई शाम थी, उस दिन वो आखिरी बार मिली। वो जता गई कि दुनिया परछाइयों की है, भरी भीड़ में खाली तन्हाइयों की है। तब से आंखें आंखें नहीं रह गईं, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी बन गईं। प्यार करने वाले तो बद्दुआ भी नहीं दे सकते, जैसे बख्शी साहब ने लिखा था, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। जिस दिल में बसा होता है प्यार, वो यही कहता है, चांद धुंधला सही ये गम नहीं है मुझे, तेरी रातों पे रातों का साया ना हो। शाम की तन्हाइयां अक्सर उसकी याद दिलाती हैं और तब होता है एहसास, मैं शायद एक ख्वाब था जिसे उसने अपनाया ही नहीं। एक छोटी सी कहानी हमने पोस्ट की आज की इबारत के तौर पर। इस कहानी से आपको ये समझ में आता है कि दो लोगों का साथ निभ नहीं पाया। एक के हिस्से में उदासी आई, शायद दूसरे के हिस्से में भी आई ही होगी। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि आज की इबारत बता देती है कि गाने कौन से शामिल होने वाले हैं। बाकायदा दरअसल गानों की पंक्तियां इस कहानी की पंक्तियां जो बन गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर इस गाने के साथ। क्या तो शानदार ओपनिंग म्यूजिक है इस गाने का, जो मेरी आवाज के पीछे आपको सुनाई दे रहा है। किस फिल्म का है गाना ये तो जरूर बताइएगा, लेकिन साथ में ये भी बताइए दो बातें। एक तो ये कि किस जगह की शाम आपको बहुत ज्यादा पसंद है। लोग शामें अवध और सुबह बनारस की बात करते हैं, आपके लिए किस जगह की शाम मायने रखती है। और दूसरी बात, क्या जिंदगी में आपके साथ भी ऐसा हुआ कि किसी एक मोड़ पर किसी का साथ छूट गया और रह गई केवल उदासी।

और जब शाम की बात चली तो बहुत सारे श्रोताओं की बातें आई हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं तो हर शाम दिल लुभाने वाली होती है, लेकिन पुरी की जो शाम है, पुरी के समुद्र तट की शाम, सूर्यास्त का नारंगी रंग बहुत ही मनमोह लेता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे हमारे शहर उज्जैन की शाम पसंद है, क्योंकि 36 साल की सेवा के बाद मुझे अपने शहर वापस लौटने का मौका मिला है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती है कि कोच्चि की शाम पसंद है, हमारे छत से हम सूर्यास्त देख सकते थे, सूरज समुद्र के नीचे जा रहा था, धीरे धीरे खूबसूरत प्रकाश फीका हो रहा था। इसके अलावा लेकिन फिल्म का ये गाना है, इसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं कि गुलजार के ये बोल, सुरेश वाडकर की आवाज़, हृदयनाथ मंगेशकर का ये संगीत है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि भाई हमारे लखनऊ की शाम का कोई जवाब नहीं है। एक और श्रोता है जो ये लिखती हैं कि जिसके साथ शाम होती है वो जब भी दूर होकर भी दूर जाकर भी दूर नहीं होता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे कक्षा 8वीं की शाम बहुत अच्छी लगती थी, जब मैं एनसीसी के कैंप में भोपाल गया था और कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे। इसके अलावा एक श्रोता की बात यह है कि उन्हें सुबह और शाम दोनों ही अपने शहर की अच्छी लगती हैं, यानी उनके शहर की ही सुबह और उनके शहर की ही शाम उन्हें अच्छी लगती है, घर पर अच्छा लगता है। एक श्रोता और हैं जिनका कहना है कि समंदर के किनारे जो शाम बीते, डूबता सूरज क्षितिज को सुनहरा करता है, वो देखना बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अब तो हर शाम मुझे अधूरी सी लगती है। और इसके

अलावा लखनऊ की शाम भूलने वाली नहीं है, ये बात भी एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं की बातों के बीच में एक बात ये भी है कि एक श्रोता अपने दफ्तर से कार्यक्रम सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का आनंद भी ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए, जो कि आज की इस इबारत का हिस्सा था जिसे हमने गानों के बोलों के इशारों से सजाया था, और ये जो गाना है ये कहता है कि थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और एक कहानी, यानी जिंदगी की उदासी को और आंखों के भीग जाने के एहसास को ये गाना बयां करता है। पिछली बार हाल ही में किस बात पर आपकी आंखें भीग गई थी, ये बात बताइएगा। और साथ में ये भी कि इस गाने में ये जो नाजुक आवाज है, दिल में उतर जाने वाली आवाज, ये किस गायिका की है।

एक श्रोता लिखते हैं कि पिछली बार तब बहुत रोना आया था जब मैं भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर आर्मी की भर्ती की परीक्षा देने गया था और केवल 20 सेकंड से मैं रह गया था। एक और श्रोता है जो कहती हैं कि शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, जुगल हंसराज वाली फिल्म मासूम और गायिका आरती मुखर्जी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उन्हें आरती मुखर्जी के साथ कोलकाता में चाय पीने का अवसर प्राप्त हुआ था, ये उनके लिए बहुत ही यादगार लम्हा है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि कुछ लोग जो अब साथ नहीं हैं उनकी याद में आंखें नम हो जाती हैं। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि मैं जब भी फूलों का तारों का गीत सुनती हूं तो अपने भाई को याद करके आंखें नम हो जाती हैं। बचपन की याद दिलाने वाली फेसबुक पोस्ट देखकर आंखें नम हो जाती हैं कि कितनी निस्वार्थ दोस्ती थी, आपस में खेलना, झगड़ना, फिर सुलह कर लेना। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनका ये कहना है कि जिंदगी कितनी अजीब है, सब कुछ इतना मुकम्मल लगता है कि इंसान वक्त को वहीं रोक देना चाहता है, लेकिन शाम ढलती है वो इंसान विदा हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा फैर जाता है। एक और श्रोताएं कहते हैं पूछिए आज हम आ गए मैदान में। बिल्कुल जी, अब तो कठिन से कठिन सवाल पूछेंगे, आइए मैदान में। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने 1983 में आई थी फिल्म मासूम ये लिखा है। एक और श्रोता का कहना है कि माँ का साथ कुछ साल पहले छूटा, दुनिया में वीरानी छा गई, एक खालीपन है। शाम की चाय अब भी पीती हूँ पर माँ के साथ शाम की चाय की बात कुछ और थी। अब घर का वो कमरा जहाँ से माँ की रौनकें थीं, दर्द भरा सन्नाटा पसरा रहता है। किसी का साथ जब छूट जाता है तो कितना बदल जाता है जीवन। एक और श्रोता लिखते हैं कि कल गुरु पूर्णिमा थी तो मन में ख्याल आया कि सबसे पहले गुरु तो माँ पापा होते हैं, बस सोचते सोचते आंखें भर आईं। तमाम श्रोताओं के इस तरह के कमेंट कुछ जज्बाती कर देने वाले, कुछ अपने दिल की बात कहने वाले, शुक्रिया आप सभी का। और पूरी इबारत की एक तरह से डोर पकड़ के जो अगला गाना हम आज के हार में मोती की तरह पिरो रहे हैं वो मुकेश की आवाज वाला ये गाना है। फिल्म का नाम और गीतकार का नाम बताइएगा।

एक श्रोता लिखते हैं कि शाम से शुरू हुई सुरमई संगीत की यात्रा, नैनों ने पानी बरसाया, दिल तोड़ दिया और दिल को समझ लिया। ये आपका अंदाज है, शुक्रिया। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सहेली फिल्म का गाना है और संगीतकार इंदिवर जी हैं। भाई संगीतकार नहीं, गीतकार इंदिवर जी हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और सहेली 1965 में आई थी, बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि उनकी लिस्ट में ये गाना शामिल था। एक श्रोता लिखते हैं कि कल रफी साहब की याद का दिन है और कम से कम 2 घंटों का कार्यक्रम होना चाहिए और आप इसे प्रस्तुत करें। बहुत शुक्रिया, रफी साहब की याद में कार्यक्रम जरूर होगा। और क्यों ना आज ही से हम रफी साहब के लिए अपने दिल के जज्बात का इजहार करना इसलिए शुरू कर दें क्योंकि अभी कार्यक्रम का जो अगला गाना है वो रफी साहब की आवाज वाला ही गाना आ रहा है। एक श्रोता लिखती हैं कि प्यार कभी मरता नहीं, वो याद में बदल जाता है। याद से एक मूक ताकत हमें जीने को मजबूर करती है। कितना कुछ है दुनिया में भूलने को और कितना कुछ है दुनिया में याद करने को। इसके अलावा एक और श्रोता है, कहते हैं कि मेरी पत्नी ही मेरी सच्ची दोस्त है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अधूरी कहानी के नायक और नायिका के लिए आंखें सजल होती हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है लिखते हैं कि दिल नाजुक है और उसका भावुक होना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है। एक और श्रोता है लिखती हैं कि कुछ गाने बीतते नहीं हैं, दिल में एक टीस पैदा करते हैं और आंखें भीग जाती हैं। आरती मुखर्जी वाला गाना उन्हें कुछ इसी तरह का गाना लगता है। और अब मोहम्मद रफी की आवाज आ रही है, साहिर लुधियानवी का लिखा एक फलसफा। कल मोहम्मद रफी की याद का दिन, 31 जुलाई का वो दिन जब रफी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। क्यों ना आज से ही रफी साहब के प्रति अपने जज्बात का इजहार करें और आज के इस कार्यक्रम में आप बताएं कि कितना प्यार करते हैं आप रफी साहब की आवाज से, कितना मायने रखते हैं रफी साहब आपके लिए।

एक श्रोता लिखते हैं, बचपन में किसी आवाज से आरंभ हुई तो वो मरहूम सुरों के साधक मोहम्मद रफी ही थे जो अब तक दिल में बसे हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज मेरा पसंदीदा गाना है और मैं बरबस गुनगुनाता हूं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि चित्ररेखा फिल्म का ये गीत साहिर लुधियानवी, रोशन, प्रदीप कुमार, केदार शर्मा, क्या बात है, पूरे डिटेल्स आपने लिख लिए हैं। राग यमन पर आधारित गाना, सितार, सरोद और बांसुरी का बेहतरीन इस्तेमाल, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रफी साहब की आवाज रूह को छू लेने वाली आवाज है। और इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर गीत है, मन रे तू काहे ना धीर धरे, बचपन से सुनती आ रही हूं, कितना सुकून है इन बोलों में। एक और श्रोता, मेरे लखनऊ के घर में जिसमें मैं खेली पढ़ी, सबके सबके शादी ब्याह हुए।

भाई बहन का प्यार, सब यादें रह गईं। वो घर बेच दिया गया, भाई लोग फ्लैट में चले गए। बहुत रोना आ रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर बोल चित्र लिखा फिल्म का ये गाना। एक और श्रोता का कहना है कि रफी साहब की आवाज का तिलस्म कभी खत्म नहीं हुआ, इस तिलस्म का असर और ज्यादा गाढ़ा होता चला जा रहा है। वो गाना सुनवा रहे हैं जो इबारत में शामिल था लेकिन मुखड़े के रूप में नहीं, बल्कि गाने की बीच की पंक्तियों को शामिल किया था। फिर भी फिल्म संगीत के दीवाने हमारे श्रोता, विविध भारती परिवार के हमारे सदस्य, आप सभी ने इस गाने को पहचान लिया था। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, बताइएगा फिल्म का नाम और ये भी कि इस फिल्म का कौन सा गाना आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा रहा, या कौन से गाने हैं जो सबसे ज्यादा पसंदीदा रहे हैं। और इसके अलावा ये भी बताइए कि आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके होंठों पर सजा है।

0: गीत ये भी एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरे देश की धरती टाइमलेस गाना है और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना यही है, और उसके अलावा कस्मे वादे प्यार वफा। एक और श्रोता है कहते हैं कि आज से सावन शुरू हो गया है, कई दिनों से बहुत उमस वाली गर्मी थी और इस समय तेज बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक श्रोता कहती हैं कि किसी अपने के लिए की गई वो पवित्र दुआ है जहां खुद को पीछे छोड़कर केवल सामने वाले के जीवन में कोई उजाला और मुस्कान देखना चाहता है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि शायद इबारत देखने के बाद यही गीत पूरा हमारे जहन में चल रहा था और इस गाने का इंतजार वो कर रही थी। इंतजार एक और कार्यक्रम का कीजिएगा जिसकी सूचना आप देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
0: भाई, विविध भारती पर सुरीला सफर चल रहा है और हमारे श्रोता किस तरह से अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आज सोनू निगम का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देना चाहते हैं। बिल्कुल दीजिए भाई, और हमने तो इससे पहले वाले यादों की महफिल वाले कार्यक्रम में बाकायदा उन्हें बधाइयां दी हैं, और फनकार आज के फनकार कार्यक्रम का जिक्र भी उन्होंने किया है। और बहुत सारे श्रोता मोहम्मद रफी साहब के बारे में अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सुबह से एक गाना जहन पर चढ़ा हुआ है, वो है स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि सुबह से हमारे जहन पर छाया हुआ है वो गाना चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि टेलीपैथी हो गई हर खुशी हो वहां हमारे जबान पर सुबह से चढ़ा हुआ है। एक और श्रोता कहते हैं कि ये दिल दीवाना है ये हमारे जहन पर चढ़ा हुआ है। एक श्रोता के जहन पर चढ़ा हुआ है मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया। और इस तरह से सभी अपने अपने गाने बता रहे हैं, और आज की इबारत का अगला गाना ये, फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आज की शाम सुनहरी बनाने के लिए आप क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं।

भाई ये गाना कितने जल्दी खत्म हो गया ऐसा लगता है। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मेरे होंठों पर एक ही गीत जहन में आ रहा है, न फनकार कोई तुझसा तेरे बाद आया। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संगीत के प्रति मेरे लगाव की शुरुआत मोहम्मद रफी से हुई है। मोहम्मद रफी सिर्फ गायक नहीं बल्कि भारतीय संगीत की वो रूह हैं जिसने करोड़ों दिलों को धड़कना सिखाया। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा कि उपकार का जो गाना है, सारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं और आज सुबह से बारिश का लुत्फ हम ले रहे हैं। और एक श्रोता का कहना है कि लता जी का तार सप्तक स्वर अंतरे में बहुत भाता है इस गाने में। गुलशन बाबरा का लिखा गीत कल्याण जैन जी का

इस गाने को सुनकर एक आह निकल जाती है, आह फिल्म का गाना जिसको सुनकर आह निकल जाती है। एक श्रोता कहते हैं कि भाई कजिन को पढ़ाना है, शाम को मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शाम का आनंद लेंगे। एक और श्रोता का कहना है कि शाम की तन्हाई को और गहरा बनाने के लिए समुन्दर का किनारा ही बढ़िया होता है। और शैलेंद्र के इस गाने पर एक श्रोता जो है बहुत भावुक हो रहे हैं। एक और श्रोता है कहते हैं कि मैंने 6 गाने आज अंदाजा लगाया था, इन 6 गानों का गेस किए थे, 6 गाने शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 7 गानों की लिस्ट में ये 3रा गाना है जो शामिल हुआ है। एक और श्रोता है जिनके शहर में बारिश की सूचना है, इसलिए वो कहीं बाहर नहीं जाने वाली। और जब बारिश होती है और जब कहीं जाने को नहीं होता तो किचन में एक बहुत हल्की चीज बनती है जो तेल के ऊपर तैर जाती है। वो हल्की चीज कौन सी है भाई, जो बारिश के मौसम में हमें जरूर खाना पसंद होता है? जरा बताइएगा, वो हल्की चीजें जो हैं जीवन में बनी रहें, उनकी महक बनी रहे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सावन का महीना आज से शुरू हो गया है और सुबह से ही हम सावन के गाने गुनगुना रहे हैं। एक और श्रोता है जो जबलपुर में और कहते हैं कि आज हमारे शहर में मोहम्मद रफी साहब की याद में एक कार्यक्रम है और आज शाम को वो वहां जाने वाले हैं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैंने जैसे ही सोचा मेरी मम्मी का ये फेवरेट गाना बजने लगा और मैं साथ में गुनगुनाने लगी। आज शाम को सभी दोस्त मिल रहे हैं और तालाब में बोटिंग करने जा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है और बाकायदा बोटिंग का मौसम है। देखिए भाई कितने सारे श्रोताओं के जो शाम के प्लान्स हैं वो हमने उजागर कर दिए आज के इस कार्यक्रम के जरिए। तो बताइएगा कि आपका आज की शाम का क्या प्लान है। तब तक ये गाना जो जिंदगी दुनिया और रिश्तों की हकीकत को उजागर करता है, बताइएगा ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे आज आपकी बात नहीं हो रही है।

बहुत श्रोताओं के कमेंट तना दन चले आ रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि उदासी गहरी होती है तो दोस्तों से बात करते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो बस उस दिन एक्टिव होता है जब किसी का जन्मदिन हो। मैंने ऐसे ही एक दिन कहा कि सब कहाँ रहते हो, तो बड़ा ही रूखा सा जवाब आया कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आप मेरे फेवरेट एंकर बन गए हैं। रफी साहब के बारे में क्या कहूं, वो मेरे फेवरेट थे, फेवरेट हैं और फेवरेट रहेंगे। बहुत ही सही, उन्होंने कहा कि अगर एक भी दिन रफी साहब की आवाज ना सुने तो बहुत खाली सा लगता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती है कि जरीना वहाब पर फिल्माया गया ये गाना है सितारा फिल्म का। एक और श्रोता है कहते हैं कि दोस्त होने का क्या फायदा जिससे बात ना हो। दोस्त तो वो होता है जो झगड़ा करने के बाद आकर बोले कि भाई क्या हाल चाल है, चलो बड़े तालाब में घूम कर आते हैं। क्या बात है, प्यारी बात कही है। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि सितारा फिल्म का ये गाना बहुत कम सुनाई देता है, आज आपने सुनवाया, शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज आपने वो बातें छोड़ दी हैं जो दोस्ती की अनगिनत यादें लेकर आती हैं और अंत में आंखें भिगो देती हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आपने जो बहुत ही हल्की सी चीज का जिक्र किया है वो पकौड़ी है जो कढ़ाई में तेल के ऊपर तैर जाती है। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जिनका आज पकौड़ी खाने का प्लान है, तो जरा ये बताइए बहुत सारी महिलाएं के भाई पकौड़ी आप ही बनाती हैं या अपने पति से भी बनवाती हैं? किन किन घरों में पति पकौड़ी बनाते हैं जब मौसम बहुत अच्छा होता है? और अब वो गाना आ रहा है जो उदास कर देने वाला है, मुकेश की आवाज में। उदास गाने आपको पसंद होते हैं या फिर रोमांटिक गाने, बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना, ये भी बताइएगा।

कार्यक्रम के तकरीबन आखिरी दौर में हम आ पहुंचे हैं। हिमालय की गोद में फिल्म का ये गाना बजा। बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि कढ़ी बनने से पहले ही सारे घर वाले पकौड़े खा लेते हैं और मैं कढ़ी कैंसिल कर देती हूं। आपके घर में भी क्या ऐसा होता है? एक और श्रोता लिखते हैं, बनारस और बारिश पकौड़े का सवाल ही नहीं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुकेश की दर्द भरी आवाज उन्हें ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बरसात में पकौड़ी मैं बनाती हूं, मेरे पति चाय भी नहीं बनाते तो पकौड़ी क्या खाक बनाएंगे। अरे रे रे रे, ये तो बड़ी बुरी बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े कढ़ाई में तो हल्के होते हैं लेकिन खाने के बाद सेहत के लिए भारी हो जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुछ चीजें तो हम अपनी श्रीमती जी से ही बनवाते हैं क्योंकि उनके हाथ की स्वादिष्ट होती है, तैयारी भले मुझे करनी पड़ती है। और इसके अलावा भाई आज तो पूरा पकौड़ी पुराण शुरू हो गया है। बहुत सारी महिलाएं ये बता रही हैं कि उनके पति को पकौड़े बनाने नहीं आते। अब जरा सोचिए कि ये कितनी गलत बात है। और सीख लीजिए, आज ही की आज सीख लीजिए, आप लोग जिम्मेदारी लीजिए कि आज ही आप सिखाएंगी। और अगला गाना आ रहा है, फिल्म का नाम तो कश्मीर की कली है पर इस गाने के गीतकार कौन है और आप कश्मीर कब गए थे और कश्मीर जाने की सुनहरी याद क्या है बताइए।

ईशोता लिखती हैं कि कश्मीर से याद आया कि हिमाचल प्रदेश में एक गांव का नाम कश्मीर है। अभी कुछ दिन पहले वहां गए थे। ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट कश्मीर घूमने के इरादे से गूगल मैप के जरिए हिमाचल से इस कश्मीर के गांव में पहुंच गए थे। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि वो 2015 में कश्मीर गए थे और बहुत ही सुनहरी यादें हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि कल्पना से भरी हुई अच्छी मसालेदार पकौड़ी विविध भारती पर सुनने को मिली। और एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि जब भी कश्मीर का ख्याल आया घर में ही कश्मीर का माहौल पाया, पत्नी के हाथों से बने चाय पकौड़े टीवी ने ही कश्मीर से रूबरू करवाया। भाई वाह क्या कहने हैं। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि हम कश्मीर में 3 साल तक रहे हैं और वहां कुछ पढ़ाई की है, युवा उम्र की यादें क्या बात है। एक और श्रोता है जो ये कहती है कि 2014 में अमरनाथ गई थी और हम वहां कश्मीर गए थे और बहुत ही अच्छा लगा था। एक और श्रोता है वो कहते हैं कि भाई पकोड़े नहीं तल सकते तो क्या हुआ, प्याज आलू काटने में और छीलने में मदद तो कर सकते हैं ना, ये भी कम तो नहीं। बहुत सही बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भाई कश्मीर की कली बहुत शानदार, आज का कार्यक्रम बहुत शानदार। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें पकौड़े खाने से मना किया है और आप पकौड़े का नाम ले रहे हैं तो मुंह में पानी आ गया है। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े वाली कढ़ी बनती है हमारे घर में और सभी सफा चट कर जाते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं रोज अपने घर में काम करता

हैं और जिंदगी के अलग अलग मुद्दों पर आप अपनी बातें शेयर करते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज ताकत का इंजेक्शन लिया, सुरीला सफर कार्यक्रम सुना, परेशानी दूर हो गई, बिस्किट चाय के साथ इस वक्त बिस्किट चाय कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूं, मेरे घर में कल भाभी जी ने पकौड़े छाने थे। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आप ये कार्यक्रम करते हैं तो मैं कभी मिस नहीं करती। एक और श्रोता है जो कहते हैं कमबख्त बारिश नहीं हो रही है, पकौड़े खाक बनाए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम कश्मीर नहीं गए लेकिन तस्वीरें देखकर संतोष कर लेते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में इस तरह से साथ निभाने के लिए। आप बारिश का इंतजार करें और खूब पकौड़े बनाएं, मजे से खाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। जिंदगी की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहें विविध भारती के संग बने रहें। सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ आपका ये दोस्त यूनुस खान था। इजाजत, नमस्ते।

दोस्तों, जीवन में बचपन की महत्ता सर्वोपरि होती है। हालांकि वक्त अपनी रफ्तार से कब आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन किसी भी उम्र में बचपन की यादें हमेशा हमें बहलाए रखती हैं।

बचपन की मासूमियत सारी उम्र पर भारी होती है। बेबाकी से बढ़ती जिज्ञासाओं का अंत होते होते बचपन एकदम से आगे बढ़ जाता है। हर एक मुसीबत असंख्य परेशानियों से परे अपने में ही गुम बचपन हमेशा सहज बना रहता है।

किसी भी हाल में कहीं भी रहिए, अगर जिंदा दिल बने रहना है तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जगाए रखना होगा, ताकि जीवन का चैन और आराम हमेशा हमेशा बरकरार रहे।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ।

0: ये डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
1: देखिए जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
4: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी। उनको उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था, तो गडरण त भवन सु आयो विनायक करो ये नसीती विने धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
3: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, प्रतीक्षा समाचारों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई वट एवर नेम इट मे बी कॉल्ड विच इज एंगेज बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम

0: material, by whatever name it may be called, which is engaged by the public examination authority for the conduct of public examination.
1: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
3: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, ये ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
4: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात के मंजलपुर सीट पर

0: 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
1: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
3: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने यह सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
4: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
6: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई है। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और

0: मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज डेल्टा में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के चार शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमरीका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

0: レソール。
1: パワーヌパレショール。
0: あれ、ババショールないソール、ソール、ソール。

दिल्ली का दादा फिल्म का ये गाना था। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजें, सहर लुधियानवी के बोल, एन दत्ता की तर्ज थी। इससे पहले का गीत जागते रहो फिल्म का था, सलील चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र के बोल थे, आशा भोसले की आवाज थी।

मजू सुल्तानपुरी के बोल थे, प्रीति सागर और भूपिंदर की आवाजों में यह भूमिका फिल्म का गाना था, संगीत वनराज भाटिया का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश जुर्माना फिल्म का यह गाना।

0: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: क्या हाल चाल है आरती?
1: बिल्कुल ठीक है।
0: और इस
1: बारिश
0: तरह
1: के दिनों में
0: बारिश का आनंद ले रही है?
1: बिल्कुल, बारिश में भीगते हुए आइए, भीगते हुए जाइए, यही आनंद है।
0: तो बारिश जो है बहुत खूबसूरत ऋतु है, पर उसका आनंद हमें सावधानी के साथ लेना पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और यहाँ पे तो ऐसा होता है ना कि बारिश का मौसम आया कि पर्यटन का आनंद लेने के लिए हम सभी उमड़ पड़ते हैं।
1: ये तो है, लेकिन ये सोचते नहीं है कि कुछ हमें परेशानी भी हो सकती है या कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि बारिश के जो दिन होते हैं ना थोड़े से खतरनाक होते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे जब हम पहाड़ों पे या ऐसी जगहों पे जाते हैं ना तो थोड़े फिसलन पड़ा वो जगह रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन आपके क्या अनुभव है, हमारी जो भी सखियां हैं और सखा है उनके क्या अनुभव है, वो कभी बारिश के दिनों में घूमने गए हैं तो उनकी क्या यादगार वो किस्सा है जो वो बताना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, वो
0: हमें बताएं। अपने अनुभव लिखकर भेजें तो हमें ज्यादा मजा आता है।
1: बिल्कुल।
0: कि बारिश में कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए ये तो हम सभी जानते हैं, पर अगर आप कभी घूमने गए थे और फोटो लेने कहीं बहुत दूर चले गए, लंबे चले गए, पैर फिसल गया, या फिर बहुत सावधानी के साथ आपने फोटोज ली है, जो भी अपने अनुभव है वो हमसे
1: बिल्कुल
0: साझा।
1: आपने किस तरह से कौन कौन सी सावधानियां ली जिसके वजह से आपका सफर जो था वो बहुत सुहाना बन गया
0: जी,
1: तो आप ये सब हमें बताइए। और साथ ही हम क्या बात करने वाले?
0: मुझे कुछ कहना है इसके अंतर्गत, हम थूकने की बुरी आदत कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो इतनी गंदगी फैलाते हैं। अपने घर में हम बहुत स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, हम अपने घर में वॉश बेसिन में जाके ही थूकते हैं, लेकिन बाहर घर से बाहर निकले कि इधर उधर थूकना शुरू हो जाता है। ये बहुत गंदी आदत है जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है।
1: तो फैलती ही है। साथ ही जो बाहर के पर्यटक बाहर के देशों से आते हैं या घूमने के लिए, वो जब देखते हैं कि सड़कों पे किस तरह से हम लोग इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं तो उससे हमारे जो देश का है ना वो प्रभाव गलत पड़ता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने देश का जो अपनी प्रतिष्ठा है उसको बना के रखें
0: जी। और ये बात आपने कही है ना आरती, तो जब हम ही लोग विदेशों में घूमने जाते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि वहां पर फाइन होता है।
1: तब तो
0: वहां हम बहुत सावधानी के साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, पर अपने देश में आके सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने देश का गौरव हमें खुद बनाए रखना है। साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम डॉक्टर बुधरी ताती के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है
1: और
0: उपयुक्त टिप्स।
1: हाँ, वो है जलने कटने पर, कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाना बनाते समय कभी कुकर छू गया या इस तरह का तवे से हमारे हाथ जल गया या कुछ कर रहे उससे हाथ जल गया या कट गया, तो हम उस समय क्या चिकित्सा अपना सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, वो तो हम आपको बताएंगे
0: जी। और साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। हमारे देश में अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है, पर पूरे
1: अंतर्राष्ट्रीय
0: पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस आज मनाया जाता है। तो हम अपने सभी साथियों को मित्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप भी हमारे मित्र ही हैं ना
0: जी,
1: सखा हैं,
0: हमारे साथी हैं, उनके नाम में ही सखा है, सखी है, तो हमारे तो बहुत करीबी
1: मित्र हैं। हमारा दिवस है, समझ
0: जी, हम सभी का दिवस है
1: जी। बिल्कुल।
0: और आप क्या करें?
1: बिल्कुल, एक गीत सुनते हैं ना।
0: सुन लेते हैं गीत।
2: यूं ही तुम

0: तो जब दोस्ती है तो वहां पर बात करना बहुत जरूरी होता है ना।
1: बिल्कुल, जब हम मिलते रहते हैं ना तो हमारी दोस्ती बनी रहती है, जब हम थोड़ा बहुत मिलना बंद भी कर देते हैं ना फिर भी हमारी दोस्ती बनी रहती है, क्योंकि हम दिल से जुड़े होते हैं।
0: हाँ
1: कुछ रिश्ते होते हैं जो हम ऊपर से अपने साथ लेकर आते हैं, किस जिस घर में हम पैदा होते हैं
0: जी
1: वो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन एक रिश्ता जो होता है ना वो हम खुद बनाते हैं।
0: वो है दोस्ती का रिश्ता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, दोस्ती का रिश्ता है।
0: और हमारे बीच में और श्रोताओं के बीच में, सखियों के बीच में ये प्यार से रिश्ते की डोर बंधी हुई है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। प्रतिवर्ष 30 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 से की थी और इस दिवस का उद्देश्य लोगों, समाज और देश के बीच मित्रता, विश्वास और सद्भाव और शांति को बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल, और मित्रता केवल साथ में घूमने फिरने या हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती है। ये एक दूसरे की भावनाओं को समझने, गलतियों पर रोक लगाने, सही मार्ग दिखाने और सफलता पर दिल से खुश होने का नाम है। सच्चा मित्र हमारी कमियों को तो छुपाता नहीं बल्कि उन्हें दूर करने का हमें साहस देता है। वो हमारे मुंह पे बताएगा कि ये कमी है। अगर कोई हमें बताएगा नहीं हमारे अंदर क्या कमी है तो हम उसे दूर कैसे करेंगे? तो वो सच्चा मित्र जो होता है ना वो ये नहीं सोचता कि ये बुरा मान जाएगा, वो सीधे बताता है कि ये तुम्हारी कमी है, इसे तुम्हें दूर करना चाहिए।
0: और जिसके लिए कमी बताई है उसे भी बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो
1: बिल्कुल
0: फिर वो सच्चा मित्र नहीं होगा, है ना।
1: बिल्कुल, और क्या, क्योंकि आपकी गलतियां बताने वाला कोई मित्र आपके साथ है ये बहुत भाग्य की बात है।
0: जी, एक साथी ने लिखा है आरती कि दोस्त शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से फारसी से हुई है, जिसे हिंदी भाषा ने इतने प्यार से अपनाया है कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। हिंदी में इसे मित्रता या मैत्री भी कहा जाता है। इस शब्द में एक ठहराव है। यह रिश्ता खून के रिश्तों से अलग होता है क्योंकि इसे हम खुद चुनते हैं। स्वतंत्रता दोस्ती में उम्र, जाति, धर्म या हैसियत की कोई सीमा नहीं होती। ये पूरी तरह स्वतंत्र

0: मित्र और शुद्ध भावना है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो कहती हैं कि दोस्त वही जो हर हाल में साथ निभाए, बिना कहे दिल की हर बात समझ जाए। और एक और हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाए जाने की शुरुआत साल 1958 में हुई थी, और पैराग्वे के डॉक्टर थे रेमोन ऑर्टेम्यू ब्राचो ने एक अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य देशों और समाजों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देकर शांति स्थापित करना था। बाद में इस विचार को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली और 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित कर दिया।
0: एक साथ ही लिखते हैं, सच्चा मित्र वह है जो हमारी मुस्कान के पीछे दर्द को भी पढ़ ले, बिना कुछ कहे हमारे साथ खड़ा रहे। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की खुशबू कभी नहीं बदलती। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, साथ बिताए अनगिनत पल, दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाए, यदि दिलों में अपनापन हो तो दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती।
1: बिल्कुल। क्या बात। हमारे एक साथी कहते हैं, सोनाली, जब जिंदगी में बहुत बुरा हो जाए, कुछ ना रहे, और उस समय दोस्त का हाथ गलबहिया कंधे पर टिके और दोस्त ये कहे कुछ भी नहीं हुआ, बस तू ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम है ना, सच में बहुत ज्यादा इससे हमें
0: संबल मिलता
1: है। तो हमें लगता है कोई है साथ में,
0: कोई है कि अरे मैं हूँ ना, तो चिंता क्यों करता है, या चिंता क्यों करती
1: है, शब्द होते हैं
0: जी,
1: यही बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं।
0: एक साथी कहते हैं, मुझे दोस्ती पर बहुत विश्वास है, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद चुनता है, ये रिश्ता विश्वास, अपनापन, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम के मजबूत नींव पर टिका होता है। जीवन के हर सुख दुख, सफलता असफलता और कठिन समय में सच्चा दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। विविध भारती के द्वारा हमें आप जैसी सखियों के साथ कई सारे श्रोता मित्र भी मिले हैं, आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से चुना जाता है, यही रिश्ता मुश्किल वक्त में सहारा बनता है और खुशियों को दोगुना कर देता है। दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से हम चुनते हैं, और ये कहते हैं कि दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं।
0: एक साथी कहते हैं, दोस्ती जिंदगी का वो संगीत है जो पतझड़ में भी बहार का एहसास कराता है, ये कोई व्यापार नहीं बल्कि आत्मिक संबंध है, यही आपकी जिंदगी में एक भी ऐसा दोस्त है जिससे आप बिना झिझक अपने दिल की हर बात साझा कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। बहुत सुंदर बात लिखी है, इसी तरह की बातें हमारे सभी साथियों ने लिखी है।
1: तो एक गीत सुने,
0: सुनते हैं।

0: तो कितना सुंदर गीत था, और
1: बहुत
0: ये
1: प्यारा
0: गाना सुन के हर किसी को अपने दोस्त की याद आई होगी।
1: बिल्कुल
0: पर जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, भले ही वे हमारे मित्र न हो, पर एक हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक होते हैं
1: बिल्कुल
0: जिनकी बदौलत हमारी जिंदगी संवर जाती है।
1: बिल्कुल। और ऐसे ही लोग होते हैं ना जो हमें प्रेरणा देते हैं कुछ अपने भी जीवन में कुछ अच्छा कर दिखाने की
0: जी
1: और लोगों की सेवा करने की, क्योंकि वो जो सेवा के जरिए अपनी एक पहचान बनाते हैं ना, वो
0: जी
1: सच में बहुत ज्यादा उनको महान हम कह सकते हैं, क्योंकि
0: यानी
1: वो
0: उनसे हमें प्रेरणा मिलती है बहुत
1: बिल्कुल
0: ज्यादा।
1: वो दूसरों की सहायता के लिए अपनी लाइफ को अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं,
0: जी
1: समर्पित कर देते हैं।
0: जी तो आज हम याद करेंगे कहानी पद्मश्री में डॉक्टर बुधरी
1: बुधरी दाती,
0: दाती को। जी
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर बुधरी दाती छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के हीरानार गांव की प्रसिद्ध समाज सेविका है। बस्तर अंचल में उन्हें लोग प्रेम और सम्मान से बड़ी दीदी या बुआ के नाम से जानते हैं। बुधरी दाती का जन्म 15 सितंबर 1966 को हीरानगर गांव में हुआ था। वे बहुत ही साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी परिवार में जन्मी थी।
1: बिल्कुल। और जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण किया। बचपन से ही उनमें पढ़ने की लगन और समाज सेवा की भावना थी। सिर्फ 15 वर्ष की आयु थी उनकी जब उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित करने का निर्णय ले लिया। कितनी छोटी सी उम्र होती है जब बच्चे खेलते हैं, आपस में बात करना, अपनी सखी सहेलियों में लगे होते हैं, उस
0: जी
1: समय उन्होंने समाज सेवा का निर्णय लिया।
0: यानी हम तो सोच भी नहीं सकते कि उस उम्र
1: बिल्कुल
0: में इतनी इतनी सुलझी हुई सोच होगी।
1: बिल्कुल। और वर्ष 1981 में उन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ली और 1984 में वनवासी समाज के बीच सेवा कार्यों से वो जुड़ गईं।
0: आगे चल के नागपुर में सामाजिक कार्य का उन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और वर्ष 1986 में उन्होंने बस्तर के दुर्गम जिले और जंगल के में पैदल घूम घूम कर लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। उस समय अधिकांश गांवों में सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना अभियान जारी रखा।
1: और डॉक्टर बुधरी दाती ने 1990 में केवल 11 बालिकाओं के साथ में छात्रावास की शुरुआत की थी, जहां आज उनके प्रयासों से अनेक वनवासी बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने परिवारों को समझाया कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा ही है। उनके छात्रावास की कई छात्राएं आज शिक्षिका, नर्स और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
0: और डॉक्टर बुधरी दाती ने मां शंखिनी महिला उत्थान केंद्र की स्थापना करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया, जिसमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, साथ ही महिलाओं को बचत, शिक्षा और आत्मविश्वास का महत्व भी समझाया।
1: और इसके अलावा उन्होंने गांव-गांव जाकर स्वच्छता का संदेश दिया, बहुत से नशा मुक्ति अभियान चलाए, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया, साथ ही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। बस्तर और अबूझमाड़ जैसे कठिन इलाकों में काम करना आसान नहीं था और वहां पर उन्हें कई सारी धमकियों का और विरोध का सामना भी करना पड़ा था,
0: लेकिन उन्होंने सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वे लगभग 570 दूरस्थ गांवों तक पैदल पहुंची, वहां के लोगों का विश्वास जीता। डॉक्टर ताती अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीती है और उन्होंने अविवाहित रहकर समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। वो हमेशा पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में दिखाई देती है और अपनी संस्कृति पर गर्व करती है। और डॉक्टर बुधरी ताती का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता पद, धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए निस्वार्थ कामों में होती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो एक व्यक्ति भी हजारों लोगों के जीवन में आशा और परिवर्तन की नई रोशनी ला सकता है। लगभग 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल। तो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी इनका जीवन रहा है।

0: और हमेशा इन्होंने दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाया है।
1: अब एक संदेश
0: एक गीत,
1: सुनते।
0: हाँ बिल्कुल, संगीत सुन।
2: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
3: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
1: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
2: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
2: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आरती
1: रूठ ही नहीं है बस मैसेज निकाल रहे थे, कमेंट्स निकाल रहे थे,
0: मुझे
1: नहीं बोल रहे थे
0: रूठ गई
1: रूठे नहीं है क्योंकि बारिश के दिन है, घूमने फिरने का ऐसा मन करता है ना कि हाँ। चलो इतनी जो बूंदे पड़ेंगी ना चेहरे पे, मुंह पे, हाथ पे, सब बहुत अच्छा लगेगा,
0: वो जो फुहारे आती है ना, पर उसके लिए रिमझिम रिमझिम बारिश चाहिए,
1: तेज नहीं चाहिए एकदम से भागने पड़ जाए, नहीं भैया बहुत हो गया चलो,
0: फिर फिसलने का डर भी है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि अगर तेज दौड़ पड़े बारिश में तो भाई गिर गए तो फिर तो ये बारिश जो है ना हमें बहुत दुखदायक हो जाएगी।
1: पानी भर गया अगर और अब ऐसे ही चल दिए उस पानी भरे में और कुछ पैरों के नीचे आ गया तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हम बारिश के दिनों में कहीं निकलते हैं तो।
0: और उसमें ना हमारे चप्पल या फुटवेयर जो हम पहनते हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो बारिश वाली जो चप्पल होती है ना उससे छींटे भी नहीं उड़ते हैं और वो इतनी लाइट होती है ना कि वे धंसती भी नहीं है जैसे कीचड़ के इसमें, तो चप्पल का बहुत हमें खास ध्यान रखना चाहिए। और खासकर मुंबई की इतनी बारिश होती है यहाँ पर कि यहाँ पर हम बिना छाता लिए घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, ऐसा लग रहा है कि खुला है एकदम, मौसम अच्छा है और पता चला 5 मिनट के बाद में झमाझम बारिश शुरू हो गई
1: इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपना। और बारिश का केवल अगर कहा जाए तो बारिश केवल एक ऋतु नहीं है बल्कि प्रकृति का एक उत्सव है, है ना, एक उत्सव होता है कि जो धरती को नया जीवन देता है ना, जब बारिश होती है उसके बाद देखो क्या हरी एकदम लाइट हरे, मतलब हल्के हल्के हरे रंग के जो पत्ते होते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं, मतलब जो सूखी हुई डंडियां जब सूखे हुए झाड़ जो होते हैं ना धूप की वजह से हो जाते हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो एकदम खिल जाते हैं, जैसे
0: हरी हरी कोपले आ जाती है। और जैसे ना हम बाहर घूमने जब जाते हैं ना तब देखते हैं कि ऐसा लगता है कि धरती माता ने हरी रंग की शाल ओढ़ ली है,
1: बिल्कुल इतना अच्छा आंखों को लगता है, ऐसा दिमाग को इतना ज्यादा शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरा रहता है। और जैसे ही आसमान से बूंदे बरसती है ना तो सूखी धरती जो है वो मुस्कुराने लगती है कि चलो हम
0: हमारी तरह,
1: बिल्कुल, और पेड़ पौधे हरियाली की नई चादर ओढ़ लेते हैं और नदियां, झरने और पहाड़ जो है वो अपनी पूरी शोभा में नजर आने लगते हैं, ऐसे मनमोहक दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
0: और मानसून का मौसम पर्यटन प्रेमियों के लिए किसी सुंदर सपने से कम नहीं होता आरती, बादलों से घिरी पहाड़ियां, धुंध में लिपटी घाटियां, वर्षा की रिमझिम फुहारे और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को अद्भुत सुकून देती है। और बारिश के दिनों में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है, झरनों का उफान, जंगलों की हरियाली और खेतों की लहलाती फसलें यात्रियों को एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती
1: है। सच में अब हम अगर हम अपने किसी गाड़ी से जा रहे हैं ना तो या ट्रेन से भी जा रहे हैं तो ये जो दृश्य होते हैं ना ऐसे मनमोहक होते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे चित्र उकेर दिए हो धरती पे ना,
0: बहुत सुंदर,
1: बहुत सुंदर लगता है। और यही कारण है कि मॉनसून जो पर्यटन है वो आज देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, लोग शहरों की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताने निकल पड़ते हैं। लेकिन प्रकृति जितनी मोहक होती है उतनी ही संवेदनशील भी, बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद सभी तभी सार्थक होता है जब उसके साथ सावधानी भी जुड़ी हो।
0: और अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है
1: सखी
0: सखी सहेली।
1: सहेली।
0: और हम बारिश की बातें कर रहे थे आरती।
1: बारिश की बातें कर रहे थे हम, और साथ ही तेज, जो जब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है तो भूस्खलन भी हो जाता है वहां पे कभी कभी, ऐसी जगहों पे जब अचानक बढ़ता जलस्तर और जो फिसलन भरे रास्ते हैं और खराब जो दृश्यता होती है वो यात्रा को जोखिमपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए पहले से ही, और अगर किसी क्षेत्र में भारी वर्षा या बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है तो यात्रा स्थगित कर देने में ही समझदारी है। यात्रा के दौरान रेनकोट, छाता, वाटरप्रूफ जूते, अतिरिक्त कपड़े,

0: प्राथमिक उपचार की किट, आवश्यक दवाइयाँ, टॉर्च और मोबाइल के लिए वाटर प्रूफ कवर जरूर याद करके रख लें।
1: बिल्कुल रखना जरूरी है। अगर हमारा मोबाइल बंद हो गया तो हम तो फिर लोगों के संपर्क से टूट ही जाएंगे ना।
0: बिल्कुल। और जो जो प्राथमिक चिकित्सा किट होती है ना, वो तो बहुत
1: बहुत
0: जरूरी है।
1: जरूरी है। और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्धारित मार्गों पर ही चलना जरूरी है। चेतावनी बोर्डों की अनदेखी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। नदी, झरने या तेज बहाव वाले स्थानों के अत्यधिक निकट जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षणों की लापरवाही जीवन भर का पछतावा बन सकती है। आज के सोशल मीडिया के युग में सुंदर तस्वीरें और रील बनाने का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर सावधानी में ही बहुत ज्यादा सुरक्षा है। तो
0: बिल्कुल।
1: भले ही आज रील ना बन पाए तो उसमें दुख करने की जरूरत नहीं है, पर
0: बाद में
1: हम
0: बना लीजिए अगली
1: हाँ,
0: बार।
1: क्योंकि जान है तो ये खूबसूरत जहान है।
0: बिल्कुल। और कई बार लोग रोमांच के नाम पर खतरनाक चट्टानों, झरनों और किनारों या उफनती हुई नदियों के पास जाकर सेल्फी और वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसे जोखिम केवल कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे खूबसूरत तस्वीर वही है जिसे सुरक्षित घर लौटकर हम मुस्कुराते हुए देख सकते हैं।
1: ये बहुत सही बात आपने कही। और अगर हम सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो जो भी वाहन हम चला रहे हैं उसकी अच्छी तरह जांच कर लेना चाहिए। टायर है, फिर ब्रेक है, वाइपर है, हेडलाइट पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। धीमी गति से वाहन चलाएं, पर्याप्त दूरी बनाकर रखें और जल भराव वाले रास्तों से हमें बचना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय अनावश्यक यात्रा न करने से बचना चाहिए और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना हमें बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए केवल स्वच्छ और ताजा भोजन करें जब भी कहीं आप बाहर जा रहे हैं, और पर्याप्त पानी पिएं, और भीगने के बाद जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहने। हम लोग अभी बारिश की भीगने की बातें कर रहे थे, तो सूखे कपड़े आप तुरंत पहन लें। अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग साथ में हो तो उनकी सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्यटन केवल प्रकृति का आनंद लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है।
1: और सबसे जरूरी बात है आरती, कि जब भी हम बाहर जाएं स्वच्छता का ध्यान रखें, प्लास्टिक या अन्य कचरा इधर उधर ना फैलाएं, स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करें। ध्यान रहे, प्रकृति हमें जितना देती है उसे सुरक्षित रखना भी हमारा दायित्व है। और बारिश का मौसम हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर अनुभूतियां संतुलन में छिपी होती है। उत्साह और सावधानी, रोमांच और जिम्मेदारी, आनंद और अनुशासन के संतुलन में
0: बिल्कुल
1: होता है।
0: बहुत सही कहा आपने। और जब हम पूरे ध्यान से सावधानियों के साथ यात्रा करते हैं तो मानसून की हर बूंद यादों का मोती बन जाती है और हर सफर जीवन की अनमोल धरोहर बन जाता है, क्योंकि बारिश का असली आनंद तभी है जब यात्रा सुरक्षित हो, प्रकृति जो प्रकृति है वो सुरक्षित हो और मुस्कान सुरक्षित घर तक लौटे। और सावधानी रखें कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी या चेतावनी अगर कहीं दी जारी की गई है तो उस जगह की यात्रा को आप कुछ समय के लिए टाल दीजिए और बाद में जब सही हो जाए तब आप जाइए।
1: और आप क्या करें,
0: एक गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: हाँ सुनाली, बारिश के दिनों की जो हम बातें कर रहे हैं ना, तो सखियां सखा जितने भी सब लोग हैं ना, सभी लोग अपने अपने अनुभव बांट रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि अभी कल ही मेरी दो छोटी बहनें अपनी सकुशल अमरनाथ यात्रा से आई। मैं स्वास्थ्य कारणों से जा नहीं पाई, लेकिन उनकी काफी कठिन और मुश्किल भरी यात्रा थी। बारिश के कारण कई सारी रुकावटें भी आई, लेकिन सावधानी से की गई उनकी यात्रा आनंददायक और यादगार रही। क्या बात है।
0: बिल्कुल यादगार बन जाती है यात्रा जब हम सावधानी बरतते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, तो कोई जब परेशानी नहीं होती है तो फिर हम उसका लाभ भी उठा पाते हैं अच्छे से। हमारे एक साथी हैं जो कहते हैं कि कल्याण से पुणे जाते समय ये नजारा बहुत देखने को मिलता है कि बारिश के दिनों में सभी के हाथ में मोबाइल के कैमरे चमकने लगते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में घुमावदार रास्ते से ट्रेन का जाना और हरे भरे पहाड़ियां, बादल और कहीं कहीं पहाड़ों से पानी गिरते हुए देखना बड़ा ही सुखद और मनोरम होता है। चलिए आप किसी चीज में जा रहे हैं, से ट्रेन में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, चलिए आप उसमें से बना सकते हैं वीडियो, लेकिन पैदल जाते समय बहुत ध्यान रखें कि मोबाइल में ही आपका ध्यान ना रहे, सड़क पे भी ध्यान रखिए, जहां पे आप चल रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए कि आप कोई पहाड़ी पे तो नहीं है। इस तरह से अपनी सावधानी के साथ में आप करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मानसून के दौरान यात्रा करने के कई अनूठे फायदे और अनुभव है। प्राकृतिक सुंदरता का चरम इस मौसम में पहाड़, जंगल और घाटियां जीवंत हो उठती है। झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं। धुंध और बादलों का खेल दृश्यों को जादुई बना देता है। सस्ता और किफायती सफर, मानसून को पर्यटन का ऑफ सीजन माना जाता है। इस दौरान होटलों, फ्लाइट्स और स्थानीय यात्रा पैकेजों पर भी बहुत सारी छूट होती है। और ये कहते हैं कि इन दिनों मौसम बहुत सुंदर होता है।
0: ये तो है। और एक हमारे साथी हैं जो अभी वहीं पे हैं, मतलब अभी घूमने गए हुए हैं, तो बारिश में पर्यटन का आनंद और सावधानियां के बारे में बता रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में ही दर्शन करने के लिए हम आए हुए हैं जम्मू कश्मीर। इस समय बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड भी हो रही है, यानी भूस्खलन भी हो रहा है, और सावधानी पूर्वक हम इसलिए होटल में रुके हुए हैं और मौसम ठीक होने पर ही हम दर्शन करने जाएंगे। ये वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन, मतलब वो दर्शन करने गए हुए तो वो भी होटल में रुके हुए, तो आप तब तक सावधानी पूर्वक रुके रहिए जब तक मौसम अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता और रास्ता साफ नहीं हो जाता।
1: वैसे हमारे अन्य साथियों ने भी इसी विषय में बातें लिखी हैं। एक साथी लिखते हैं कि बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद प्राकृतिक हरियाली, ठंडी हवा और बहते झरनों का अनुभव कराता है, लेकिन इसके लिए वाटरप्रूफ पैकिंग, सुरक्षित जगहों का चुनाव, खान पान में सावधानी बेहद जरूरी है। बारिश में पर्यटन का आनंद मनमोहक हरियाली, पेड़ पौधे, बाग बगीचे खिल उठते हैं, जिससे चारों तरफ ताजगी रहती है, शांत वातावरण, भीड़ भाड़ कम होने से सुकून और शांति मिलती है। और ऐतिहासिक जगह जैसे मांडू है, ओरछा, उदयपुर, ऐसे ऐतिहासिक स्थान बारिश में बेहद खूबसूरत दिखते हैं। जरूरी सावधानियां हमें छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ बैग, हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही कहते हैं कि अच्छी पकड़ वाले स्किड जूते पहने, स्किड एंटी स्किड जूते पहने और खान पान हमेशा

0: ताज़ा भोजन खाए, साफ या उबला पानी पिए, इसी तरह की बातें।
1: एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि बता रही हैं कि मेरे पति की पोस्टिंग बारिश के मौसम में बांध यानी कि डैम पर होती है। करीब 3-4 साल पहले की बात है, उस समय बांध के आसपास ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। कुछ परिवार वहां पिकनिक मनाने आए हुए थे, मौके पर तैनात गार्ड ने उन्हें चेतावनी भी दी कि वो नदी या पानी के बीच में ना जाएं क्योंकि अचानक पानी बढ़ सकता है, लेकिन वो लोग नहीं माने और बीच में चले गए। तभी ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण बांध का पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में 4 लोग बह गए। बहुत बड़ी ये तो दुर्घटना हो गई। उन्होंने बताया कि मतलब बार बार चेतावनी होने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना।
0: ये बहुत लोग गलत करते हैं कि हमें अपनी जान से ज्यादा किसी चीज की चिंता नहीं करना चाहिए, उसे हमें बहुत सावधानी से उस वक्त उस सिचुएशन को बहुत सावधानी से हमें बरतना चाहिए।
1: हम क्योंकि हमारे पास हम अपनी जिम्मेदारी तो होती है, साथ में परिवार की है, जो भी लोग हमारे साथ में गए, इतने सारे लोग गए हुए, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, जिम्मेदारी को। और सरकार हमारे भले के लिए ही कहती है, वो चेतावनी जारी करती है कि हम अपनी जान को बचा सके, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सब कहा जाता है, तो उसका पालन जरूर करिए।
0: और सबसे जरूरी बात है कि बारिश में थूकना वगैरह ये सब गंदी आदतों को हमें भूलना चाहिए। वैसे तो कभी भी थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से घेर सकती है। और अब क्या किया जाए आरती, एक गाना सुन
1: एक गीत सुन लेते हैं
0: सुनते हैं गीत।

0: अब हम बात करने जा रहे हैं एक बुरी आदत के बारे में, है ना
1: एक
0: सोनाली?
1: हमारी सखी ने लिखा है आरती कि जिस जगह को हम अपनी नहीं समझते उसे गंदा करना आसान लगता है, लेकिन शहर भी आखिर हमारा ही घर है,
0: बिल्कुल.
1: ये विचार नहीं रखते हैं। मैं किसी रिश्तेदार के घर गई थी, एक 4-5 साल के बच्चे ने दीवार पर थूका,
0: ओ
1: मैंने

0: पलट कर देखा तो बोला, चाचा भी तो ऐसा ही करते हैं। हमने तो कुछ कहा नहीं, पर मन में विचारा है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा
1: वो
0: ही
1: तो है,
0: करते हैं।
1: बच्चे वही
0: बहुत
1: सीखते
0: सही
1: हैं
0: बात
1: जो
0: लिखी है
1: बिल्कुल
0: कि बच्चों के सामने हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही अपनाते हैं। तो हमारी ये कोशिश हो कि थूकना तो है ही नहीं, बिल्कुल जो पीकदान बनी होती है उसी में थूकना है। और अपने घर में जो बेसिन वगैरह होते हैं उसे भी साफ रखना बहुत
1: बिल्कुल।
0: जरूरी है। थूकने के बाद में उसमें भी पानी से अच्छे से धोना बहुत जरूरी है।
1: और हमारे साथी जो लिखते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, हम विदेशों में एहतियात बरतते हैं कि हम गलती ना करें, पर अपने देश में गलती को बार बार करते हैं। मैंने किसी से सुना कि खाड़ी देशों में अगर आप सड़कों पर जहां तहां थूकते हुए पाए गए तो उनके पास स्प्रे जैसी कुछ चीज होती है जिसे वो आपके मुंह में स्प्रे कर देते हैं, जिससे आपके मुंह में सूजन हो जाती है और आपका मुंह सूज जाता है, यही सजा दी जाती है। तो ये इस तरीके की चीजें अब हमें तो नहीं पता है, खैर ये बता रही है इस तरीके की चीज, लेकिन ये जो मैसेज है कि भाई थूकना बहुत गलत है तो
0: जी
1: वो तो आप कहीं भी मत करिए, क्योंकि जो सड़क भी है इसके भी ये भी हमारी ही है, समझिए
0: जी
1: सरकार की नहीं, ये जो हम टैक्स देते हैं उससे उसको ठीक किया जाता है। तो ये इस तरीके की चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही
0: वैसे
1: हमें
0: ही अपने घर के
1: सड़क को
0: बाहर भी स्वच्छता का
1: बिल्कुल
0: ध्यान रखना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इंदौर शहर में कोई व्यक्ति थूकते पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना लग जाता है।
1: अरे
0: तो ये तो बहुत सही है
1: इसी
0: इस।
1: तरीके की जब जब इस तरह की जब सजा मिलती है या इस तरह की चीजें जब निर्णय दिए जाते हैं ना कि आपको ऐसे देना है, पैसे देने, जुर्माना देना है, तब हम उस चीज को थोड़ा सा सोच के करते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे हमें पैसे देने पड़ जाएंगे इसलिए ना करें। तो ऐसे इस तरह से होना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि पान मसाला और गुटखा खाने की लत के कारण लोग बार बार कहीं भी थूकने पर मजबूर हो जाते हैं, और मानसिकता, सफाई के प्रति लापरवाही और सामाजिक आचार संहिता का अभाव इस आदत को और भी बढ़ावा देता है।
1: एक साथी लिखते हैं कि अपने अपने थूकने वाले लोग ये नहीं देखते कि उनके पीछे और भी लोग आ रहे हैं, और ये बहुत ही गंदी आदत है, इसके लिए इस चीज को नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे बस किसी ऑटो में बैठे हैं या बस में बैठे हैं तो हम मुंह निकाला थूक दिया, क्योंकि नीचे और जो चल रही सड़क पर चल रहे हैं लोग उनपे भी कभी कभी उनके कपड़ों पर गिर जाता है कभी कभी, इस तरह। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह से नहीं करना
0: कई बार
1: चाहिए।
0: जब हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तब भी ऑटो वाले जो भैया होते हैं वो हालांकि दिन भर वो काम करते रहते हैं, पर जरूरी नहीं नहीं वो चलाते चलाते ऐसे थूक देते, तेज हवा आई तो उसका छींटा जो है पीछे वाले लोगों पर आ सकता है। और
1: बिल्कुल
0: एक साथी ने लिखा है कि खुले में थूकने से टीबी और अन्य सांस संबंधी संक्रमण हवा और सतह के जरिए तेजी से फैलते हैं। गंदगी से गलियां, दीवारें और सार्वजनिक स्थल बदरंग और गंदे हो जाते हैं, जो शहर की खूबसूरती को बिगाड़ते हैं, और साथ ही खुद का स्वास्थ्य भी खराब होता है कि हवा से जो जीवाणु है, कीटाणु है, वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और हम भी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें थूकने की आदत को तो अलविदा
1: बिल्कुल
0: कहना ही
1: बिल्कुल।
0: चाहिए।
1: और एक साथी जो लिखते हैं कि एक सभ्य इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी आदतों से होती है। जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कहीं भी थूक देता है तो उसे देखकर मन में खिन्नता होना स्वाभाविक है। तो ऐसी आदतें न केवल वातावरण को अस्वच्छ बनाती हैं बल्कि कई बीमारियां फैलने का भी कारण बनती हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए हमें।
0: एक साथी ने लिखा है कि मेरी शॉप के आगे जब लोग थूकते हैं तो मैंने साफ शब्दों में मना करता हूँ, ऐसी जगह मक्खी मच्छर होते हैं जो बीमारी का कारण बनता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक कानूनी अपराध है। और इन्होंने कहा है कि इस तरह से ये दंड जो है ये तो लोगों को डराने के लिए, एक आदत लगाने के लिए दंड है, पर हमें खुद से ही इन आदतों को अपनाना चाहिए कि इसके साथ सामने वाले के साथ साथ हमारा भी इसमें फायदा ही होता है।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक गुजरात के बड़ौदा जो बस अड्डा है वहां पर पान मसाला तंबाकू पाए जाने पर जुर्माना लगता है, और मेरे सामने एक बार बस में मैं जब बस अड्डे पर खड़ा था तो एक भाई ने तंबाकू की पूड़ी निकाली, दोनों हाथों से उसको बना रहे थे, तो सिक्योरिटी वाले आए और 200 रुपए का दंड किया का जुर्माना भी लगाया, और तंबाकू की जो बना रहे थे वो पूड़ी उसको भी ले गए। और स्वच्छता का अभियान और स्वस्थ रहने का अभियान चलाया जाता है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो करते रहना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे।
0: और अब गीत सुन ले।
1: गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ सोनाली, अब हम बात करेंगे कुछ उपयोगी टिप्स के बारे में, है ना। तो हमारे साथी जो लिखते हैं कि रसोई में काम करते समय तेल के छींटे उंगलियों और हाथों में लग जाते हैं, जैसे कि अगर आपको लग जाए तो आप पहले ठंडे पानी के नीचे रखें अपने हाथ को, और वहां पर मलाई से कुछ दही लगा लीजिए, कुछ ठंडी चीज लगा लीजिए। ये जलन को भी शांत कर देता है और फफोले भी नहीं पड़ते हैं। और अधिक जल जाए तब तो फिर मरहम और डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ती है। और हल्की फुल्की जलने पर ठंडा दूध भी बहुत फायदेमंद होता है। तो कभी कभी तवे पर उंगलियां सट जाती हैं या पकौड़ियां तलते समय उंगलियां तेल में टच कर जाती हैं, तो ऐसे में आप ठंडा दूध या थोड़ी देर में पानी में रखने पर भी जलन खत्म हो जाएगी।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि किचन में जो हम हाथ अगर कट जाता है तो उसमें तुरंत ही सरसों का तेल लगा लिया जाए तो खून रुक जाता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है, और उसी जगह पर चीनी लगा ले तो खून तुरंत रुक जाता है। ये काम मैंने बच्चों पर खूब आजमाया है। बच्चे अक्सर गिर जाते थे, होंठ कट जाता था तो चीनी लगा देती थी। जलने पर तो तुरंत उस जगह पर ठंडा पानी या बर्फ या टूथपेस्ट लगाना चाहिए, हो सके तो। अगर ज्यादा चोट है तो डॉक्टर के पास
0: बिल्कुल,
1: जाना जरूरी है।
0: ज्यादा चोट है तो आप अपना इलाज बिल्कुल भी ना करें,
1: बिल्कुल,
0: सीधे
1: तुरंत ही
0: डॉक्टर
1: डॉक्टर
0: के
1: के
0: पास
1: पास
0: जाएं,
1: जी।
0: और छोटे मोटे चीजों में ही है आप इसको अपनाएं। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि और कुछ अगर पास में नहीं है तो आप बोरो प्लस भी लगा सकते हैं, वैसे आप कोई चीज तरह की कोई चीज आप लगा सकते हैं। और साथ ही आप कोई घरेलू जैसे कि आलू वगैरह है इनको
1: जी
0: काट के लगा सकते हैं।
1: एक ने लिखा है कि अगर उंगली जल गई है तो हल्की हल्की सिकाई करके उसे ठीक कर सकते हैं। पानी में उंगली डाल दी तो फफोला पड़ना अनिवार्य है, किंतु यदि जले हुए त्वचा का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उचित उपचार की आवश्यकता है। और इन्होंने वही कहा है कि बर्फ से सिकाई करना है, उसके बाद में बहते हुए पानी के नीचे हाथ धोना है, उसके बाद में सबसे पहले है कि उसको धोना जरूरी है कि उसमें जो कुछ कीटाणु अगर लग गए हैं तो उसे बह जाने देना है, और उसके बाद में साफ पट्टी चिपका ले। इसके बाद में इसी तरह का उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ठंडे पानी में हाथ डालना चाहिए अगर जल गया है तो, सीधी बर्फ ना लगाए, और घाव सूजने से पहले जली हुई जगह से अंगूठी या तंग कपड़े या धीरे से हटा दे। और उन्होंने कहा कि छाले जो आ जाते हैं ना, उंगलियों में पड़ जाते हैं छाले, तो उन्हें फोड़ना नहीं है छालों को, क्योंकि उससे बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल, सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसको बर्फ के पानी में, ठंडे ठंडे पानी में अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए रखिए बहते पानी में, तो उससे रहता है ना कि ठंडक पड़ती है और जलन जो है वो शांत हो जाती है। लेकिन अगर अपनी तरफ से कोई अगर बहुत ज्यादा जल गया तो अपनी तरफ से कुछ उसमें मत लगाइए, आप सीधे डॉक्टर को दिखाइए तो वो उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं।
1: और आप क्या करें,
0: ये गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं गीत।
2: झांझरे रुंचुन रुंचुन

0: तो आरती, सखियों के हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सभी साथियों को हम शुक्रिया कहते हैं और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करते हैं बातें और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम श्रोताओं को विविध भारती से और विविध भारती को श्रोताओं से जोड़ने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर हम बोल रहे हैं अतीक खान बोल रहे हैं। सर
0: कहाँ से?
1: सर गांव का नाम है भरोदिया बल्लर और जिला लगता है सागर।
0: सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं
1: जी सर।
0: तो सागर से कितनी दूर हुआ आपका गांव?
1: सर गांव है 30 किलोमीटर।

0: दूर दूरी पे है।
1: अच्छा, और बताइए बारिश वारिश कैसी हो रही भाई?
0: सर अभी तो सर बारिश नहीं हुई सर, एक हफ्ता हुआ हुई थी सर बारिश।
1: अपने गांव में खेती कहाँ होते हैं?
0: सर खेती अपने नहीं होती है, थोड़ा इनकी
1: नदी अद्दी कोई
0: नदी नहीं लगी यहाँ पे सर,
1: तलाव
0: छोटी नदी है, छोटी बहुत नदी है।
1: तलाव बहे थे कोई?
0: नहीं सर तलाव है तो सर अपने गाँव में नहीं, सर दूर पे तलाव थोड़े यहाँ से।
1: हो बाकी का हाल चाल?
0: सर सब बढ़िया है, आप लोग की दुआएं सर।
1: अच्छा, आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
0: सर आज गाना सुनना आज की मूवी का।
1: कौन सा गाना?
0: नगर के सामने जिगर के पास।
1: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता दी।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला।
0: अच्छा जी।
1: सर आपको एक बार मैं गाना राजस्थानी सुनाया था, सर आपको याद हो तो।
0: याद तो नहीं है भैया, आज क्या गाना सुनाने वाले हैं बताइए
1: जी। मैं आज सुनाता हूँ।

0: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही मशहूर भजन है।
1: जी, ये मैं भजन सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है और मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, विविध भारती पर मेरा फोन लग गया सर।
0: जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आपसे बात हो रही है। और मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम बहुत ज्यादा सुनते हैं और उसमें से कौन से कार्यक्रम बहुत पसंद है?
1: जी सर, मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ क्योंकि हम दिव्यांग आदमी है, तो क्योंकि रेडियो से अलावा तो हमारे वो कुछ सहारा नहीं है, तो इसलिए हम बहुत सारे कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं। आज के पनकार हो गए, कुछ बातें कुछ गीत हो गए, अभी आपने बदलाव कर दिया गीत माला, तो ये आप सभी सुनते हैं। और जो SMS वाला कार्यक्रम पहले आता था वो भी सुनते थे। हवा मेलो नाटक तरंग जो 3:30 बजे शनिवार को आता है वो भी मैं सुनता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, आप तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: मेरे को ये खुशी होती है कि जिसका भी विविध भारती बम्बई में फोन लग जाता है ना सर, कि देश के कोने कोने में उनकी आवाज पहुंचती है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ विविध भारती में बम्बई में अगर जिसका फोन लगेगा तो वहाँ आवाज नहीं पहुंचेगी सर।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी सर, आज फिल्म का नाम रहेगा कुसूर और उसमें गाने के बोल है कल रात हो गई थी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विविध भारती में फोन किया और अपनी ये पसंद हमें बताई। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: अरे भाई, ये तो दतरेंगी से नारायण प्रसाद वर्मा, ये वही हैं जिनकी फरमाइश आती हैं?
1: नहीं सर जी, नहीं सर जी, वो अलग है सर जी, मेरा जिला बेमेतरा है सर जी।
0: लेकिन नाम एक ही है?
1: नहीं नहीं सर, उस नाम से दतरेंगी में नहीं है सर जी।
0: अच्छा, तो बताइए क्या हालचाल है छत्तीसगढ़ के?
1: हाँ सर जी, हम लोग अब सभी अच्छे हैं और हमारे यहाँ तो बारिश अच्छी हुई है सर जी, और मैं किसान आदमी हूँ।
0: अच्छा, तो अभी क्या गतिविधियाँ?
1: हाँ, अभी धान का रोपाई का काम जारी है।
0: धान का कटोरा है छत्तीसगढ़
1: जी सर, धान का कटोरा है हमारे छत्तीसगढ़।
0: किस किस तरह के चावल उगाते हैं आप?
1: हमारे यहाँ मोटा चावल भी लेते हैं सर जी, और पतला चावल, दोनों प्रकार का चावल लेते हैं सर जी, और कुछ अपना सुगंधित चावल भी लेते हैं सर जी। हमारे यहाँ
0: बासमती की बहुत सारी किस्में होती हैं।
1: हाँ सर जी,
0: क्या बात है। आज बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: फिल्म रंग का गाना सुना दीजिए सर जी, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ सर जी कि हम लोग विविध भारती जब तक नहीं सुनते हमको चैन आता ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सर जी।
0: तो चलिए भाई, आपको चैन आए इसलिए रंग फिल्म का गीत आप तक पहुँच रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते सर,
0: नमस्ते जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ से बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: जी बताइए, नांदेड़ के क्या हालचाल है भाई?
1: नांदेड़ में तो सर अभी बारिश चल रहा है।
0: अच्छा, बारिश अच्छी चल रही है।
1: हाँ जी।
0: और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: कामकाज तो सर अभी मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर जिंदगी के मजे ले रहे हैं।
1: हाँ सर, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ फिर भी।
0: क्या बात है, यानी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
1: बिल्कुल सही सर।
0: बताइए कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करते हैं आप?
1: रिटायरमेंट के बाद बोर हो जाता कि समझ में नहीं आता कि क्या करना है अपने सेहत के वास्ते, फिर अपने को दूसरी नौकरी ढूंढ ली सर। मैं
0: बहुत ही बढ़िया है। तो कितने घंटे काम करते हैं दिन में?
1: अब दिन में 8 घंटे करते हैं सर।
0: बढ़िया। और छुट्टी के दिन क्या दिनचर्या होती है?
1: छुट्टी देंगे सर, अपना रेडियो साथ रहता है, गार्डन वगैरह घूम के आते सर।
0: बहुत ही बढ़िया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज बगावत फिल्म का है सर, नागंता रूप है तेरा।
0: वाह, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डस ले तो क्या कहना।

0: अपना शिमला में था मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर माहौल में हमारे पास तीन चार चार हम इकट्ठे थे, एक होता था एनसीसी वाला तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ था, एक और होते थे वो होते थे अपना एक बॉर्डर रोड्स के, और एक और लड़का था, तो हम चार थे। तो सडनली वो जो एनसीसी का था, आज भी मुझे याद है, सतीश सूद उसका नाम था, वो अंडर ऑफिसर होता था, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा फ्रेंड सिर्फ इसलिए था, नॉट बिकॉज ऑफ एनसीसी, क्योंकि मैंने एनसीसी नहीं ली थी, क्योंकि एनसीसी की सैटरडे को जब परेड हो जाती है तो चाय और समोसे मिलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो हमारा अट्रैक्शन होता था कि चाय और समोसे मिल हो जाती है तो चाय और समोसे मिलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो हमारा अट्रैक्शन होता था कि चाय और समोसे मिलने चाहिए, तो वहां हमारा इंट्रैक्शन उससे बढ़ा, और देखा कि फाइनली वो एग्जाम दे रहा है। जब वो एग्जाम दे रहा था तो हमने कहा चलो भाई हम भी एग्जाम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था कि अब ग्रेजुएशन के बाद क्या, कितना और। सो मुझे लगा कि इस एग्जाम को दे देने में कोई बुराई नहीं है, एंड स्पेशली बिकॉज मेरे फादर तब तक इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे और मैं अकेला रह रहा था, तो मैंने ये एग्जाम दे दिया। और एग्जाम देने के बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन का फाइनल डे का एग्जाम दिया, उस दिन शाम को मैंने कॉर्पोरेट हाउस में जस्ट लाइक दैट स्पेकुलेटिवली इंटरव्यू दे दिया, और उस इंटरव्यू में मेरे को उन्होंने थ्रू कर दिया।
1: अच्छा।
0: और उन्होंने बोला कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। सो मतलब मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरी जॉब लग गई।
1: अरे वाह।
0: और उस जॉब के साथ ही साथ एक और खुशखबरी आई कि आपका CDS एग्जाम क्लियर हो गया है।
1: वाह।
0: तो वहां से कॉल अप लेटर आ गया SSB का, तो हमने उस जॉब के अंदर 3 दिन की छुट्टी लेकर गए कि भाई जाकर देख कर आते हैं बेंगलोर में क्या हो रहा है, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वहां गए, वहां पर देखा कि वो पहले दिन, अदरवाइज काफी को पहले दिन वापस कर दिया जाता है, तो पहले दिन हमारा पता नहीं क्यों सिलेक्शन हो गया।
1: अच्छा।
0: अच्छा, अगले 3 दिन उन्होंने और कराया, ग्रुप टास्क, ये टास्क, वो स्टाफ,
1: तो
0: हाँ GTOs वाला जो काम था वो भी आ गया, तो वहां फिर लाइनअप लगी। तो वहां पर 3 लड़कों को बोला गया कि तुम आगे और बाकी पीछे, और पीछे वालों को बोला गया पीछे मुड़, तेज चल, आप बाहर जाइए, आगे 3 वाले। तो वहां पर एक बड़ी अच्छी सी ड्रिल होती है कि बच्चा लोग गाड़ी में चढ़ो जो रिजेक्ट हो गए, साहब लोग आप आगे आओ।
1: अच्छा।
0: तो हम उस दिन साहब बन गए सडनली।
1: सो
0: आई हैड टू एक्सटेंड माई लीव के भाई चलिए अभी 3 दिन और मेडिकल होना है, तो इसने मेडिकल होता रहा। अब वो पता नहीं क्या किस्मत, यही बोलते हैं कि हर चीज पहली बार में होती चली गई, और उसके लिए आज मैं जरूर ये मानता हूं कि आई वाज डेस्टाइंड फॉर दिस, मेरी किस्मत जो थी भगवान ने फौज के लिए ही लिखी थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फौज के साथ शादी करी, काश मैं अपनी बीबी के साथ निभा पाता।
1: क्या बात है। अच्छा कनक साहब, एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी, अगर मैं आपके अतीत के पन्नों को पलटूं, आपके बचपन जिसे आपने हमने बताया कि आपको लगता था you are full of life and you were full of life, बचपन को जीना चाहते थे, खूब दुनिया को देखना चाहते थे, अपनी तरह से चीजों को करना चाहते थे, आपने कहा कि शैतानियां भरपूर करते थे, शैतानियों से ऊपर शैतानी करते, जिसकी वजह से आप स्कूल कैप्टन बन गए 2 बार, क्या वो शैतानी फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद बरकरार रही?

0: या एक अलग सा ड्रिफ्ट आ गया आपकी जिंदगी में, सोचने समझने की क्षमता या सोचने समझने का नजरिया पूरा बदल गया सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद?
1: नहीं, बट मुझे लगा कि मैंने फौज में बढ़ चढ़ के शैतानी करी,
0: अच्छा,
1: बढ़
0: इतना
1: चढ़ के,
0: शैतानी,
1: बढ़ चढ़ के।
0: क्या बात है।
1: जो जो बारिश जो बारिश में मैं अपने एज अ सन ऑफ आर्मी ऑफिसर नहीं कर पाया कि मैं शर्ट खोलकर निक्कर पहनकर बारिश
0: अच्छा
1: में भीगूं और एंजॉय करूं, जो मैं वहां नहीं कर पाया वो मैंने फौज में किया
0: वाह।
1: अपने जवानों के साथ कि भाई चलो आज बारिश तगड़ी आ रही है, सब अपनी अपनी शर्ट उतारेंगे। अदरवाइज मेरे फादर तो कभी शर्ट उतारने नहीं देते कि पब्लिकली आप कैसे उतार सकते हो। हम तो जब बास्केटबॉल खेलते थे तो अभी भी फौजी याद करते होंगे, मैं तो अभी भी याद कर सकता हूँ। एक होती थी बनियान वाली टीम और एक होती थी नंगा टीम। नंगा टीम का मतलब है आपकी बनियान नहीं होगी
0: अच्छा,
1: और जो दूसरी टीम है उसके बाद बनियान होगी। पता नहीं क्यों मैं हमेशा नंगा टीम का पार्ट होता था कि यार बनियान उतारने को मिल रहा है। सो मैंने मैंने अपनी तरफ से भरपूर शैतानी करी। मैंने अगर ऑपरेशनल शैतानी भी बोलो तो उसमें भी मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी कि जहां लोगों का कहना था कि आपको गोली चलाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की परमिशन चाहिए, हमें कभी किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने पूछा जरूर, हमारा एक्सप्लेनेशन भी हुआ कि
0: अच्छा
1: आपने क्यों किया, बट हमने अपनी तरफ से खुल के जिंदगी जी है फौज के लिए और फौज की मौज के लिए।
0: वाह, क्या बात है। वो जो आपके अंदर बच्चा विराजमान था और है, उसी ने कहीं ना कहीं आपको कहे थे ना ट्रू जेंटलमैन, उसी ने आपको ट्रू जेंटलमैन बनाया, और उसका परिचय आज आपसे बात करते हुए मिलता है कि वो ट्रू जेंटलमैन उस बच्चे ने आपको बनाया, और बच्चा आज भी जिंदा है, आपसे बात करते हुए महसूस हो रहा है। तो उस बच्चे के नाम ना ये गाना हमारी तरफ से।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अगर इनके कैनवस को देखूं ना मैं, तो मैं कहूंगी हिज कैनवस इज लार्जर देन लाइफ। व्हाई? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के नाम किया है, और वो हिस्सा ना आज भी देश की ही बात करता है। लेकिन कहते हैं कि जिंदा दिली व्यक्ति को हमेशा हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए भी जीने के लिए प्रेरित करती है, और इसकी जिंदा दिली की वजह से हमारा आज का ये शो, आज का ये कार्यक्रम किसी और दिशा में है। और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस दिशा में ना गोते मार रही हूं। अब कर्नल सिंह, आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। भले ही आपने अपनी जिंदगी, आपकी सोच, आपका परसेप्शन जीवन जीने का मौज मस्ती के साथ रहा हो, पर मैं ये बात जरूर कह सकती हूँ कि आपसे लोग डरते भी बहुत होंगे। जब डिसिप्लिन की बात आती होगी, जब फौज में रहे, जब कमांड किया, जब नेतृत्व किया, जब फैसले लिए, तो माहौल उस वक्त कुछ और रहा होगा, निश्चित है।
1: नहीं, देखिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, मैं मान लूंगा इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हर वो डिसीजन जो लिया उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। अगर मैंने अपने बैटरी को या अपनी कंपनी को बोला कि हम इस दिशा में जाएंगे, और मालूम है कि वो दिशा गलत है, तो मैं उसमें सबसे आगे चल रहा था कि यस, हम गलत जा रहे हैं, हमें मालूम है कि यहाँ रिस्क है और हम रिस्क लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें आगे हूँ तुम्हारे साथ। इसलिए मेरे को कभी नहीं नजर आया कि कहीं किसी ने आंख भी झपकी हो कि अगर मैंने कह दिया कि इधर, तो सिर्फ इधर ही होगा, उधर का मामला हो नहीं सकता। क्योंकि मेरी रेजिमेंट आज भी मुझे कई बार सो कॉल्ड ब्लेम कर लेती है कि जिसने इधर का उधर देखा उसका बैंड बाजा बारात उधर ही बज गया। मतलब हमारे टाइम में हमारे को ये कष्ट नहीं होता था कि हमने किसके थप्पड़ मारा या नहीं मारा, किसकी कुटाई हुई या नहीं हुई। बड़ी सीधी बात है कि जो तू कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो तू करेगा। सो दैट इज द वे जो लाइफ है। और मुझे लगता है कि रेजिमेंट्स के अंदर जो लाइफ होती है वो बड़ी अलग लाइफ होती है। आप में और आपके जवान में फर्क नहीं है, फर्क है तो सिर्फ कंधे का है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब हम गेम खेलते हैं तो हम कंधे पर स्टार लगाकर नहीं खेलते हैं। उसमें अगर मेरे जवान बिना बनियान का नंगा टीम का पार्ट है, तो मैं भी उतना ही नंगा टीम का पार्ट हूं कि मैंने भी सिर्फ अपना शॉर्ट्स पहने हैं, निक्कर पहनी है, जूते पहने हैं, इसके अलावा मैं बिल्कुल उसके साथ हूं। जिसको बोलते हैं ना, कंधे से कंधा नहीं, छाती से छाती टकराती है। और वहां हम पाते हैं कि हमारा जवान कभी नहीं ये सोचता कि मेरा अफसर कहीं डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट है या नहीं। यूनिफॉर्म पहनी है, यूनिफॉर्म सही पहननी पड़ेगी। सलूट मारना है, सलूट सही मारना ही पड़ेगा। इसके लिए कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें आपकी टुकाई नहीं होगी, मेरे तरीके से ठुकाई होगी। बड़ा सीधा सीधा तरीका है काम करने का। मुझे लगता है कि आज भी मेरी रेजिमेंट जब जिस तरीके से मुझे याद करती है, मुझे आज तक उसमें यह नजर नहीं आया कि किसी ने यह कहा हो कि सर आपने मुझे गलत मारा। आज भी लोग कहते हैं सर आप आरपी गेट में घुसते थे तो हम इधर उधर हो जाते थे कि भाई साहब बवंडर आ गया, पता नहीं आज किसको लपेटेगा। सो

0: दैट इज अ सिकनेस. सिकनेस को अगर सिकनेस की तरह देखना है तो यस इट वॉज सिकनेस, बट मुझे लगता है मेरी रेजिमेंट की इज्जत, मेरे रेजिमेंट की डिसिप्लिन किसी हालत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती. मैं इनडिसिप्लिन हो सकता हूं, मेरा जवान हो सकता है, बट रेजिमेंट के नाम पर गलत चीज होने नहीं दूंगा.
1: जी बिल्कुल। अब बात करते हैं उस दौर की जिस दौर में आप सीडीएस आपने क्लियर किया, सीडीएस क्लियर करने के बाद घर पर बताया, पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी?
0: नहीं, पिताजी एक्चुअली बहुत ज्यादा कीन नहीं थे, क्योंकि देखिए ये जब 85, 86, 87 ये जो वो वाला दौर है जहां आर्मी में तनख्वाह बहुत कम थी, तब तक मेरा कॉरपोरेट हाउस में ऑलरेडी जॉब लग गया. 2800 रुपये मेरे को पहली तनख्वाह वहां मिली, और फौज में वापस अगर मैं ज्वाइन कर रहा था तो जीरो थी. ये तो हमारी अगेन किस्मत है कि हमें 1500 रुपये महीना वहां पर भी अलाउड हो गए, लेकिन एकेडमी के रूल्स अपने होते हैं, वो 1500 आपको कभी मिले नहीं. बोला आपके जमा होते रहेंगे, आप नहीं तो खर्च कर दोगे, मतलब खाने पीने में दाएं बाएं कर दोगे. सो माई फादर वॉज वेरी क्लियर कि भाई एक काम करो बेटा, देखो देख लो अच्छा खासा तुम्हारे पास 2800 का जॉब है, अब आप जीरो पर आ जाओगे. और उस समय एक लेफ्टिनेंट की, सेकंड लेफ्टिनेंट की जो पे थी वो भी 2300 रुपये थी, मतलब 2800 से भी कम. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मुझे अलाउ किया. हालांकि मैं अब अगर बाद में देखता हूं ना, सबसे बड़ी खुशी अगर कहीं किसी को हुई थी तो मुझे लगता है मेरे फादर को हुई थी.
1: अपने बेटे को अपने पद चिन्हों पर चलता देख किसी भी पिता के लिए गर्व की बात हो सकती है, और आप उसका उदाहरण भी हैं। तो 1987 में आप ओटी गए, ओटीए चेन्नई, जहाँ से आपने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके बाद फिर 1988 में कमीशन हुए,
0: जी
1: तो
0: जी
1: पहला डिप्लॉयमेंट कहाँ डिप्लॉय किए गए?
0: ओ ये मेरी बदकिस्मती है
1: अच्छा।
0: के पोस्टिंग आई जोरिया, दैट इज जम्मू, लेकिन उसकी एडवांस पार्टी जा रही थी मेरठ.
1: अच्छा।
0: सो हमें बोला गया एकदम से जाओ, और वो इसलिए जाओ क्योंकि वो गेम्स जो है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो इस वजह से हमें मेरठ आना पड़ा. लेकिन यहीं पर बोलते हैं कि किस्मत का टर्न देखिए, वर्स्ट राइट्स ऑफ इंडिया टुक प्लेस वो समय 1988 वाले वो मेरठ में हुए थे, और आज मैं कह सकता हूं तब से लेकर अब तक कभी कोई रॉइट नहीं हुआ मेरठ में.
1: वाह।
0: तो ये किस्मत वाली बात है कि मैं उसका पार्ट था, और वहीं से पंजाब की ऑप रक्षक वाला जो डिप्लॉयमेंट था वो हमारी यूनिट को मिला. तो मेरे को आज भी याद है हम धालीवाल में थे, हम डेरा बाबा नानक वाला जो इलाका है वहां थे, जहां पर के ट्रेन जब जाती थी तो वो डेरा बाबा नानक के रेलवे स्टेशन पर नहीं जाती थी, वो उससे 2 किलोमीटर पहले ही रुक के वापस आ जाती थी, क्योंकि उसमें कोई होता ही नहीं था. तो एक बार तो मैं अकेला था, अकेला ट्रेवलर इन द ट्रेन. और सबसे बड़ी वो देखिए कि काउंटर इंसर्जेंसी का टाइम चल रहा है और मैं अपनी कार्बाइन लेके चल रहा हूं, तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं कोई दूर दूर तक नहीं है, तो मैंने फटाफट अपना सूटकेस खोला, कार्बाइन उसके अंदर रखी और उसे बंद किया. मैंने कहा अगर यहां तो दिख गया किसी को तो शायद वो कार्बाइन के लिए आएगा. लेकिन जब मेरे को थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि भाई अगर मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो व्हाई नॉट कार्बाइन, सो आई टुक इट आउट, आई डिस्प्लेड. मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल गया, लोगों ने दाएं बाएं देखा लेकिन कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई, नजर नहीं उठाई कि भाई एक फौजी जा रहा है अपना सूटकेस पकड़कर. सो लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट. हमें सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर मौका मिला कि हम काउंटर इंसर्जेंसी पंजाब में पार्टिसिपेट करें.
1: क्या बात है, बहुत गर्व महसूस हुआ करता होगा ना उस वक्त, जब जैसे जैसे ऑपरेशंस मिलते होंगे और जिन जिन ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते गए, तो जैसे कि आप खुद एक डेस्टिनी लावर हैं कि किस तरह के से आपकी किस्मत आपको आर्म्ड फोर्सेस ले आई, उसी तरह से जैसे जैसे आपको ऑपरेशन मिले होंगे और जिस जिस ऑपरेशन पर आपने हिस्सा लिया, गौरवान्वित महसूस करते होंगे बहुत ज्यादा।
0: गौरवान्वित तो बहुत अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी.
1: अच्छा।
0: मुझे तो लगता था आर्मी चीफ जो है वो टाइम पास कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं जो काम कर रहा हूं. मेरे लिए तो उससे बड़ी चीज, मेरे लिए कोई कमांडिंग ऑफिसर, जीओसी कुछ नहीं. मुझे लगता था मैं ही हूं, मैं मतलब मैं और मेरी कंपनी, हम दो ही हैं जो दुनिया ठीक करने वाले हैं, पूरी काउंटर इंसर्जेंसी को ठीक करने वाले हैं. सो गौरवान्वित तो मेरे को लगता है बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा मेरे लिए. हम लोग बहुत ऊंचाई पर थे.
1: वाह क्या बात है। ये जो फीलिंग है ना आपकी कि सब कुछ अब मुझ पर निर्भर करता है और मेरे फैसले से कायापलट हो सकती है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि यू वर अगेंस्ट एनीथिंग, आपने अपनी जिम्मेदारी को

0: से पकड़ लिया था कि अब जो करना है मुझे करना है, सब कुछ मेरे कंधों तले है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं करण साहब?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि हम ही उस जगह की डेस्टिनी बना रहे थे, ऐसा हमें लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं है मुझे। आज भी अगर मैं बोलूं तो आपके स्टूडियो में बैठकर मुझे नहीं लग रहा कि आप बोल रही हैं, मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूं।
0: वाह क्या बात,
1: मैं आपका शो कंडक्ट कर रहा हूं मुझे। और ये मैंने अपनी फौज में जिया है, अपने जवानों के साथ जिया है, अपनी रेजिमेंट के साथ जिया है। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं आर्मी के लिए लड़ रहा हूं या मैं देश के लिए लड़ रहा हूं। मैं लड़ रहा था, काम कर रहा था मेरी रेजिमेंट और मेरे जवानों के लिए।
0: बहुत खूब बहुत खूब। तो वो और कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं आपके जिनका आप यहाँ जिक्र करना चाहते हैं? क्योंकि हर ऑपरेशंस, मैं कहती हूँ कि शायद हमारे पास इतना समय नहीं कि हर ऑपरेशन पर बात कर पाए, पर निश्चित रूप से आपके पास इतनी सारी बातें हैं, लेकिन हम उन ऑपरेशंस का नाम जरूर ले सकते हैं यहाँ पर।
1: देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि सबसे रिवॉर्डिंग ऑपरेशन अगर बात करी जाए तो आई थिंक मेरे लिए जेएन के रहेगा श्रीनगर।
0: जी,
1: क्योंकि उसका रिवॉर्ड ये था कि मैं जेएनके के सो कॉल्ड काउंटर इंसर्जेंसी में था और मेरी वहाँ शादी हो गई। सो इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है? अगर कहीं किसी और दिल्ली विल्ली में होता तो पता नहीं कोई शादी करता या नहीं, बट हवाई श्रीनगर में शादी हो गई।
0: वाह क्या बात है। तो आपने उन्हें चुना या उन्होंने आपको चुना या किसी और ने आप दोनों को मिलवाया और आपको प्रणय सूत्र में बांधा?
1: नहीं, ये ना एक्चुअली हमारे फौज में तो जो सीनियर फौजी होते हैं ना वो बड़े तगड़े होते हैं। तो मेरी वाइफ के जो चाचा जी थे वो फौज में थे और वो वहीं पर श्रीनगर में थे। उन्होंने मेरे ऊपर पूरा अच्छा खासा होमवर्क रिसर्च करके और ठा करके सामने रख दी लड़की। अब वही वाली बात है कि फौजियों की एक कमजोरी ये जरूर होती है कि सुंदर चीज को सुंदर मानने में बुराई कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड वी गॉट मैरिड।
0: क्या बात है,
1: श्रीनगर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड शादी।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। मतलब यहाँ से तो पूरी काया पलट हो गई। और जो सुंदर काया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन की काया को बहुत सुंदर बनाया हुआ है आज तक, वो आपको मिल गई। अच्छा, अब कारगिल युद्ध की अगर बात करें, ये आपके जीवन का शायद एक ऐसा चैप्टर जरूर रहा होगा जिसके बारे में आप बार बार जिक्र करना चाहते हैं।
1: मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है हमारे लिए। कारगिल हमने अपने इस हाथ में अपने बंदे खोए हैं। आज भी मेरे घर मेरे मेरे हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये लाल हाथ दिखते हैं। कारगिल वो लड़ाई थी जो कभी नहीं लड़ी जा सकती फिर से, ना पहले ना बाद में। उन हाइट्स को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस आ सकता है कि ये लड़ाई हो ही नहीं सकती जिस लड़ाई को हमारी फौज लड़ गई। जिन जिन जिन टारगेट्स के ऊपर हम गोला दाग रहे थे, जिसके ऊपर हमारे अपने लोग चढ़ रहे थे, हम उसमें से एक थे, कि उस चढ़ाई को चढ़ना इम्पॉसिबल, मेरे ख्याल बड़ा छोटा वर्ड होगा, दैट इम्पॉसिबिलिटी वॉज मच बिगर, बहुत बड़ी इम्पॉसिबिलिटी थी। बट उसके बावजूद जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे वो अनहोनी चीजें करते जा रहे थे, वहां से निकलकर आ रहा था कि यार ये करना अब हमारे लिए रूटीन है। जब पहली पोस्ट आप कैप्चर करते हो तो तकलीफ होती है, उसके बाद आई थिंक बड़ा फेमस डायलॉग यू नो टाइगर हिल वाली साइड में चला, हम बटालिक साइड में थे, लेकिन वहां से और यहां से कॉमनैलिटी ये आई कि अब दिल ना मांगे मोर, अब दिल मांगे मोर एंड मोर।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा,
1: सीधी सीधी मोर एंड मोर पर बात आ गई थी। कोई जवान कोई अफसर सेटिस्फाइड ही नहीं था कि एक पोस्ट कैप्चर कर ली तो अब यहां रुको, अगले पर, उससे अगले पर। वो जो स्पिरिट थी मुझे लगता है वो सब इम्पॉसिबिलिटीज को पीछे कर बैठी और अपने आप में वो लड़ाई एक विनिंग लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। अदरवाइज मैं आपको जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूं, 15,000-18,000 फीट पर जहां ऑक्सीजन कंटेंट आपको 30% मिलता है, सांस लेना अपने आप में तकलीफ है, आप वहां भाग रहे थे, आप वहां दुश्मन के पोस्ट की तरफ भाग रहे थे, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए। दिस वॉज अ इम्पॉसिबल लड़ाई। एंड मैं सिर्फ ये कह सकता हूं 528 लोग उस दिन मारे गए। मैं आपको जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं,

0: 528 लोग उस दिन वीरगति को प्राप्त हुए, 527 ऑफिशियल है, 528 वहां आपके सामने बैठा है। हम उसमें अपनी जान नहीं दे पाए, मुझे लगता है भगवान ने मेरे साथ क्रूरता करी कि मैं वो 528वां आदमी होना चाहिए था जिसे उन 527 का बराबर का हकदार मानना चाहिए।
1: शब्द नहीं है, निःशब्द हूँ। एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रही हूँ जो जिंदगी से भरपूर है, जिसकी बहुत इच्छा शक्ति है, जो बहुत जीवंत है, जो जीने की वजह बन सकता है, जो जीने की वजह बन रहा होगा लाखों लोगों को जिस वक्त सुन रहे होंगे। वो ये कहता है कि वो अपने प्राण नहीं दे पाया। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। शब्द नहीं है हमारे पास इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह की बातें सुनने के बाद। किस मिट्टी के बने हैं आप, ये जरूर बताएं। और इसका श्रेय मैं भारतीय सेनाओं को देना चाहूंगी कि एक बच्चा जो अपने घर से निकलकर, अपनी माँ की आंचल से निकलकर सीधा पहुंचता है ट्रेनिंग देने के बाद, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, देश को बचाने के लिए सोचता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, जिसके लिए मृत्यु जो है, आप मृत्यु शायद शब्द यहां पर ठीक भी नहीं, जिसके लिए देश के लिए बलिदान देना सर्वोपरि है। आई कुड सी कर्नल शैलेंद्र सिंह हैव वेट आइज। किस तरह का पल वो रहा होगा शायद शब्दों में उसको बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, आपकी नम आंखें इस बात का सबूत हैं, आपके एक एक लफ्ज इस बात को यहां साबित कर रहे हैं कि जब एक सोल्जर, एक सैनिक मैदान जंग में जाता है तो यही सोचकर जाता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं जा ही रहा हूं देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए। आप और उन तमाम, आप और 527 टोटल 528 वो सभी सोल्जर्स, उनको हमारी ओर से नमन। हम यही कहते हैं, अगर आप नहीं तो हम नहीं। एक और व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको मौका मिला, आपको ये मौका दिया गया, जो आपने अपना कार्यकाल जिया है, जो आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपने वो यूनिफॉर्म, वो पोशाक पहनी है, चौड़ा अपना सीना चौड़ा कर अपने मेडल्स लगाए हैं, अगर वो मौका दोबारा से मिले, क्या आप दोबारा से जीना चाहेंगे उन्हीं पलों को?
0: मैं पहले वाला मौका ही अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूँ।
1: अभी तक
0: वो यूनिफॉर्म मेरे ऊपर अभी भी है।
1: वाह।
0: वो मेरे दिमाग पर अभी भी है। और जब आप कहती हैं मेरी आंखें नम है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मुझे गर्व है उन नम आंखों पर कि उन 527 जानों के लिए अगर आज भी मैं एक बूंद अपनी आंखों से पानी बहा पाता हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। इट्स अ सेटिस्फेक्शन फॉर मी। और जहाँ तक बात है रीलिव, मैं आपको पता नहीं कैसे लग गया कि आई हैव टू रीलिव। मैं तो ऑलरेडी लिव कर रहा हूँ। मेरी यूनिफॉर्म ना उतरी है ना उतरेगी। एज फार एज आई एम कंसर्न, फौजी दिखाने के लिए आज मैंने आपके सामने टाई पहन ली होगी, लेकिन इस टाई के पीछे मेरी यूनिफॉर्म अभी भी बिल्कुल बरकरार है।
1: वाह, आपने आज निःशब्द कर दिया। आपके किरदार के, आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू, किसी आर्मी ऑफिसर के इतने सारे पहलुओं को जानने के बाद ये लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि किस मिट्टी के बने हैं, हम ये कहेंगे भारत की मिट्टी से बने हैं, कण कण भारत की मिट्टी से बने हैं, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने हमेशा देश के बारे में सोचा। और शायद आपने देश के बारे में सोचा, शायद आप देश के लिए अब तक सिर्फ देश के लिए जी रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जितने भी युवा हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनके लिए मिसाल हैं। क्या कहना चाहेंगे उन सबसे आप?
0: मैं एक ही बात कहूंगा, अगर जिंदगी जीनी है तो फौज की जी लो, अदरवाइज जी तो सभी रहे हैं। बट अगर जिंदगी जीनी है तो आपके पास एक ही जिंदगी है, और उसे मैं कहता हूं फौजी जिंदगी। अदरवाइज आप जी वैसे भी लेंगे, ऐसे भी लेंगे, बट अपने आप में मेरा इसमें अहंकार नहीं है। मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप फौजी जिंदगी नहीं जी पाए तो भी आपके पास मौका है, अपने देश के लिए जरूर जी लो। देश के लिए जी लिए तो आप ये समझ लेना कि आप फौजी की जिंदगी जी लिए।
1: बहुत खूब। यहाँ पर एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मैं दिल से चाहती हूँ पूछूं। एक वो पल जहाँ आप बहुत मेजर ऑपरेशन में हैं, जहाँ पे आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, जहाँ पे आपका नेतृत्व, पॉइंट टू पॉइंट डिसीजन लेने की ताकत, जिस वक्त निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात करें, जहाँ आपके बहुत सारे साथी

0: पल क्षण क्षण साथ छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है। मैं जानती हूं कि भारतीय सेनाएं आपको तैयार करती हैं, इस मौके के लिए भी तैयार करती हैं, पर व्यक्तिगत रूप से जिस तरह के जहीन व्यक्ति आप खुद हैं, आप जैसे व्यक्ति के लिए या उन सभी सैनिकों के लिए, उन सभी ऑफिसर्स के लिए उस वक्त डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है?
1: इम्पॉसिबल होता है कुछ डिसीजंस लेना, और आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं, आर्टिलरी में एक फायर होता है जिसको बोलते हैं फायर SOS, सेव आवर सॉल। दैट मींस जो OP ऑफिसर या इन्फेंट्री है वो अपने ऊपर फायर बुलाती है, और जब वो कह देता है कि टारगेट विक्टर ये, और जब मैं उसे गन एंड पर देखता हूं और मुझे दिखता है ये तो अपने ऊपर फायर बुला रहा है, सोचिए उस टारगेट के ऊपर जब 18 गन के 18 गोले आके क्या बचेगा। तो इसलिए हम उसमें फिर से पूछते हैं, दूसरी बार पूछते हैं, चेक फायर, सेफ्टी फायर, सारी चीजें ट्राई कर ली उस एक मिनट के अंदर, लेकिन फाइनली जब डिसीजन लेने की बात आई तो वो भोंपू को मैं पकड़ता हूं और मैं कह देता हूं फायर। और वो फायर बोलना लिटरली अमाउंट्स टू कि मुझे नहीं मालूम कि वो OP ऑफिसर और वो कंपनी कमांडर उस फायर में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, बट उस गन एरिया के अंदर मैं अधमरा हो जाता हूं कि यार ये फायर मैंने अपने लोगों के ऊपर किया है, अपने लोगों द्वारा मांगने पर। अब इसमें गलती थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, बट इसको बोलते हैं कि फॉर्च्यून्स एंड द गॉड ऑल्सो स्टैंड्स विद पीपल हु आर ब्रेव। ब्रेवरी के साथ भगवान हमेशा होता है। उस अकेले जिंदगी के एक SOS फायर में हमारा कोई नहीं मरा, पाकिस्तान के सारे मारे गए।
0: क्या बात है।
1: सो ये डिसीजन लेना आई थिंक टफेस्ट पार्ट होगा एक गनर के लिए, कि उसे मालूम है कि आप फायर कहां कर रहे हो, अपने ओन ट्रुप्स पर कर रहे हो, और उसके बावजूद आप वो फायर कर देते हो।
0: बहुत खूब। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग जो है हमें हमारी भारतीय सेनाएं देती हैं, और आप जैसे ऑफिसर्स को बनाती हैं, और आप अपनी कर्तव्य निष्ठा से, देश प्रेम से, और कहीं ना कहीं अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मैदान जंग में हमेशा फतह हासिल करवाते हैं। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे संदेश भी आए हैं, और हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से जय हिंद भेजा है इन्होंने। सौरभ बनेजा का हमारे पास गाजियाबाद से संदेश है, गुड आफ्टरनून। एक संदेश हमारे पास यहां पर आया है पंकज कामरावती महाराष्ट्र से, और ये बहुत ज्यादा खुश हैं आपकी बातें सुनने के बाद कि आपने भारतीय सेना के बारे में, और भारतीय सेना क्योंकि जब हम भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली लाइफ के बारे में आपने हमें रूबरू कराया, ये और भी प्यारी और सुखद बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। संदेश हमारे पास रोहित मेहर का आया है ओडिशा से, और इनको आपकी खुश मिजाजी बहुत ज्यादा पसंद आई, जिंदा दिली पसंद आई। थाईलैंड से हमारे पास संदेश आया है मिस्टर अमोल भवाने का। संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं, और हम यही चाहेंगे कि आप अपना प्यार यूं ही बरसाते रहें। एक संदेश और है, बहुत बड़ा संदेश है, पर यही कहना चाहूंगी कि इन्होंने पूरे सम्मान के साथ भारतीय सेना को सल्यूट किया है, वंदे मातरम कहा है, और ये हैं शंकर लोड द्वारका से। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल शरेंद्र सिंह आपका, आप स्टूडियो में आए, और सबसे बेहतरीन बात आपके व्यक्तित्व को पहचानने के बाद हम जीवन में कुछ भी क्यों ना करें अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन अपने अंदर के व्यक्ति को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि यही जिंदा दली हमें परचम लहराने पर प्रेरित करती है।
1: देश अकेला है, जिंदगी अकेली है, जी लीजिए इसे अपने देश के लिए। जय हिंद, नमस्कार
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमने साक्षात्कार किया, बात की कर्नल शैलेंद्र सिंह से, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और हम यही कहेंगे कि हम हमेशा आपके समक्ष, आप सभी ऑफिसर सैनिकों के समक्ष अपना शीश झुकाए खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, और हमेशा गर्व से कहेंगे कि हमारी भारतीय सेनाओं ने हमें हमेशा मुस्कुराने की, जीने की वजह दी है, और आपको शत शत प्रणाम, शत शत नमन।

संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। लीजिए, अब हम प्रसारित कर रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक है CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये टुकुडाण, कनकनगर, सिलफिली, चाचीडाण, करसी, बूढ़ा डाण, बरबसपुर, प्रेमनगर, सतकोना, मेंड्रा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, राजपुर और धमनी में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये इंदरपुर, नीलकंठपुर, शिवपुर, चिनिया, महावीरगंज, परसवार, दुप्पी, चौरा, इंद्रावतीपुर, धौली, सिमरवा, कामेश्वर नगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये करदोनी, कोरिमा, रामनगर, खैरबार, अस्कला, दोरना, जरहाडी, ढोढ़ा गांव, घासीडी, बोड़ाझरिया, कठबुड़ा, दातीढाप, कंडराजा, बैरडाण, नर्मदापुर, चोरकी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये कुंजारा, लोटा पानी, मयूर चूंदी, जामटोली, बिलासपुर, साजा पानी, सोनार पहरी, तीता पाकेर, बर्नी झरिया, खड़ा माचा, पीठा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 83 है। ये प्रेमनगर, पोटिया, आमापाली

0: इंचपारा, कुड़ेकेला, बोजिया, जमाबीरा, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा, करतला और पसर खेत में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये बैगामार, चचिया, कलमी टिकरा, बरपाली, धौरा भाटा, घोटमार, पतरा पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 39 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये छताल, दलदली, तालाझर, मुरुमडी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडापाला, जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: हमर हाथी हमर गोठ, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5:06 हुए हैं। हम हाजिर हैं आपके लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत लेकर, और लीजिए कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आया सावन झूम के फिल्म के उस गाने से जिसमें आवाज है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में योगेश का लिखा हुआ गीत। आर डी बर्मन ने धुन बनाई है, फिल्म का नाम है मंजिल।

और अब कार्यक्रम का अगला गीत थिरकते हुए आपके रेडियो सेट तक पहुंच रहा है, जिसमें आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। गीतकार आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। लीजिए कार्यक्रम की अगली पेशकश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल तो पागल है फिल्म का वो गाना जिसमें आवाजें उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों की हैं। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपकी नजर कर रहे हैं। फिल्म का नाम है गुरु, आवाजें श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की हैं। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत निर्देशन ए आर रहमान का है।

और कार्यक्रम के अंत में हम आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं मोहरा फिल्म का गाना। आवाजें उदित नारायण, अलका याग्निक की है, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत निर्देशन विजू शाह का है।

इसी गीत के बाद चितपट संगीत कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:35 होने वाले हैं। लीजिए, अब हम प्रसारित कर रहे हैं महिला श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा।

मोबाइल की दुनिया में बचपन कहीं खो ना जाए, खेल के मैदान की हंसी कहीं सो ना जाए। आओ बच्चों को फिर किताबों और प्रकृति से जोड़े, ताकि उनका हर सपना स्क्रीन में नहीं हकीकत में सवर जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सभी का आज की महिला सभा में, जिसमें आज मैं हूँ प्रज्ञा सिंह राणा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। बहनों, आप सभी बारिश का आनंद ले रहे होंगे। हाँ, बारिश की अतिवृष्टि से एक दो दिन जीवन अस्त व्यस्त जरूर हो गया था, पर गर्मी और उमस से राहत भी तो मिली। बच्चों के स्कूल में भी बरसात होने पर अलग अलग कार्यक्रम भी मनाए जाने लगे हैं। जानते हैं बहनों, मेरा बेटा भी बारिश देखकर इतना खुश हो रहा था, उसने तो बारिश में भीग भीग कर जमकर आनंद लिया। मैंने उसे कागज की नाव भी बनाकर दी थी, वो उन्हें कितनी सारी बनाकर बार बार बहा रहा था। इस पूरे समय में उसने एक बार भी मोबाइल या टीवी देखने के लिए नहीं बोला। तब मुझे लगा कि बच्चों को मोबाइल की लत नहीं होती है, वो बस अपना समय व्यतीत करने के लिए मोबाइल देखते हैं कि अब कब कुछ करने के लिए है नहीं तो मोबाइल या टीवी देख लेते हैं। अगर उसी समय उन्हें कुछ रचनात्मक चीज बनाने को या करने को दिया जाए तो वो खुशी से करने लगेंगे। बहनों, बचपन केवल जीवन का एक पड़ाव नहीं बल्कि भविष्य की नींव है। जिस बचपन में जिज्ञासा, कल्पना और सृजन जीवित रहता है, वही आगे चलकर एक सशक्त समाज और समर्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। लेकिन आज यह बचपन एक नई चुनौती के सामने खड़ा है, अत्यधिक स्क्रीन का बढ़ता प्रभाव। जी हाँ, मोबाइल, टैबलेट, टेलीविजन और डिजिटल उपकरण आधुनिक जीवन का हिस्सा है। शिक्षा, जानकारी और संवाद के लिए इनका महत्व बहुत ज्यादा है, परंतु जब स्क्रीन बच्चों के खेल, संवाद, प्रकृति, पुस्तकों और परिवार के साथ बिताए जाने वाला समय की जगह लेने लगे, तब यह चिंता का विषय बन जाता है। रचनात्मकता किसी किताब का अध्ययन नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। प्रश्न पूछना, नए समाधान खोजना, कल्पना करना, प्रयोग करना और असफल होकर फिर प्रयास करना, यही तो रचनात्मकता की पहचान है। और यह गुण स्क्रीन से नहीं, अनुभवों से विकसित होता है। माता पिता और परिवार की भूमिका यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे हमारे व्यवहार से ही तो सीखते हैं। यदि भोजन की मेज पर भी हमारा ध्यान मोबाइल पर रहेगा तो बच्चों से अलग व्यवहार की अपेक्षा करना तो मुश्किल है ही। इसलिए आवश्यक है कि परिवार प्रतिदिन कुछ समय स्क्रीन मुक्त समय के रूप में निर्धारित करे। जी हाँ, उस समय मोबाइल नहीं मुस्कान हो, स्क्रीन नहीं संवाद हो, अकेलापन नहीं परिवार का साथ हो। बच्चों के साथ कहानियां पढ़िए, चित्र बनाइए, पौधे लगाइए, संगीत सुनिए, कविता सुनाइए अपने पुराने जमाने की, विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग कीजिए। इन सरल गतिविधियों में ही रचनात्मकता छुपी हुई रहती है, जो कि बढ़ती है। विद्यालय भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब शिक्षा केवल परीक्षा तक सीमित ना रहकर कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, संगीत, नाटक और नवाचार से जुड़ती है, तब भी बच्चों का व्यक्तित्व बहुआयामी बनता है। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर शोधकर्ता, वैज्ञानिक, कलाकार

लेखक और संवेदनशील नागरिक बनते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि समाधान तकनीक का विरोध नहीं है, बल्कि उसका संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग है। डिजिटल साधन बच्चों के विकास में सहायक बने, उनके बचपन का विकल्प नहीं। बहनों, आज आवश्यकता केवल स्क्रीन का समय घटाने का नहीं है, बल्कि बच्चों के जीवन में अनुभवों का समय बढ़ाने का भी है। उन्हें पेड़ों की छांव में बैठने दीजिए, बारिश की बूंदों को महसूस करने दीजिए, किताबों की खुशबू से परिचित कराइए, मिट्टी से रिश्ता जोड़ने दीजिए, क्योंकि प्रकृति सबसे बड़ी पाठशाला है और अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक। आज जो बच्चा प्रश्न पूछता है, वही कल उत्तर खोजता है। आज जो बच्चा कल्पना करता है, वही कल नवाचार करता है। आज जो बच्चा रचनात्मकता को बढ़ाता है, वही कल राष्ट्र का भविष्य भी बनाता है। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां बच्चों के हाथों में केवल मोबाइल ही नहीं, पुस्तक भी हो, केवल स्क्रीन ही नहीं, रंगों की तुलिका भी हो, और केवल गेम ही नहीं, खुले हुए मैदान भी हो, और केवल आभासी दुनिया ही नहीं, जीवन के वास्तविक अनुभव भी हो। अंत में मैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के प्रेरक विचार कहना चाहूंगी कि सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। आइए हम अपने बच्चों की आंखों में ऐसे ही सपने जगाएं जो स्क्रीन के चमक से नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार, कल्पना और सृजन के प्रकाश से आलोकित हो, है ना बहनों। इसी के साथ आइए सुनते हैं हिचकी फिल्म का ये प्रेरणादायक गीत, जिसमें आवाजें हैं अरिजीत सिंह की, गीत लिखा है राजशेखर ने और संगीत से सजाया है जसलीन रॉयल ने।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडा गांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: हौसलों की उड़ान कभी थमती नहीं, मंजिलें खुद कदम चूमने आती हैं। आइए अब हमारे अगले क्रम उड़ान के साथ सपनों को नई ऊंचाइयों तक ले चले। आज उड़ान में हमारे साथ है सुश्री अमिता श्रीवास जी, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह हासिल की है। तो आइए उड़ान में सुनते हैं इनके जीत का सफर।
2: हौसलों की उड़ान कभी थमती नहीं, मुश्किलों से जो डर जाए वो कहानी बनती नहीं। जो हर शिखर को अपना लक्ष्य बना ले, उसकी पहचान कभी मिटती नहीं। बहनों, कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। आज हमारे बीच ऐसी ही एक प्रेरणादायक शख्सियत मौजूद है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों, चुनौतियों और जोखिमों का सामना करते हुए पर्वतों की ऊंचाइयों को अपना साथी बनाया। इन्होंने यह साबित किया कि यदि इरादे बुलंद हो तो दुनिया की कोई भी चोटी दूर नहीं होती। जी हाँ, आज हमारे साथ है अमिता श्रीवास जी, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह हासिल की है। अमिता जी, आज उड़ान के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: अमिता जी। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर फतह करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
3: थैंक यू।
2: ये जो आपने चढ़ाई शुरू करी थी, आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ था?
3: ये सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, जो सफलता है वो मुझे 2026 में मिला, लेकिन इस चढ़ाई के लिए और इस सफलता को पाने के लिए मैं पिछले 8 साल पहले से ही तैयारी कर रही थी। ये सन 2015-16 में मैंने सोचा और 2018 में मैंने इसके लिए कदम बढ़ाया। मैं अपने फिजिकली और मेंटली प्रिपरेशन शुरू से करती आ रही थी। मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था और कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट था कि मैं थोड़ा अलग काम करूं भीड़ से हटके। तो बस यही है कि मैं एक लाइन को लेकर बस चलती गई और फिर आज इस मुकाम पे हूं।
2: जी, इस सपने की प्रेरणा आपको कहां से मिली अमिता जी?
3: मैंने बहुत समय पहले अपने कॉलेज समय में एपीजे अब्दुल कलाम की बुक अगन की उड़ान पढ़ी थी। तो उस बुक में लिखा था कि कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, सपने हमेशा बड़ा देखने चाहिए। अगर कोई सपना या कोई चीज छोटा होता है तो वो है हमारे मस्तिष्क में रहता है, वो सिर्फ सोच की बात है, ना कि हमारा सपना छोटा या बड़ा होता है। तो अगर हम किसी भी चीज को ठान लेते हैं और उस चीज की आकृति हमारे दिमाग में अगर हम बना लेते हैं तो वो चीज हमें मिल ही जाती है।

0: मैंने वो पढ़ा था और इसी चीज को मैं प्रैक्टिकल करने की कोशिश करती रही, जिसके लिए मुझे इतने साल लग गए और कहीं ना कहीं जाके वो आज 2026 में मेरा सपना पूरा हुआ।
1: बहुत ही अच्छी बात है कि एक बुक से आपने प्रेरणा लेकर के सफर की शुरुआत की और उसके बाद फिर की जीत भी हासिल की। अमिता जी, आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली, किसी विशेष प्रकार की ट्रेनिंग लेनी पड़ी आपको?
0: जी, मैंने राजस्थान स्किल माउंट आबू से रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स किया था। उसके बाद मैंने सिक्किम इंस्टीट्यूट से अपना बेसिक और एडवांस का कोचिंग किया था, जिसमें हमें रॉक के साथ साथ ग्लेशियर में चढ़ाई और अगर एवलांच आ जाता है, तूफान और बहुत तेज हवाएं चलती है, तो उससे कैसे बचना है, वो सारी चीजें भी सिखाई जाती है। तो बिना ट्रेनिंग के अगर हम किसी भी माउंटेन को क्लाइम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम जानबूझ के अपने जान को जोखिम में डालने वाला हो सकता है। इसीलिए इस चीज का मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग के दौरान मैंने कुछ माउंटेन भी क्लाइम किए हैं और मैंने अच्छा से अपने ट्रेनिंग को कम्प्लीट किया, तब जाके मैं आगे बढ़ी हूँ।
1: जी, अभी आपने बताया कि अलग अलग तरह के माउंटेन पर भी आपने चढ़ाई की, तो किस किस जगह पर आपने अभी तक चढ़ाई की है?
0: जी, मैं बताना चाहूंगी कि मैं अपने ट्रेनिंग के दौरान वेस्ट सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम, लगभग 5,500 मीटर की ऊंचाई है, उसको मैंने क्लाइम किया है, और उसके साथ में यूटी कांगरी 6070 मीटर जो कि लद्दाख में है उसको क्लाइम किया है, और कांग्यात्से 2 को क्लाइम किया है। कांग्यात्से 1 के समय एवलांच आने की वजह से हम बैक हो गए थे। मेरा एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मैं माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, उसको मैंने क्लाइम करके अपना नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। और अभी लबूचे पीक एवरेस्ट से पहले जो मैंने लबूचे पीक 6110 उसको भी मैंने क्लाइम किया है।
1: अरे वाह, बहुत ही अच्छी, आपने इतनी उपलब्धि हासिल कर ली है अमिता जी, हमें सुन करके बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है।
0: थैंक यू।
1: शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को तैयार करने के लिए आपने कैसी तैयारी करी?
0: शारीरिक रूप से तैयारी करने के लिए मैंने 9 से 10 महीना पहले एक ट्रेनिंग लिया था, जिसके लिए मैं रोज सुबह 3:30 बजे तक उठ के रेडी हो जाती थी और 9:30 तक मेरा ट्रेनिंग चलता था। ये था मेरा फिजिकली वर्क। और लेकिन अगर मानसिक रूप से मैं बताऊं तो मैं 8 साल पहले से ही इसकी तैयारी कर रही थी, क्योंकि जिस मुकाम पे आज मैं हूँ उस मुकाम के बारे में मैंने 8 साल पहले से ही सोचना शुरू कर दिया था। सोचने के साथ में फिजिकली वर्कआउट जैसे आउटडोर होता है, तो वैसे ही माइंडली वर्कआउट इनडोर होता है, तो वो बहुत वैल्यूएबल है। बिना मानसिक तैयारी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, और फिर माउंट एवरेस्ट चढ़ना मतलब सीधा सीधा रूप में धैर्य की परीक्षा है, तो उसके लिए वो बहुत जरूरी होता है।
1: जी, इस अभियान के दौरान सबसे यादगार पल आपका कौन सा था?
0: यादगार पल तो मेरे लिए माउंटेन्स में तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर एक माउंटेन को अगर हम 3 बार चढ़ते हैं तो तीनों बार अलग अनुभव होते हैं। तो वैसे ही माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो हर एक माउंटेनियर का बिग ड्रीम होता है, जिसे मैंने आज पार किया है या फतह किया है, सबसे यादगार पल मेरा वही रहा है कि मैं जब नेपाल पहुंची थी, घर से अकेले ही निकली थी, तो बहुत सारे लोग मिले थे मुझे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं वैसे ही हमारा वॉकिंग का जो टाइम है वो बढ़ते जाता है। इस यादगार पल में सबसे ज्यादा याद मुझे घर की आई थी, वो इसलिए क्योंकि जब हम बेस कैंप जा रहे थे तो अपना वजन लेकर, अपना बैग लेकर जो रक्षक होता है उसको हम पीठ में लाद के लगभग 21 घंटे से चल रहे थे। वो मेरे लिए सबसे यादगार पल था, क्योंकि जब वो मैं 21 घंटा चली थी तब मुझे मेरी दीदियों की बहुत याद आ रही थी। मेरे पैर में दर्द होने शुरू हो गए थे, लेकिन माउंटेन्स पे ऐसा होता है कि हेल्प सभी करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हम चाह कर भी वहां पर ये नहीं बता सकते कि मेरे पैर में दर्द है या हमें थकान लग रही है, ऐसा करके सभी सपोर्ट करते हैं, अच्छे से हो जाता है। लेकिन मेरे लिए यादगार पल वही है कि मैं जो 21 घंटा चली थी लगातार।
1: जी, और एक महिला होने के नाते आपको किसी अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ा चढ़ाई के दौरान?
0: महिला होने के नाते अतिरिक्त चुनौतियां तो शायद अगर मैं पीरियड्स को बोलूं तो सिर्फ वही थे जो 2 बारी मुझे माउंटेन में जाने के बाद मुझे फेस करना पड़ा। और ऐसा होता है कि अगर हम अल्टीट्यूड में चले जाते हैं, डिग्रियां अगर उधर पे टेम्परेचर कम होता है, ठंडा ज्यादा होता है, तो उधर पे पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं डेट से पहले। ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। लेकिन माउंटेन्स के लिए तो सिर्फ हम माउंटेनियर है, पर्वतारोही एक पर्वतारोही ही होता है, माउंटेन्स के लिए वहां लड़की या लड़का नहीं होता है। हमें ट्रेनिंग में के दौरान भी यही सिखाया जाता है कि अगर आप पर्वतारोहण के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। फिर माउंटेन एक्सक्यूज नहीं देखता कि वो लड़की है तो ऐसा, लड़का है तो ऐसा, वहाँ नो रिजर्वेशन फॉर एनीवन।
1: जी सही कहा आपने, तो दिक्कतें किसी तरीके की आपको नहीं हुई फिर?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। हर एक पल मजेदार था, सभी पलों को मैंने बढ़िया से एंजॉय किया और खुशी खुशी आगे बढ़ते गई।
1: एवरेस्ट अभियान ने आपको जीवन और सोच में क्या बदलाव लाया है?
0: जीवन और सोच में बदलाव की कोशिश

0: जो मैं कर रही थी इतने दिनों से, वो माउंट एवरेस्ट फतह के बाद अब मैं बोल सकती हूँ कि किसी के लिए भी कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, बस उस काम को करने की ललक होनी चाहिए। जो काम हमें करना है उस काम को करने का मन हो और उसमें पूरा समर्पण अगर दिया जाए तो काम श्योर श्योर है कि वो होता ही है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। शिखर पर जब आप पहुंची माउंट एवरेस्ट के, तब आपने सबसे पहले किसे याद किया अमिता जी?
0: शिखर पर जैसे हम पहुंचे तो वैसे ही हमारे चारों तरफ सिर्फ बादल थे, बर्फ से पूरी वहाँ शांति थी। और सबसे पहले मैंने भगवान को शुक्रिया अदा किया जिसके लिए मैं इतने दिनों से मेहनत करते आ रही थी, फाइनली वो मुझे मिल गया था वहाँ जाकर, जिस चोटी पर मैं जाना चाह रही थी इतने दिनों के मेहनत के बाद। तो मैंने भगवान को शुक्रिया अदा किया और मेरे परिवार वालों को और मेरे करीबी दोस्तों को।
1: जी अमिता जी, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में हिमालय और एवरेस्ट को लेकर आपका क्या संदेश?
0: इसके लिए तो मैं बोलना चाहूंगी कि हिमालय पर्वत, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि ग्लेशियर अब पिघल रहे हैं या फिर जितने ऊंचाई तक बर्फ जमती थी वो थोड़े कम हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे गलतियों से ही हो रहे हैं, जो हम नया नया एक्सपेरिमेंट करने की वजह से नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसे हमें संरक्षित करने के लिए चाहिए कि हम जो भी काम करते हैं लेकिन हमारे काम के वजह से नेचर को नुकसान ना हो। इसके लिए अगर एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं कचरा की बात करूं कि हम माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे कचरा छोड़कर आ जाते हैं या ना चाहते हुए भी छूट जाता है, क्योंकि वहां तो हड्डियों को जमा देने वाली ठंडी होती है
1: जी।
0: और हवाएं तेज इतनी चलती है कि हम चाहकर भी सामान को नहीं ला सकते। तो कोशिश पूरी करनी चाहिए कि हमसे कोई गंदगी ना फैले और जितना हो सके नेचर को साफ रखें। प्रयास ही हमारा सफलता का पहला कदम होता है, इसीलिए प्रयास पूरा करना चाहिए कि गंदगी ना फैले।
1: जी तो जैसे हम देख भी रहे हैं आजकल माउंट एवरेस्ट में भी ट्रैफिक हो जा रहा है।
0: जी जी
1: तो ये सच है?
0: जी ये बिल्कुल सच है, क्योंकि 2026 में 10 दिन थोड़ा लेट हो गया था समिट पुश के लिए जब हम जा रहे थे, तो जिस दिन हम जा रहे थे उसी दिन 274 लोगों ने किया था समिट। ये क्योंकि एक ही लाइन रहता है जाने और आने का, वन में रास्ता रहता है जो रो फिक्सिंग होती है वो, तो सबको आगे बढ़ना होता है, तो बस इसीलिए ही थोड़ा ट्रैफिक हो गया था, जाने में थोड़ी स्पीड को थोड़ा कम करना पड़ रहा था, 10 दिन थोड़ा लेट होने की वजह से ही ट्रैफिक हो गया था।
1: जी परिवार और दोस्तों का इस यात्रा में कितना सहयोग रहा अमिता जी?
0: हाँ करीबी दोस्तों का भी अच्छा सपोर्ट रहा और परिवार का तो पूरा पूरा सपोर्ट रहा, लेकिन सपोर्ट से पहले उनको एक्चुअल में बताना था कि मैं किस चीज की तैयारी कर रही हूँ और किस लेवल की तैयारी करनी है। क्योंकि सिंपल किसी दूसरे काम के लिए सपोर्ट करना और जो काम मैंने किया है उसके लिए सपोर्ट करना, दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि मेरा खाने पीने और सोने का टाइम टेबल क्या था, तो मेरे साथ में मेरे परिवार वालों का भी टाइम टेबल बदल गया था। वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा सोचनीय विषय है कि तैयारी मैं कर रही हूँ लेकिन मेरे साथ में मेरी फैमिली भी इतनी सपोर्ट कर रही है कि मेरे सोने के टाइम पे उन लोग भी सो जाते थे, मेरे खाने के टाइम पे उन लोग भी खा लेते थे, ऐसा करके। तो परिवार का भी पूरा पूरा सहयोग रहा और करीबी दोस्तों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि सहयोग का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता है, फाइनेंशियल के अलावा भी सपोर्ट होता है। अगर सही समय में गाइडलाइन मिल जाता है या सामने से कोई कुछ दूसरा रास्ता दिखा देता है तो वो भी एक मदद ही है। तो जिससे जितना हो सके उतना हम चाहते हैं तो मदद करना चाहिए किसी का भी।
1: जी यानी किसी ने इस तरीके का सपना देखा है, अगर हम आर्थिक रूप से ना करें तो कम से कम मानसिक रूप से अगर हम सहयोग देंगे तो भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत सपोर्ट होता है, सही सलाह देना बहुत बड़ी बात होती है।
1: अगर आपको अपनी पूरी एवरेस्ट यात्रा को सिर्फ एक वाक्य में कहना हो तो वो वाक्य क्या होगा अमिता जी?
0: एक लाइन में बोलना हो तो जीवन बदल देने वाली जीत, लाइफ चेंजिंग विक्ट्री, बस यही बोलना चाहूंगी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अमिता जी उन लड़कियों और महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देंगी जो बड़े सपने देखती है लेकिन शुरुआत करने से थोड़ा डरती है?
0: जी शुरुआत करने से डरती है और कहीं ना कहीं अपने भविष्य के बारे में सोचती भी होंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं डर रही थी इतना, 2018 की बात है जब मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना था, तो लेकिन मैंने ठान लिया था कि मेरा जो भविष्य होगा वो मैं अपने मेहनत के कलम से लिखूंगी, वो मैंने सोच लिया था। कहीं ना कहीं आज मैं जिस जगह पे हूँ अपने शुरुआती मेहनत और रिस्क लेकर जो मैंने काम किया है उसके बाद आज मैं इस जगह पे हूँ। तो अगर डर लगता है तो आप उस डर का सामना कीजिए और उसको एक ऐसा मानकर चलिए कि हमारे अच्छी जिंदगी की शुरुआत का ये भी एक हिस्सा है, क्योंकि डर नहीं लगेगा तो शायद जीत का उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है।

0: तो उसको भी एक हिस्सा मानना चाहिए। डर को लगे चाहे घबराहट जैसा भी लगे या चुनौती संघर्ष डर ऐसे चीजों के बिना सफलता का फिर कोई महत्व नहीं है। सफलता की खुशी उसी में है जब हम संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अमिता जी, अभी हमारे बिलासपुर में इस तरीके की कोई ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर कोई शुरुआत करना चाहता है, कहीं चढ़ाई करना सीखना चाहता है
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: बिलासपुर में ऐसा कोई ट्रेनिंग है?
0: नहीं, अभी तो छत्तीसगढ़ में ऐसी ट्रेनिंग सेंटर जिसे पर्वतारोही बाहर आ सके, अच्छा से उभर के आ सके, अभी तक तो नहीं है। लेकिन बहुत जल्द एक पर्वतारोहण के क्षेत्र में गाइडलाइन देने के लिए इंस्टीट्यूट ओपन करने का चल रहा है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा लोग पर्वतारोहण के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। ये भी साहसिक खेल का एक हिस्सा है बाकी अन्य खेलों की तरह। तो जैसे भी ओपन होता है तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरवशाली रहेगा।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने अमिता जी। तो सुना बहनों आपने, सफलता की सबसे ऊंची चोटियां उन्हीं के कदम चूमती है जो हर गिरावट के बाद फिर उठ खड़े होने का साहस रखते हैं। आज की इस प्रेरणादायक बातचीत ने हमें सिखाया कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन दृढ़ संकल्प, अनुशासन और आत्मविश्वास हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमारी अतिथि अमिता श्रीवास का हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने अपने अनुभवों से हम सभी को नई ऊर्जा और नई सोच दी।
0: धन्यवाद।
1: इसी के साथ बहनों आज की उड़ान बस यहीं तक, फिर मिलेंगे उड़ान में एक और प्रेरक व्यक्तित्व और नई प्रेरणा के साथ। बहनों अभी हम सभी सुन रहे थे उड़ान में सुश्री अमिता श्रीवास जी को। आइए अब सुनते हैं फिल्म संजू का ये गीत, जिसकी फरमाइश करने वाली हमारी बहनें हैं प्रीति प्रांसी, दीपा मिश्रा, रुचि द्रिगस्कर, आलोकिता दुबे, पूर्णिमा पांडे, और इनकी फरमाइश पर सुनते हैं संजू का ये गीत, जिसमें आवाजें हैं सुखविंदर सिंह, श्रेया घोषाल, गीत लिखा है शेखर अस्तित्व ने।

बहनों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के महिला सभा से विदा लेने का, लेकिन उसके पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम की समीक्षा कर सकते हैं चिट्ठी मिली में। हमारी चिट्ठी मिली का पता है, कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी नूतन कॉलोनी सरकंडा बिलासपुर, पिन है 495006। आप यूट्यूब पर भी हमारा कार्यक्रम सुन सकते हैं, और अगर आप अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें ईमेल भी लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है mahilasabhabsp@gmail.com। जी हाँ बहनों, तो आप ढेर सारे मेल लिख करके भेजिए, और अपने पसंद के गीत सुनना है तो भी आप उस पते पर लिख करके भेज सकते हैं, जिसे हम महिला सभा में जरूर शामिल करेंगे। तो बहनों, अपने कार्यक्रम की समीक्षा जरूर करिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम और नया क्या कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में बहनों

मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने समीक्षा के साथ अपना नाम भी हम जरूर शामिल करेंगे। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है प्रज्ञा सिंह राणा ने। दीजिए इजाजत आज की महिला सभा से। नमस्कार।

अभी महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले हम आपको इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम सभा में संध्या 7:20 पर बेरा के गोट का विषय रहेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषक श्रोताओं के कार्यक्रम किसानवाणी में संध्या 7:30 पर आज के बाद का विषय रहेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किसानों के हित में। इसके अलावा भेंटवार्ता के अंतर्गत बरसात में कंदवा चरने एवं त्वचा संबंधी रोग एवं उनका निदान विषय पर चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे से जीतू भैया की बातचीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं। संसद समीक्षा आज रात 8 बजे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं का प्रिय कार्यक्रम चिट्ठी मिली हम प्रसारित करेंगे 8:15 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा 8:30 पर। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से रात 10 बजे रिले करेंगे।

श्रोताओं, यह थी इस सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा। और अब एक नज़र हमारे केंद्र से कल यानी शुक्रवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में सामयिक सुझाव का विषय रहेगा गेंदा फूल मां रोग नियंत्रण। 6:45 पर फ्लैगशिप कार्यक्रम नवविहान में चर्चा होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर। आज सुबह ये प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम सुनिएगा 7:05 पर गांधी चर्चा कार्यक्रम का समय रहेगा 7:20 पर यादों के झरोखे से। ये कार्यक्रम हम आपके रेडियो सेट तक पहुंचाएंगे 7:30 पर इनसे मिलिए। ये कार्यक्रम 8:30 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीतों के कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के में सुनिएगा राजा मोरद ध्वज के किस्सा। कलाकार रहेंगे ईश्वर गिरी गोस्वामी, गुलाब गिरी और साथी, एवं राज भजन सुनिएगा कमलेंद्र मरावी, सुखराम सिदार, त्रिभुवन सिंह, प्रीतम मरावी और साथियों से। आपकी पसंद कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 10:30 पर। 11:00 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT के प्रसारण का। श्रोताओं, विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे 11:30 पर।

और अब गौर कीजिए, कल संध्याकालीन प्रसारण में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर, कल शाम की सभा में 5:35 पर युवा जगत कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा, साहित्य से कैसे जुड़ें। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद का रचना संसार, और इसके अलावा युवा जगत में क्रम रहेगा समसामयिकी और सवाल जवाब। श्रोताओं, ग्राम सभा कार्यक्रम में कल संध्या 7:20 पर बेरा के गोठ में सुनिएगा, बेरा के गोठ। और इसके

0: अलावा फोनिन कार्यक्रम के अंतर्गत शरीर में होने वाले तिल और मसों का कैंसर में परिवर्तित होने वाले लक्षणों की पहचान और निदान के उपाय विषय पर चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे से श्रोताओं की बातचीत एवं शंका समाधान की रिकॉर्डिंग, जिसे हमारे श्रोता सुन सकते हैं। संसद समीक्षा कल रात 8 बजे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। रजनीगंधा कार्यक्रम पेश करेंगे कल रात 8:15 पर। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण रात 10 बजे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:10 होने को है। कुछ ही क्षण के बाद छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री की अगुवाई में बस्तर के 209 मनखे मन के प्रतिनिधिमंडल है आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ले मिलिन। प्रदेश के कतकोन जिला में सरलग वर्षा के सेती नदियां नरवा में आ गए है बाढ़। कई ठिन रद्दा में गाड़ी मन के अवई जवई बंद। सक्ती जिला के कलमा बैराज के 66 गेट खोले गीस। और छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर के बेचे ऊपर लगा दे गए है रोक। स्वास्थ्य मंत्री है पत्रकार वार्ता में करीन घोषणा। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अगुवाई में बस्तर के 209 मनखे मन के प्रतिनिधिमंडल है आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ले मिलिन, जिमा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के संगे संग बस्तर पंडुम के विजेता प्रतिभागी मांझी चालकी परंपरागत जनजातीय प्रतिनिधि और पद्मश्री ले सम्मानित विभूति मन के प्रतिनिधि मन शामिल होइन। ए मौका में राष्ट्रपति है प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मन ले गोट बात करत बस्तर के जनजातीय संस्कृति लोक कला पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था मांझी चाल की प्रणाली और बस्तर पंडुम के आयोजन के बारे में जान बलिन। ओमन कहिन कि बस्तर के संस्कृति विरासत भारत के अमूल्य धरोहर है और ओला संजो के रखना पूरा देश के दायित्व हवे। मुख्यमंत्री के बिन्ती ऊपर राष्ट्रपति है अवैया बेरा में बस्तर दशहरा और बस्तर पंडुम में शामिल होए के इच्छा जताइन। ए मौका में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह घलो आए रहिन। ए प्रतिनिधिमंडल मन हा राष्ट्रपति भवन लघुमिन। प्रदेश के कतकोन जिला में पाछू 2-3 दिन ले होवत सरलग वर्षा के सेती कतकोन नदियां नरवा में बाढ़ आगे है, जेखर सेती गाड़ी मन के अवई जवई प्रभावित हो है। नारायणपुर जिला में पाछू 48 घंटा ले होवत वर्षा के सेती लोगन मन परेशान है। अबुझमाड़ के संगे संग कतकोन जगह में घर मन में पानी भरे के स्थिति बन गए है। तो उन्हें कतकोन गांव के संपर्क जिला मुख्यालय ले कट गए है। स्थिति ल देखत जिला प्रशासन है संवेदनशील जगह में निगरानी बढ़ा दे है। लोगन मन ला पुल के ऊपर पानी चले की स्थिति में रद्दा पार नहीं करे के अपील करे है। ही बीच नारायणपुर के धौड़ाई थाना क्षेत्र के गांव चिकपाल में पानी के हुरहा बाढ़े ले 16 जिन गांव के लोगन मन फंस गए है। जिला रेस्क्यू करके निकालेगी। उन्हें दंतेवाड़ा जिला में सर्रक वर्षा के चलत भैरमगढ़ के पातरपारा में पुल के ऊपर ले पानी चलत है, जेखर सेती अवई जवई प्रभावित हो है। एती गरियाबंद जिला में 3 दिन होवत वर्षा के सेती जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए है। सिकासेर बांधा ले 60,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए है। एखर सेती राजिम के त्रिवेणी संगम स्थित बाबा कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में चारों कोती पानी भर गए है। तउहें पैरी नदियां में घलो बाढ़ आ गए है और एखर सेती राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 में पाछू 24 घंटा ले गाड़ी मन के अवई जवई प्रभावित हो है। जिला प्रशासन नदिया के तीर्थ खार में रहैया लोगन मन ला सतर्क रहे की मुनादी करा है। तो उन्हें उदंती नदिया ऊपर एक ठिन बनत पुल भारी वर्षा के सेती भरभरा के गिर गए। ये पुल छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच अवई जवई के जरूरी माध्यम बने रहीस। ओती बालोद जिला में घलो वर्षा के सेती कतकोन जगह में सड़क ऊपर पानी भर गए है। सिया देवी मंदिर के तीर नहर के पानी पुल के ऊपर बोहात है, जेखर सेती गाड़ी मन के अवई जवई बंद हो गए है। चीचा टाटेंगा घुमका क्षेत्र में जुझारा नरवा में बाढ़ आए है और एखर सेती गाड़ी मन के अवई जवई प्रभावित हो है। खेत मन में ज्यादा पानी भरे के लिए फसल मन के नुकसान होए के संभावना जताए गए है। कतकोन स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र मन में घलो पानी भर गए है। उन्हें दुर्ग जिला में शिवनाथ नदिया के पानी घलो सरलग बाढ़ा थे। चार टिन बांधा मोंगरा घुमरिया सूखा नाला और खाटू टोला ले पानी छोड़े जाए के सेती महमारा एनिकट के ऊपर ले 7 फीट 6 इंच पानी चला थे। जिला प्रशासन है नदिया के तीर बसे गांव मल्ला सतर्क रहे के निर्देश दे है। ओती

0: शक्ति जिला में भारी वर्षा ले महानदी उफान में हवे। एला देखत कलमा बैराज के चम्मो 66 गेट ला खोल दी गई है। जिला प्रशासन हा नदिया के तीर बसे गांव मल्ला सतर्क रहे की अपील करे है। उहें महानदी के सरलग बाढ़त पानी के सेती आरंग क्षेत्र के तटीय गांव निसदा मा बाढ़ के पानी घुस गए है। SDRF के टीम हा 42 जिन परिवार मल्ला सुरक्षित बाहर निकाल के राहत शिविर मा पहुंचा दे है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ो बांचे समाचार को दी। छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर के बेचे ऊपर रोक लगा दे गए है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा आज नवा रायपुर में एक ठिन पत्रकार वार्ता ला संबोधित करा तो मन एक घोषणा करीन के बारे में जल्दी आदेश जारी कर दे जाही। श्री जायसवाल हा कहिन कि खाद्य सुरक्षा मानक के उल्लंघन करैया ऊपर नियम के मुताबिक कार्रवाई करे जाही। जानब के मुताबिक एनालॉग पनीर एक प्रकार ले नकली या सिंथेटिक पनीर हरय जिला दूध के जगह में वनस्पति तेल और स्टार्च ले बनाए जाते। ये दिखे और स्वाद में असली पनीर जैसे लगते। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा आज रायपुर में पत्रकार मन ले गोट बात करत कहिन कि हाल के दिन में मलेरिया के कुछ मामला आगू आए के बाद स्वास्थ्य विभाग हा सरलग काम करत है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितानिन ANM और मैदानी अमला मन हा गांव गांव जाके जांच इलाज और जन जागरूकता जैसन काम करत है। स्वास्थ्य मंत्री हा बताइन कि सरलग निगरानी और लोगन मन के मदद के सेती बस्तर संभाग के मलेरिया पॉजिटिविटी दर 4.6% ले घट के 0.48% रह गए है। ओमन कहिन कि मलेरिया ले एको झन मनखे के मौत झन होवे यहू सरकार के लक्ष्य है। ओमन बताइन कि प्रदेश के जम्मो 10 मेडिकल कॉलेज मन में पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करे जाही। बिलासपुर शहर ला ट्रैफिक जाम के समस्या ले स्थायी राहत दिवाय बर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री और बिलासपुर के सांसद तोखन साहू हा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मिलके बिलासपुर पर प्रस्तावित 4-लेन रिंग रोड परियोजना के मंजूरी और एला बनाए में तेजी लाए के विनती करे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा अवैया इतवार के नशा मुक्त भारत और विकसित भारत 2047 के विजन ल साकार करे बर नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के शुरुआत करी। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवाल के जवाब देवत केंद्रीय युवा कार्यक्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया कहिन कि देश ला नशा मुक्त बनाए बर जम्मो आध्यात्मिक संगठन कॉलेज विश्वविद्यालय और मेरा भारत के युवा मन के एक ठिन मंच में आवत है। यह अभियान 100 हफ्ता तक चलैया राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान होही। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर नामांकन की आखिरी तारीख काली 31 जुलाई रखे गए है। ये पुरस्कार पर 5 से 18 साल के लड़का मन अर्जी कर सकते हैं। उन्हें राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार पर घलो 31 जुलाई तक अर्जी मंगाए गए है। ये पुरस्कार दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में बढ़िया काम करैया मनखे और संस्था मल्ला दे जाते। यदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत ऋणी और अऋणी किसान मन पर पंजीयन कराए के आखिरी तारीख काली तक हवाए तो उन्हें डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार पर किसान मल्ले 31 जुलाई तक अर्जी मंगाए गए है। प्रदेश में उद्योग और रोजगार ला बढ़ावा देबर राज्य सरकार हा 4 नवा औद्योगिक पार्क बनाए के फैसला ले है। मुख्य सचिव विकासशील की अगुवाई में हुए औद्योगिक विकास योजना के राज्य स्तरीय समिति के बैठक में ये प्रस्ताव ला मंजूरी देगी। औद्योगिक पार्क राजनांदगांव धमतरी जांजगीर चांपा और बस्तर जिला में बनाए जाही। अब थोरकुन समाचार सारमा। सावन महीना के वार्षिक कांवड़ यात्रा आज ले शुरू हो गई है। प्रदेश में अमरकंटक ले भोरमदेव मंदिर तक होवैया कांवड़ यात्रा पर पूरा तैयारी कर ले गए है। श्रद्धालु मन के सुविधा पर प्रशासन हा जम्मो व्यवस्था करे है और प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग हा बछर 2025-26 पर शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान, मुख्यमंत्री ट्रॉफी

0: औ डाइट मनी पर 5 अगस्त तक अर्जी मंगा है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। मुख्यमंत्री की अगुवाई में बस्तर के 209 मनखे मन के प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ले मिलिन। प्रदेश के कतकोन जिला में सरलग वर्षा के सेती नदियां नरवा में आ गए है बाढ़। कई ठिन रद्दा में गाड़ी मन की अवई जवई बंद। शक्ति जिला के कलमा बैराज के 66 गेट खोलेगी। और छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर के बेचे ऊपर लगा दे गए है रोक। स्वास्थ्य मंत्री है पत्रकार वार्ता में करीन घोषणा। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र का प्रसारण है FM बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है ईमेल फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम। ईमेल करें

0: छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर के बेचे ऊपर लगा दे गए है रोक। स्वास्थ्य मंत्री है पत्रकार वार्ता में करें घोषणा। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र का प्रसारण है FM बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है ईमेल फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं उन श्रोताओं के नाम से जिन्होंने पहले गीत के लिए हमें ईमेल भेजे हैं। आप सभी हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाणकर, सरिता प्रिंस और एकांश गंवाणकर, सेक्टर 67 मोहाली से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि, शीतल राजेश, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मे शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इब्जाल ताज, कोटवा नारायणपुर बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा अमित और हैप्पी राय, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला और विशाल नावकर, सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, चंदन गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार, कुंभारगली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत दले, रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले, कर्माचौक लोहारीडी कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी खुशांत निशांत साहू, रोहांसी से मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक और जानकी साहू, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु, सागर बालूजा, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और यवतमाल से हैं राहुल मरवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी मनवर। आप सभी सुनना चाहते हैं मासूम फिल्म का गीत। अभिजीत और श्रेया साधना सरगम की आवाज़ है इस गीत में। गीत और संगीत आनंद राज आनंद का है। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइशें आप सभी ने ईमेल के जरिए भेजी हैं। दिल्ली से बोधराज खोलवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुतासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, और कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख। दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य और मेघा मस्कीन। नागरकोहरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई। भागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्विनी, अमरदीप, पशुपति साह, टिको, मुस्कान। दतरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, सनी, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार काले और वसुधा वज्रसेन। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरब खुराना, एसके पप्पी। सहारनपुर से है आशु मोची। कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, परीन अब्बासी और दानिश गुनौरी। रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा, विविधा वंडलकर। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर। आप सभी सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूर ने इसे लिखा है और SD बर्मन ने धुन बनाई है। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर अभिमान फिल्म का ये गीत।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: आपकी रक्षा में पूरी।
2: वर्णिकखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, गांव फ्रांसी हिस्सार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहांलाज, तलअत फरहत, रिफात, नुजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के नंदा हनुमान और उत्तम जमदाड़े, भुजो कैचिया पंटिंडा से, पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वारिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, दमन अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी, वीरमगान राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, पूजा परिहार, रायगढ़ बिहार से उमाराज, पवन, संजय, दीपक और कमल उमा, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, सरगुजा मेनपाट से अजीत पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा, पाहंदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, निशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन, खमेरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, नेपानगर से सुदर्शन साह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, दत्रेंगी, भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा। आप सभी की फरमाइश पर आप तक पहुंचा रहे हैं मेरी जंग फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज है, आनंद बख्शी ने लिखा है गीत को और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई है। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद पर ये गीत।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: आपकी रक्षा में पूरी।
2: धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम। तोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता प्रियंका, प्रथम प्रशांत वामिका और वाणी थांदी। और हमारे श्रोता है नानघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिष्का तन्मय गजभिये। कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम वर्मा। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा और ऋषभ सिंह। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना भगत और चेतन भगत। शादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। दिल्ली से अस्मा परवी नामना और वलीभाई अंसारी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी और अवान अब्बासी। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजाल, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज चाहत। बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धरमदास वाधवानी। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्री। सावंतपुर से ऋषिसेन, रितेश, कंचन, माहीसेन। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया। मुंबई से अदीबानाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी। जालंधर से संदीप जटोलिया। आप सभी ने सुनना चाहा है यहूदी फिल्म का गीत। मुकेश की आवाज में ये गीत है। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

और इसी गीत के बाद ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। और अब आइए सुनते हैं ये संदेश। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम अपने श्रोताओं को दे दें, प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को स्टूडियो में शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा बरसात में कंदवा चरने और त्वचा संबंधी रोग और उनका निदान। और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा शरीर में होने वाले तिल और मसों का कैंसर में परिवर्तित होने वाले लक्षणों की पहचान और निदान के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2666592 और 3100026। फोन लगाने के पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 30 जुलाई 2026 और 31 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। और यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर संध्या के 6:45

0: टीवी पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:45 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर के 200 से अधिक व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में नदी नाले उफान पर, तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। गरियाबंद जिले में अमली गांव के पास उदंती नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद के समाधान को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित। और छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर के 200 से अधिक व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

0: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल उपस्थित थे। इस प्रतिनिधिमंडल में बस्तर पंडुम के विजेता प्रतिभागी, मांझी, चालकी, परंपरागत जनजाति प्रतिनिधि, पद्मश्री से सम्मानित विभूतियां और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने इन प्रतिनिधियों के सम्मान में विशेष भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से संवाद करते हुए बस्तर की जनजाति संस्कृति, लोककला, पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, मांझी चालकी प्रणाली तथा बस्तर पंडुम के आयोजन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत भारत की अमूल्य धरोहर है और उसका संरक्षण पूरे देश का दायित्व है। मुख्यमंत्री के आग्रह पर राष्ट्रपति ने भविष्य में बस्तर दशहरा और बस्तर पंडुम में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन का भ्रमण भी किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले दो तीन दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ सहित कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इस बीच नारायणपुर के धौड़ाई थाना क्षेत्र के ग्राम चिकपाल में जलस्तर के अचानक बढ़ जाने से 16 ग्रामीण फंस गए थे, जिनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं कोंडागांव जिले में कोंडागांव जोंधरा पदर नारायणपुर मार्ग पर नारंगी नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। प्रशासन द्वारा नदी के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर मार्ग को बंद कराया गया है। कांकेर जिले में भी बारिश की वजह से हालात चिंताजनक हैं। कांकेर सरोना मार्ग पर पटौद में मुख्य सड़क पर पानी भर गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं तेज आंधी के बाद बांदे पखांजूर मुख्य मार्ग पर कई पेड़ों के गिर जाने से भी आवागमन बाधित हुआ है। दंतेवाड़ा जिले में लगातार बारिश के चलते भैरमगढ़ के पात्रपारा में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। गरियाबंद जिले में तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सिकासेर जलाशय से 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण राजिम के त्रिवेणी संगम स्थित प्रसिद्ध बाबा कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में चारों ओर पानी भर गया है। वहीं पैरी नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 पर पिछले 24 घंटों से वाहनों की आवाजाही बाधित है। जिला प्रशासन ने नदी के तटीय क्षेत्र और निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। वहीं उदंती क्षेत्र के अमली गांव में छत्तीसगढ़ ओडिशा को जोड़ने वाला निर्माणाधीन पुल भारी बारिश और तेज बहाव के चलते भरभराकर गिर गया। इधर बालोद जिले में भी बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भर गया है। सिया देवी मंदिर के पास नहर का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसके चलते वहां पर आवागमन बंद कर दिया गया है। चीचा टाटेंगा घूमका क्षेत्र में जुझारा नाला उफान पर है, जिसके कारण यातायात प्रभावित हुआ है। खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान की आशंका है। कई स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी पानी भरने की खबर है। वहीं दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। चार जलाशय मोंगरा, घुमरिया, सूखा नाला और खाटू टोला से पानी छोड़े जाने के कारण महमराय निकट के ऊपर से 7 फीट 6 इंच पानी बह रहा था। जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने को कहा है। सक्ती जिले में भारी बारिश से महानदी उफान पर है। वहीं कैचमेंट एरिया से भी पानी की आवक जारी है। इसे देखते हुए कलमा बैराज के सभी 66 गेट खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों में चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण आरंग क्षेत्र के तटीय गांव निस्ता में बाढ़ का पानी घुस गया है। एसडीआरएफ की टीम ने 42 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालकर राहत शिविरों में पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 2 अगस्त को नशा मुक्त भारत और विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।

0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद के समाधान को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी तथा जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री पाटिल ने कहा कि निरंतर संवाद, पारदर्शिता और तकनीकी सहयोग के माध्यम से महानदी जल विवाद का ऐसा सर्वसम्मत समाधान निकलेगा जो दोनों राज्यों के हितों की रक्षा करने के साथ साथ जल संसाधन के न्यायसंगत और सतत उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सिंचाई, पेयजल और हीराकुंड परियोजना को लेकर ओडिशा की चिंताओं को समझती है, साथ ही छत्तीसगढ़ के किसानों, आदिवासी समुदायों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों और भविष्य के विकास की आवश्यकताओं पर भी समान रूप से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बैठक को इस विवाद के समाधान की दिशा में एक नई शुरुआत बताया। छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज नवा रायपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एनालॉग पनीर की बिक्री पर बैन की घोषणा की। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि एनालॉग पनीर एक प्रकार से नकली या सिंथेटिक पनीर है, जिसे दूध के बजाय वनस्पति तेल और स्टार्च से बनाया जाता है। ये दिखने और स्वाद में असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन ये पोषक तत्वों से रहित होता है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के दिनों में प्रदेश में मलेरिया के कुछ मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितानिन, एएनएम और मैदानी अमला गांव-गांव जाकर जांच, उपचार, सर्वेक्षण और जन जागरूकता गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मलेरिया से एक भी मृत्यु न हो, यही सरकार का लक्ष्य है।
1: मलेरिया की बात होती है तो इसके लिए लगातार हमारी जो लोगों की ब्लड का टेस्ट है, वहाँ फोगिंग्स है, लोगों के अवेयरनेस करने का काम है, वो 14वां चरण चल रहा है, 13 पूर्ण हो चुका है और जल्द ही हम लोग मलेरिया पर विजय प्राप्त करेंगे। अभी 3 बच्चों की मलेरिया से मृत्यु भी हुई है। मैं ये कहकर अपना पीठ नहीं थपथपा सकता कि कम मौतें हुई हैं। मौत अगर एक भी होता है तो हमारी जवाबदारी है, हमारा प्रयास है कि मृत्यु का आंकड़ा जो है जीरो रहे और उस दिशा में काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम तिथि कल 31 जुलाई है। इस पुरस्कार के लिए 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार के लिए भी 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये पुरस्कार दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को दिया जाता है। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए भी किसानों से कल 31 जुलाई तक आवेदन मंगाए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए पंजीयन कराने की अंतिम तिथि भी कल 31 जुलाई है। प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान, मुख्यमंत्री ट्रॉफी, नगद राशि, प्रेरणा निधि और डाइट मनी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र खिलाड़ी, प्रशिक्षक और निर्णायक 5 अगस्त तक निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप sportswy.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दुर्ग जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टे में प्रयुक्त 1242 म्यूल बैंक खातों की पहचान कर 117 खाताधारक और 5 म्यूल एजेंट को गिरफ्तार कर लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि होल्ड की गई है। और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में पुलिस की टीम ने 4 शातिर और खूंखार डकैतों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अब तक 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने इन डकैतों को पकड़ने के लिए 1000 सीसीटीवी और एआई ट्रैकिंग की मदद ली थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर के 200 से अधिक व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में नदी नाले उफान पर, तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। गरियाबंद जिले में अमलीगांव के पास उदंती नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद के समाधान को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित। और छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है।

0: करता है। नमस्कार।
1: मीडियम व्यू पर आकर
2: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजने को है और हम हाजिर हैं आपके लिए ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का शेष भाग लेकर। और पहले गीत की फरमाइश इस भाग की आप सभी ने की है ईमेल के जरिए। सावंतपुर से ऋषि सेन, रितेश कंचन, माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया, मुंबई से अदीबा नज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, जालंधर से संदीप जटोलिया और देगलूर नांदेड़ से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गम्हाणकर, टुक टुक प्रिंस, एकांश, सुमित गम्हाणकर, ध्वनि गम्हाणकर, जालंधर से मीना कौर, मन्नत कौर, यवतमाल पंजाब से रामटेके, यशोधरा, श्राव्या रामटेके, भाटापारा से बजकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोआराम वर्मा, सूरज बारीकर, नारायण यदु और भुवन कामरी, ओवरैठीपारा भाटापारा से अनिता साहू, वीणा, नेहा और मोनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, धुरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन और युवराज साहू, नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा और धनेश्वरी वर्मा, रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा श्याम कुंवर, गंडई टिकरी पारा से है जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन, कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना, हसन, नाजिया, इब्राहिम और सनावत से मोहम्मद सादिक, मुस्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमस खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गुण, मोहम्मद शादाब खत्री, लूत्रा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श और आतिका और लोहगण, ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल और रविराज, रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सभी ने फरमाइश किया है हिना फिल्म का गीत सुनवाने का। लता मंगेशकर की आवाज है इसमें, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: मजबूरी, बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: आपकी रक्षा में पूरी।
2: बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया, नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, लूतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, तिवर्ता डबरी पारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मोहन सिंह, सहोदरीबाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, समर्थ और सार्थक नामदेव, सौर्य नामदेव, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामचरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र से एन नाजिया नासिर, नासिर शेख, साजिद साहिद और लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला इंदु, पार्वती हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित गर्वी, हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, बुलढाणा वड़सिंडी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, बठेना से परमेश्वर साहू, राजबत्ती टोप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश रेशमा साहू, नाईवाला हनुमान, बुड़सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु, और गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद, सगुप्ता अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। आप सभी ने सुनना चाहा है कार्यक्रम में प्यार का मौसम फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत है, गीतकार है मजरूह, संगीतकार आर डी बर्मन। लीजिए सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

भेजे हैं। ग्राम ढेका से हमारे श्रोता हैं दुखी राम यादव, बुध राम यादव और कुमार यादव। हमारे ये श्रोता हैं कुम्भार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा प्रथमेश चंदन पांडुरंग कुम्भार, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, साइना शर्मा और मैंडी शर्मा, नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और कौर मनु, जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा, धनौरी तेलीवारा से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, माया कुमार, निम्नाबाद जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र और रौनक सेन, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वाशु, डॉली और पूर्वेश साहू, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक परी खर्चे, स्वाति और प्रयाग चौधरी, बागबहरा बदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा और कौशल सेन, फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु, लड्डी, सालिनी, तिवांशी, रवानी और आरबी खेरा, पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे, खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैंकरा, धुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैंकरा। आप सभी को आपकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का नाम है ये, मोहम्मद रफी की आवाज है। इस गीत में हसरत जयपुरी ने लिखा है इसे और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है। लीजिए सुनिए

भाटा पारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली कबीर जाटव, धर्मशंकर देवशंकर जमादार, भूत कछा लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक प्रीतम और धनराज मरकाम, रजौनी महोबा बुंदेलखंड से उदय भानपाल, जय हिंद दीक्षा प्रतीक्षा प्रिमिलेश पाल, दिव्यांश बघेल, अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद गौरव मंदुरकर, आरव और अर्पिता, पैठण से सुरेश

अनिता आरती, पूजा प्रसाद सोनल और सिया जाधव, पोरी भाटा अकलतरा से दीप चंदन, चोआराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा प्रांजल चंदन, जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भारत मक्कड़, कमल साहनी, मुरादाबाद दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, उत्तर प्रदेश दुल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी मोहनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आसु नारंग और सोनाली नारंग, बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुर कीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, पुरानी भिलाई तीन चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून जैशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राकेश कुमार, गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल योगेश, दीपा और पूजा खटक, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्टो, लोरमी चचड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। और आप सभी ने सुनना चाहा है अपनी फरमाइश पर ताज महल फिल्म का गीत। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत है। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है। आइए सुनते हैं ये गीत ताजमहल फिल्म से।

0: और इसी गीत के बाद ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का ये शेष भाग पूरा होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में,

0: भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप।
1: यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7:20 होने वाले हैं और अब आइए चलते हैं ग्रामीण श्रोताओं के मन पसंद कार्यक्रम ग्राम सभा में।

जय जोहार संगवारी हो। ग्राम सभा कार्यक्रम सुनिया जम्मू संगवारी मल्ला राम सनी भैया के राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमर खेती किसानी के बूता हर बहुत कठिन बूता है। हम खेती किसानी के बूता ला चेत लगा के करथन, जी जान लगा के करथन। ऐसे न हो कि बो दे गहूँ

मल्ला राम सनी भैया के राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमार खेती किसानी के बूता हर बहुत कठिन बूता है। हम खेती किसानी के बूता ला चेत लगा के करथन, जी जान लगा के करथन। ऐसे न है कि बो दे गहूँ आउ चल दे कहूँ, जांगर टोर बूता करे ला परथे। खेती किसानी के बूता में शरीर हर भज जाते, तभी तो कहे गए लईकोरी के लईका झंधरबे और नंगरिया के नांगर। संगवारी हो, खेती हमार जिंदगी आए और मेहनत हमार कर्म, लेकिन कभू कभू मौसम के मिजाज हर हमार मेहनत में पूरा पानी फेर देते। वही कहे गए कि पाके गहूँ में करा गिरे, कभू कभू सूखा या बाढ़ के कारण बुआई नहीं कर पावन, तो कभू कभू हमार पाके फसल में करा गिर जाते। आंधी तूफान के कारण फसल बर्बाद हो जाते। संगवारी हो, कभू कभू ऐसे समस्या आते कि हमार फसल मन बर्बाद हो जाते। कभू पानी की कमी के कारण फसल बर्बाद होते, तो कभू पनिया दुकाल पर जाते। कभू कभू हमार फसल मन जब खेत खलिहान कोठार बियारा में आके तैयार होते, तहाँ हमार लापरवाही के कारण या चूकवश खरही में आगे लग जाते। और कैसे लापरवाही, तो संगवारी हो, बीड़ी या सिगरेट पी के ठूठी बीड़ी में लग खरही में फेंक देतन, तो ठूठी बीड़ी में के आगी मन नहीं बुझाए रहे और भर भर भर भर खरही या फसल मन में आगी लग जाते। और देखते ही देखते हमार फसल मन स्वाहा हो जाते, चौपट हो जाते। कभू कभू रोग राई या किरवा मन फसल ला चौपट कर देते। तो ये सब समस्या देख के हमार सरकार हमार किसान भाई मन पर फसल बीमा योजना लागू करे हवाए। और फसल बीमा योजना में का हवाए, ओकर बारे में चर्चा करबो। ओकर पहले आवाज सुनत हन ये संदेश आला।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: आपकी रक्षा में।
2: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
5: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
7: सर 2 लाख क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे

0: मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
0: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मेरी मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
0: आपकी रक्षा में पूरी।
2: संगवारी हो, संदेशा सुने, पहली हम बात करते रहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। संगवारी हो, फसल बीमा योजना किसान भाई बहनी मन की मेहनत की कमाई मन ला प्राकृतिक सुरक्षा देने वाला एक मजबूत सुरक्षा कवच आए, जिन हर सुरक्षा सुखा अकाल पुण्य दुकाल पर आए, बाढ़ के कारण हमारे फसल बर्बाद हुए, चाहे रोग राई या किरुआ मन के कारण हमारे फसल बर्बाद हुए, कोई भी प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे फसल की बर्बादी ला बचाए बर किसान मन ला संबल प्रदान करते। फसल बीमा योजना की असली उद्देश्य हमर किसान भाई बहनी मन के नुकसान वाले फसल के क्षतिपूर्ति प्रदान करना हवे। जिन किसान भाई बहनी मन अपन फसल के बीमा करवाए रहते, उकर फसल के कोई भी कारण के लिए नुकसान के होय में बीमा कंपनी के द्वारा क्षतिपूर्ति दिए जाते, ताकि हमर किसान भाई बहनी मन के नुकसान की भरपाई करे जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान भाई बहनी मन की खेती के जोखिम ला कम करके आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते। संगवारी हो, किसान भाई बहनी मन के मन में सवाल उठत होही कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा करवाए में अबड़ेच पैसा लगत होही, अबड़ेच खर्चा आवत होही। त संगवारी हो, सरकार हर ये योजना में बीमा बहुत सस्ता में करते और ज्यादा खर्चा नहीं होवे। त अब आप सब सोचत हो कि ये योजना में हम कैसे जुड़ीन। तो संगवारी हो, प्रक्रिया बहुत ही आसान हवे। अगर आप मन बैंक ले किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम ले, जिले केसीसी कार्ड बोलथन, तो केसीसी के माध्यम ले अगर कर्जा ले ही हो तो बैंक वाले मन खुद बीमा करे के बाद में आप मन लग कर्जा ला देते, उकर पाछू ही आप लग कर्जा मिलते। कर्जा देख पहली बैंक वाले मन बीमा कर लेते। तो जिन किसान भाई बहनी मन केसीसी के माध्यम से लोन ले हवाओ, वो मन ला बीमा करवाए की जरूरत अलग से नहीं पड़े। और अगर बैंक ले कोनो प्रकार के खेती किसानी जुड़े कर्जा नहीं ले हो तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बीमा ला खुद करवाए ला पड़ते। खुद बीमा करवाए बर कुछ जरूरी कागजात हवे, जैसे कि पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, जमीन के कागजात, जमीन के विवरण जैसे कि पर्ची, खसरा, बीवन, ये प्रकार के जरूरी कागजात लगते, और बैंक पासबुक, ताकि क्लेम के पैसा हर सीधा आपके बैंक खाते में आ सके, बीच में कोई भी दलाल की जरूरत नहीं पड़े। संगवारी हो, बुआई के प्रमाण पत्र घलो की जरूरत पड़ते, जिन पटवारी या ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापित करे जाते। संगवारी हो, खेती किसानी में जोखिम जरूर हवाए, लेकिन समझदारी ले काम करे में जोखिम लग कम करे जा सकत हवाए। तो आज ही अपन फसल के बीमा करवाओ और बिना चिंता के बेफिक्र होके खेती किसानी करो और चलाओ आगू बढ़िए अपन मयारू कार्यक्रम किसानवाड़ी में।

संगवारी हो हम पहुंच गए अपन मयारू कार्यक्रम किसानवाणी में। किसानवाणी कार्यक्रम सुनिए जम्मो संगवारी बन के स्वागत है। राम सनी भैया के छोको राम राम जय जोहार। संगवारी हो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत लघु और सीमांत किसान भाई बहनी मन अपन खेती किसानी ले उपजे अनाज साग भाजी दार दलहन ये मन के भंडारण करे बर वातानुकूलित गोदाम बना के देते। संगवारी हो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना हर किसान मन के हित में आवे त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के लाभ लेव। और अब आगू बढ़थन हमार कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम के हेलो किसानवाणी जिकर विषय हवे बरसात के समय में केंदवा चर देते और इकर संगे संग में त्वचा संबंधी रोग एवं के निदान। और ये विषय में हमार बीच में विशेषज्ञ हवे डॉक्टर अजय पांडे चर्म रोग विशेषज्ञ शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर। अब ये कार्यक्रम के संचालन करता हुआ जित्तू भैया हर। तो आवाज सुनथन फोन इन कार्यक्रम।

0: भाई, आज आप जाना था गुरुवार के दिन है और हमन आप मन पर आज सुघर विषय के संग हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम लेके आथन। तो आज के बढ़िया विषय है, समसामयिक विषय है, बरसात मा बड़ चर्चा रही थे। बरसात मा मनखे मन ऊपर केंदुआ चरे और त्वचा रोग संबंधी रोग उखर निदान। आज हमर बीच ए विषय ऊपर सुघर जानकारी दिए बर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स के पूर्व चिकित्सक और चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे जी मन उपस्थित हावे। इखर सो आप मन ए विषय ऊपर चर्चा कर सकत था। सबले पहले इखर हम अपन पहुना के स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपके हमर कार्यक्रम में स्वागत है। अपन ला राम राम, जय जोहार।
1: जय जोहार।
0: तो जैन भी आपमन के आज विषय ऊपर सवाल, समस्या, जिज्ञासा हो ही आप मन रख सका था, पूछ सका था। तो हम आज के विषय ऊपर आगे बढ़ाते हैं। सबले पहले आप मन ला राम राम।
1: राम राम जीतू जी।
0: आज के विषय है कि बरसात में ही ये केंदुआ के समस्या होते, तो ये जन समस्या होते ये काबर होते, बरसात में एकर मुख्य कारण का है?
1: पैर की उंगलियों के बीच में बरसात के मौसम में होने वाला फंगल इन्फेक्शन को हम आम बोलचाल की भाषा में केंदुआ कहते हैं। तो ये क्या है? ये है फंगल इन्फेक्शन। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि चमड़ी ज्यादा देर तक पानी में रहने के कारण गीली और सफेद पड़ जाती है, जिसे हमारी भाषा में मेसरेटेड या मेसरेशन कहा जाता है। तो मेसरेट हो जाती है
0: जी।
1: जिसके कारण लगातार नमी बने रहने के कारण ये मैसरेशन होता है और जिसके फलस्वरूप वहाँ पे फंगस आकर ग्रो करने लगता है। ये गीली, देर तक गीली चमड़ी फंगस के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं ग्रो करने के लिए, और फिर फंगस तो आकर ग्रो करता है और फिर खुजली के माध्यम से अपने लक्षण बताता है।
0: डॉक्टर साहब, कई बार कहा होते कि जिन केंदुआ समस्या होते वो ज्यादा बढ़ जाते और एकदम फटे कस दिखते, तो इखर उपचार का है, एमा का करना चाहिए?
1: उपचार पे जाने के पहले मैं चाहूंगा कि हम इसे बचाव कैसे कर सकते हैं, इसको हम संक्षेप में जान लें।
0: जी।
1: देखिए, केंदुआ होता है अक्सर पैर की चौथी और पांचवी उंगली के बीच में। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर देर तक नमी बनी रहती है।
0: डॉक्टर साहब, हमारे कालर जुड़ गए हैं, ले लेते हैं, फिर गोठियाबो आप मन सर चर्चा लागू बढ़ाबो। हेलो।
2: हेलो,
0: आपके स्वागत है हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम में। कहाँ ले बोला था?
2: भैया मोर माया भरे, राम राम।
0: राम राम।
2: मैं नवागढ़ कटाई ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था। भैया
0: वर्मा जी, आपके स्वागत है। बतावा का समस्या है?

0: भैया दे के आज बढ़िया दे सावन लगे हे और मौसम घलो बढ़िया निक लागत है आपके आकाशवाणी के कार्यक्रम ले। देखा भैया दे खेती किसानी काम बढ़िया भदरा है और रोपा लगाए धान निंदाई काम बूता बने चलत है भैया। का हाथ पाव है जिन हमारे पानी में दिन भर डूबे रही थे भैया और का भैया गोड़ में एक ठन केंदुआ की शिकायत आते हाथ में भी केंदुआ होते ये का चीज होते तो यही जम्मो बात के निदान बर आप फोन लगाए हैं डॉक्टर भैया
1: लेवा बतावत है आप सुनिए ठीक है।
2: ये जो केंदुआ है इसके ट्रीटमेंट पे जाने के पहले हम थोड़ा बचाव पे बात करेंगे। देखिए ये केंदुआ मुख्यतः पैर की उंगलियों चौथी और पांचवी उंगली के बीच में होता है। क्यों होता है यदि आप ये कारण अच्छे से जान ले तो आप स्वयं बचाव कर लेंगे। क्यों होता है यदि वहां पे नमी या पानी लगातार जमा रहे तो वहां की चमड़ी ये सफेद और नमी युक्त हो जाती है पानी पी के सूज जाती है। लगातार कहीं नमी का चमड़ी पे बने रहना अनुकूल वातावरण प्रदान करता है फंगस के लिए और यदि नमी लगातार बनी रही या पानी वहां पे पड़ा रहा जैसे बरसात के मौसम में खेतों में अक्सर काम करते समय हमारा पैर गीला रहता है तो उंगलियों के बीच में नमी देर तक बनी रहती है जिसके कारण वहां पे फंगस अपने आप स्वतः वहां का इन्फेक्शन हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ता है। इसका पता कैसे चलता है उंगलियों के बीच यदि आप देखेंगे तो वहां की चमड़ी आपको सफेद और नमी युक्त नजर आएगी। वहां पे आपको शुरुआत में खुजली होगी यदि आपने ज्यादा खुजली कर दी या शुरुआत में ध्यान नहीं दिया तो चमड़ी में दरारें आ जाएंगे और वहां से फिर कीटाणु अंदर घुस जाएंगे जो वहां पे उस जगह को पकाने लगेंगे जिससे आपको वहां पे दर्द होने लगेगा और सूजन आने लगेगी। तो हमें क्या करना है हमें अपना काम खत्म करने के बाद पैर की उंगलियों के बीच की जगह को सुखा लेना है पतले कपड़े से पोंछकर सुखा लेना है। यदि आप बार बार गीले होते हैं तो ये काम आप बार बार कीजिए क्योंकि यदि पैर की उंगलियों के बीच में नमी बनी रही तो वहां पे स्वतः फंगल का इन्फेक्शन होगा।
1: डॉक्टर साहब हमारे कालर जुड़ गए हैं ले लेथन फिर गुठियाबो आप। हेलो
3: हेलो
1: हेलो किसान वाड़ी फोन इन कार्यक्रम में आपके स्वागत है। बताओ कहाँ ले बोला था का नाम है आपके।
3: हाँ मैं बिलासपुर से प्रतिभा गौरव बोल रही हूँ। हाँ मेरे को पूछना था कि आजकल बरसात के दिन में एक पैर में खुजली उजली क्यों हो जाता है।
1: ओकरे ऊपर चर्चा चला थे केंदुआ के बारे में जानकारी दे थे डॉक्टर साहब और आपके कुछ समस्या
3: है। वही है पैर में खुजली हो जाता है पैर में केंदुआ हो जाता है।
1: ठीक है आपके सवाल के जवाब डॉक्टर साहब बतावा थे चेत लगा सुनिया।
2: पैर की उंगली के बीच में लगातार नमी बने रहने के कारण वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे हम केंदुआ कहते हैं। इससे बचने का उपाय है आप उंगलियों के बीच की जो जगह है जो स्किन है चमड़ी है उसको सूखा रखें। बार बार गीली हो जाती है बरसात में तो बार बार उसे सूखा कर दें। बात नंबर दो यदि आप जूता मोजा पहनकर ऑफिस जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप एक सेट मोजा अपने बैग में रखें। यदि ऑफिस जाते समय आपका जूता मोजा गीला हो जाता है तो ऑफिस में जाकर जूते को निकाल दें और मोजा को बदल लें। जो आपके जूते हों यदि वो कैनवास के हों या जालीदार हों तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि यदि आप प्लास्टिक के या रबर के जूते पहनते हैं तो उसमें पसीना ज्यादा आता है और वो पसीना उंगलियों के बीच में जमा होकर केंदुओं के होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है।
1: कुल मिला के हवा के आवागमन होना चाहिए।
2: यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में तो आपको हल्की सी खुजली होगी और यदि आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो उंगलियों के बीच की चमड़ी फटेगी और फटने के बाद कीटाणु भी अंदर चले जाएंगे जिससे वहां पे दर्द होने लगेगा और फिर सूजन आने लगेगी। यदि कई बार ये भी देखा जाता है कि इसे हम मेडिकल भाषा में इडरप्शन कहते हैं कि केंदुआ होने के बाद आसपास की चमड़ी में पानी के फफोले आने लगते हैं इसे हम इडरप्शन कहते हैं। ये भी केंदुआ के आगे बढ़ने का लक्षण है इस पे भी ध्यान दें। जो शुगर के मरीज होते हैं वो बहुत रिस्क पे होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होती है। अब देखिए आम लोगों को ये पता है कि शुगर के मरीज को लगभग हर चीज ज्यादा खतरनाक होती है लेकिन सिर्फ शुगर के मरीज को नहीं ऐसा हर वो व्यक्ति हर वो पेशेंट जिसको कोई क्रॉनिक इलनेस हो जैसे कोई डायलिसिस पे है जिसको क्रॉनिक किडनी डिसीज है या कोई भी बड़ी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है तो वो बीमारी उसके इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं कमजोर कर दी रहती है। तो यदि आपको कोई भी क्रॉनिक बीमारी हो फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज या क्रॉनिक किडनी डिसीज या आप डायलिसिस पे हो तो आपके शरीर में छोटा छोटा इन्फेक्शन बड़ा रूप ले सकता है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। ऐसे किसान भाई जिनको शुगर की बीमारी है वो बरसात में केंदुआ न होने दें और किसी भी प्रकार स्किन इन्फेक्शन होने से बचें। और यदि आपको छोटा मोटा भी कोई स्किन का प्रॉब्लम होता है तो आप बिना विलंब की योग्य चिकित्सक से मिले।
1: जी का कुछ ऐसा विटामिन या कुछ है जिला हमन खा के केंदुआ से बांच

0: सकत हन।
1: देखिए एक कहावत है, आउट ऑफ द साइड आउट ऑफ द माइंड, मीन्स नजरों से दूर दिमाग से दूर। तो होता क्या है कि पैर की जो उंगलियां हैं वो हमारी नजर में नहीं रहती, अक्सर चप्पल से ढकी रहती है, या मुझे ये ऑफिस वर्कर्स हैं तो मुझे और जूते से ढकी रहती हैं, तो हमारा ध्यान उस पे कम जाता है, इसलिए हम उसकी साफ सफाई पे भी या उसके रख रखाव पे भी बहुत कम ध्यान देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, उंगलियों के बीच में भी बीच बीच में आपको ध्यान देना है कि किसी प्रकार की सफेदी, किसी प्रकार की क्रस्टिंग, बल्कि सूखी चमड़ी की परत या अत्यधिक नमी वाली चमड़ी न बन रही हो, और हमें बीच बीच में उसे सुखाना चाहिए। अब बात ये है, अक्सर केंदुए के जब बात आती है तो मुझसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हमें केंदुए में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अक्सर जो लोग शहरों से दूर होते हैं, जिन डॉक्टर तक अप्रोच थोड़ा मुश्किल होती है, वो अपने मन से कुछ कुछ इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं,
0: अपन मन
1: तो
0: के
1: क्या ना करें। आप उसमें स्टेरॉयड वाली क्रीम बिल्कुल ना लगाएं। क्या करें, यदि आप चाहते हैं कुछ लगाना तो क्लोट्रिमेजोल नाम की दवाई आती है, बहुत आसानी से छोटी जगहों पे मिल जाती है, क्लोट्रिमेजोल ये क्रीम आती है, इसको आप लगाएं, या फिर क्लोट्रिमेजोल का पाउडर आता है वो आप रात को या फिर ऑफिस जाते समय जूता पहनने के पहले इसको छिड़क लें उंगलियों के बीच में। एक चीज का ध्यान रखें, क्रीम लगाने के पहले या पाउडर छिड़कने के पहले आप उस त्वचा को सुखा लें। ठीक है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं जो आंशिक रूप से फायदा देते हैं यदि सही ढंग से यूज किया जाए तो, जैसे जैसे हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी का इस्तेमाल फायदा करता है, लेकिन हल्दी के साथ तेल मिलाकर ये और चिपचिपा बनाता है। तो हल्दी आप लगा सकते हैं, कुछ भी करने के पहले बीच की चमड़ी को आप पोंछ के सुखा लीजिए, उसके बाद करना है। तो आप हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन कई लोगों से मैंने सुना कि हल्दी को तेल में मिला के लगाते हैं, वो गलत है। आप हल्दी छिड़क सकते हैं, वो ठीक है, यदि कुछ ना मिले तो। ये इलाज नहीं, ये टेम्परेरी देसी नुस्खा कह सकते हैं इसको। दूसरा, नीम के पानी से यदि आप पैरों को धोते हैं वो भी ठीक है। नमक में पानी मिलाकर
0: कालर जुड़ गए, फिर हम आगू चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब हेलो।
2: हेलो, भगत राम पटेल बोला था भैया, मैं सिंगार बाड़ी घुटकुले।
0: राम राम भैया।
2: भैया मल्ला राम राम, और आज कार्यक्रम में डॉक्टर साहब जी मल्ला राम राम जाते।
0: बतावा का प्रश्न है आपके?
2: प्रश्न से बढ़ के भैया, हमन के जब आपके पास फोन लगते ना तो हमला ओ खुशी होते कि हमारे जिन प्रश्न के जवाब ही बिल्कुल आकाशवाणी जिन है देवर तत्पर है के।
0: बहुत बढ़िया।
2: तो आज हमन जानना चाहते हैं भैया कि जिन हमारे पैर में बरसात के मौसम में जिन केंदुआ होते ओकर कौन कौन से वजह हो सकत है, और हमला ओका बचाए खातिर का अपनाना चाहिए, और जो केंदुआ है कहीं मान लो जाए ज्यादा ऊंच नीच होते तो का ओहर कोई बड़े रूप ले सकते का, एक बारे में जानना चाहते रहे।
0: डॉक्टर साहब आपके समस्या सुन लिए हैं, अब बतावा थे।
1: पैर की उंगलियों के बीच में नमी को या फिर गीला होने से बचे। यदि गीला होते हैं, बार बार हो जाते हैं बरसात के मौसम में, तो बार बार उसको साफ कपड़े से पोंछ के सुखा लें, ये उसे बचने का तरीका है। और यदि हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो शुरुआत में खुजली, बाद में लालिमा, सूजन, फफोले ये तक हो सकता है। और कभी कभी हमें यदि केंदुआ आगे बढ़ता है, फंगस के साथ बैक्टीरिया भी रहता है, तो कभी कभी हमें जांघों के बीच में गठान और बुखार भी देखने को मिलता है। कई बार केंदुआ उंगलियों के बीच के जगह से निकल के नाखूनों के नीचे जाके नाखूनों का इन्फेक्शन या तलवे में जाके तलवे में भी इन्फेक्शन करा सकता है। तो केंदुए का ध्यान नहीं रखा तो ये आपके नाखून को या आपके पैर के तलवे को, ये पैर में सूजन ला सकता है, जांघों में गठान बना सकता है, बुखार ला सकता है। इसलिए सही समय पे इलाज जरूरी है और ध्यान देना जरूरी।
2: तो डॉक्टर साहब ये कोई विशेष स्थान में जाए से होते या कहीं पर भी हो सकते हैं?
1: पैर को बार बार गीला जब होता है तब ये होता है, तो बार बार गीला होने से बचें। यदि गीला होता है काम के कारण, तो जैसे आपका काम खत्म होता है पैर को साफ पानी से धो के साफ कपड़े से पोंछ के सुखा लें।
0: कुल मिला के डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जब बरसात के मौसम में भैया ज्यादा दिखते तो गीला होते पैर तो ला पोंछना है, कुल मिला के सूखा रखना, कुछ पाउडर लगा ली। चला भैया बढ़िया, आप मन के सवाल रहे से आगे बढ़बो।
1: तो हम थे कि वो घरेलू नुस्खे जो फायदा करते हैं, तो हमने जैसे बताया कि सुखा लेने के बाद आपको हल्दी लगा लेना है, आप पैर को नीम के पानी से आप धो सकते हैं, वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तीसरा, यदि पैर में सूजन हो तो आप नमक पानी में, हल्का सा गर्म पानी में नमक डाल के उसमें यदि पैर को रखेंगे तो उसे सूजन में कमी आती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि केंदुए में दरारें ना हो, कि चमड़ी फटी हुई ना हो। यदि चमड़ी फटी हुई रहेगी तो फिर वो आपको इरिटेट करेगा, दर्द करेगा, जलन करेगा। तो यदि आपकी चमड़ी फटी हुई नहीं है, पैरों में हल्की सी सूजन है, तो हल्का गर्म पानी में नमक डाल के यदि पैर को रखते हैं तो पैरों की सूजन में कमी आएगी।
0: अभी जब घरेलू नुस्खा की बात आपने बताया है, कई झील देखता हूँ मैं कि पोंगरी में जिन मेहंदी।

0: होते ओला कई जीवों में लगा लेते हैं, मतलब का है वो सही है कि गलत है ला बतावा।
1: जैसे मैंने बताया कि हल्दी तो सही है, नीम का पानी से धोना भी सही है, कुछ हद तक नमक पानी में पैर को रखना भी सही है, लेकिन मेहंदी से किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता, तो मेहंदी लगाना आप अवॉइड करें। नारियल तेल भी लगाना अवॉइड करें क्योंकि वो कहीं ना कहीं नमी को बढ़ाता है। हाँ, ट्री ऑयल ये कुछ हद तक फायदा करता है।
0: अच्छा, कुल मिला के हमर मुख्य ये होना चाहिए उद्देश्य कि वो जगह सूखा रहा है ना, नारियल तेल भी गीला करते और अगर हल्दी में तेल लगाथन वो गीला करते,
1: और विनेगर जिसको सिरका भी कहते हैं डाइल्यूटेड है ना, ये ध्यान देने वाली बात है डाइल्यूटेड, इससे भी यदि आप उस जगह की सफाई करते हैं तो वो भी ठीक है, बस शर्ते केंदु वाली जगह कटी हुई ना हो, यदि कटी हुई रहेगी तो वो आपको जलन पैदा करेगी।
0: का फंगल संक्रमण जिन्हें एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सका थे?
1: बिल्कुल फैलता है ये, ऐसी कोई भी चीज जो जीवाणु या कीटाणु से होती है वो संक्रामक होती है, वो एक से दूसरे को हो सकती है, बस माध्यम चाहिए। जैसे आपका किसी को, जिस किसी व्यक्ति को के पैर में केंदुआ या दूसरा फंगल इन्फेक्शन है, उसका जूता या मोजा किसी ने इस्तेमाल किया या उसके यूज किए हुए टॉवल किसी ने इस्तेमाल किए, तो ये बीमारी उससे दूसरे को भी हो सकती है। तो घर में किसी को भी ऐसा चमड़ी का इन्फेक्शन हो, एलर्जी नहीं इन्फेक्शन हो, तो उनका टॉवल हैंकी साबुन अलग रखें और अलग ही इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा।
0: कई पर देखे जाते कई जी अब वो फंगल है कि काय हम नहीं समझी, लेकिन कई लेकन मन के शरीर में लाल चकता उभरते, खासकर बरसात के मौसम में देखे जाते और समय के साथ वो आधा घंटा एक घंटा में गायब हो जाते, इसका क्या कारण है?
1: जिसे आप लाल चकत्ता कह रहे हैं उसे ददोरा, चकत्ता, पित्ती, पित्त या अटिक्रिया कहा जाता है। ये सूजी हुई चमड़ी रहती है जो कुछ घंटे से कुछ मिनटों के लिए कहीं पर भी आती है और फिर चली जाती है। ये ऐसा एलर्जी के कारण होता है, जैसा मैंने पहले बताया इसे अटिक्रिया कहते हैं, खून में IgE नाम के केमिकल के बढ़ने से होती है। और बरसात में ये ज्यादातर देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि बरसात में नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े आते हैं जिनका छूना हमारे लिए एंटीजन और एलर्जी की तरह काम करता है। तो एंटीजन और एलर्जी जो चीजें हैं, बल्कि ऐसा प्रोटीन जिसको शरीर अपना ना मानता हो वो एंटीजन कहलाता है। तो अनजान प्रोटीन जब शरीर को छूता है तो बॉडी एक उसको अपना दुश्मन समझ के एलर्जिक रिस्पांस देती है। तो ये एलर्जिक रिस्पांस देती है चमड़ी को सुजा के लाल करके। तो इससे बचाव क्या है? इससे बचाव ये कि आप फुल स्लीव्स का कपड़ा पहने और घर में ज्यादा से ज्यादा मच्छरदानी का प्रयोग करें। बरसात के मौसम में आपने कीड़े इसकी बात की है, तो बरसात में अक्सर हम एक और चीज देखते हैं, बहुत ही कॉमन देखते हैं, जिसे हमारी भाषा में IBR कहा जाता है, इंसेक्ट बाइट इन्फेक्शन या पिडर्स डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है कि मरीज हमारे पास आता है और कहता है कि यहाँ पे जलन का काफी तेज दर्द हो रहा है और देखने से चमड़ी लाल और बीच में जली हुई लगती है, तो वो भी कीड़े के छूने से होता है। कीड़ा छूता है तो उसके पैर के केमिकल से स्किन बर्न हो जाती है, जिसे पेडर्स डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये अक्सर हॉस्टल में रहने वाले लोगों को, गाँव में जहाँ पे जंगल झाड़ ज्यादा हो वहां पे बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। ये गंभीर समस्या तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप यदि जल्दी इसका ट्रीटमेंट ले लेंगे तो कोई परमानेंट निशान नहीं पड़ता।
0: जिसे आज के हमारे मुख्य विषय है केंदुआ चरे की समस्या, अक्सर हर इंसान में जिन आखिरी जिन उखर पैर के पोर होते हैं वहां देखे जाते हैं उंगली के, तो डॉक्टर साहब ये पूछबो कि का कोनो विशेष पाउडर या दवाई है लगाए बर जिला सुखा के ओला लगा सके?
1: हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और बहुत अच्छी बात भी बताई है कि दवा का इस्तेमाल उंगलियों के बीच की जगह को सुखाकर प्रयोग करना है। तो प्राथमिक तौर पे जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो वो है क्लोट्रिमेजोल या मेकोनाजोल। क्लोट्रिमेजोल ये दवा का मॉलिक्यूल नाम है जो बहुत सारे ब्रांड नेम से बाजार में आसानी से मिल जाती है। इसका पाउडर और क्रीम दोनों ही आते हैं, तो ये क्रीम या पाउडर आप उंगली के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में जब आप मोजा पहन रहे हो तो पाउडर इस्तेमाल करना बेहतर होगा, रात में आप सो रहे हैं तो क्रीम का इस्तेमाल करना बेहतर होगा।
0: और अभी बरसात के मौसम में त्वचा हमर स्वस्थ रहे उखर वर आप हमर श्रोता मनला का सलाह देना चाहता?
1: बरसात के मौसम में बार बार गीले होने से बचें या देर तक गीले रहने से बचें। यदि आप बार बार गीले होंगे या देर तक गीले रहेंगे तो गीली चमड़ी, देर तक गीली जो चमड़ी रहती है वो फंगस के लिए अनुकूल एनवायरनमेंट देती है, जिससे फंगल का संक्रमण होना आसान हो जाता है। तो आप

0: बार बार या देर तक गीला होने से बचे।
1: जी कालर जुड़ गए हैं, ले लेथन फिर चर्चा लागो बढ़ाबो। हेलो
2: हेलो,
1: आपके स्वागत है कार्यक्रम में, बतावा कहाँ ले बोला था?
2: जीतू भैया, राम राम का।
1: राम राम, स्वागत है आपके। राम राम भैया,
2: कतिया पारा जूना बिलासपुर ले सुशील देवांगन बिलासपुर बोला था भैया। राम राम।
1: देवांगन जी, का हाल चाल है?
2: बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। सावन के महीना के शुरू दिन है, आप मनला पूरा आकाशवाणी परिवार ला आपका बधाई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आप मनला हमारे पूरा परिवार का तिले बधाई। बतावा कुछ समस्या है त्वचा संबंधित?
2: हाँ, वो का है जांग में ना, दोनों जांग में चकत्ता चकत्ता हो जाते।
1: अच्छा,
2: और कुछ कहीं दवाई लगावे तो मिटा जाते।
1: अच्छा, लेवा डॉक्टर साहब सुन लिए प्रश्न आपके, बतावा थे।
0: नमस्कार देवांगन जी, ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ये इसका सही उत्तर तो डॉक्टर के पास जाकर लेना ही सही रहेगा, क्योंकि हम आकाशवाणी पे खाने की दवाइयां नहीं बता सकते, नहीं तो उसका मिसयूज हो जाएगा। हाँ, लगाने की दवाइयां जरूर बता देते हैं। ल्यूलिकोनाजोल नाम की क्रीम होती है या क्लोट्रिमेजोल नाम का पाउडर होता है, इसका आप जैसे दिन के समय में पाउडर लगाइए और रात के समय में ल्यूलिकोनाजोल नाम की क्रीम लगाइए तो बेहतर होगा।
2: जी
1: ठीक है देवांगन जी,
2: धन्यवाद जीतू भैया, आप मल्ला मोर फोन शामिल करे पर दादा जीतू भैया।
1: आप मन फोन लगाया है, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
2: जय जोहार भैया, जय जोहार।
1: आखिर में केंदुआ के उपचार की बात करबो डॉक्टर साहब।
0: यदि हम केंदुआ के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट कम से कम 2 हफ्ते तक लेना ही चाहिए
1: जी।
0: और ठीक हो जाने के बाद उसके बाद के 2 हफ्ते तक हमको लगाने वाली चीजें को कंटिन्यू करना चाहिए। ये गलती नहीं करेंगे कि आराम मिला और हम तुरंत ही दवाई को बंद कर दी।
1: जी चला, बहुत सुघर आपन आज के विषय बरसात में केंदुआ चरे और त्वचा रोग संबंधित रोग के जिन समस्या है ओखर निदान के बारे में बताया है। कालर मंजूरी अपन अपन समस्या ल रखिन। सही में बरसात में केंदुआ के जिन समस्या है देखे मिलते आज के विषय रही से। आज आप हमन से जुड़ा, आज हमारे बीच रहने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स के पूर्व चिकित्सक और चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे जी मन, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार। किसान भाई हो, अगला हफ्ता फिर जुड़बो नवा विषय नवा विशेषज्ञ मन सो। तब तक देवा जीतू भाई ला कार्यक्रम से विदा। राम राम।
3: संगवारी हो, अभी हम सुनें फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, जिकर विषय से बरसात के समय में केंदुआ चर देते तिकर निदान आओ एक संगे संग में त्वचा रोग संबंधी रोग और ओकर निदान कैसे करबो, ये विषय में हमारे बीच में विशेषज्ञ रीन है डॉक्टर अजय पांडे, चर्म रोग विशेषज्ञ बिलासपुर। और ये कार्यक्रम के संचालन करत रीन हवा हमर जीतू भैया। तो संगवारी हो, आज की हम बात करबो मौसम के बारे में। तो आज के अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड, आज के न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मंडी के बात करबो तो तखरपुर मंडी में संगवारी होकर बाद आओ सुनत हन संदेश वाला।
4: अरे सुन तो।
5: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
4: किसको?
5: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
4: अच्छा ये बात है?
5: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
4: अब तो झट से बात हो जाती है।
5: ऐसा क्या?
4: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
5: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
4: हाँ,
5: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
6: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
7: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं। क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: किसान भाई

0: आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: संगवारी हो, अब हम बात करबो मंडी मौसम के बारे में। तो मंडी में आज गहूं के तखतपुर मंडी में गहूं के भाव हरी से 2300 रुपया और जयरामनगर मंडी में सरना धान के भाव हरी से 2000 रुपया। संगवारी हो, कृषि परामर्श की बात करबो तो जिन संगवारी मन के थरहा तैयार हो गए है वो मन रोपाई करो, जिन संगवारी मन के बियासी के लायक हो गए धान है तो खेत की बियासी करके लेंझा फोरो और अभी बरसात के मौसम में अपन पशु मन ला बचा के रखो। अब आओ सुनत हने एक सुघर सन गीत जेला स्वर दिए है कविता हिरकनेवन।

संगवारी हो ये भाव भरी गीतल स्वर दियर हवाए कविता हिरकने अब इकर संगे संग मा महुलत कार्यक्रम ले जावन देवाओ। आज के कार्यक्रम ले विदा लेख बिरा हुआ थे तो अपन भाई राम सनील देवो विदा। राम राम जय जोहार। किसान वाणी कार्यक्रम की प्रायोजक रिसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: अभी किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर रात के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद संसद समीक्षा हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं।

आईटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जनगण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएमके सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएमके सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएमके सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहाँ शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है। ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान है। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी

कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृह मंत्री सदन में आए और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहाँ नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपए बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिक बराय, कणाद पुरकायस्थ, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग लिपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एल के सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं।
कांग्रेस

अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20 लाख बच्चे इसमें बैठे 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं। ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी? उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है? उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए अन्यथा यही जेंजी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

संसद समीक्षा अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:15 होने को हैं और अब लीजिए सुनिए श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम चिट्ठी मिली।

0: चिट्ठी मिली कार्यक्रम में शामिल हमारे सभी श्रोताओं को सुप्रिया
1: और नेमीचंद का
0: नमस्कार। नेमीचंद जी, बारिश के मौसम ने आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाला है
1: जी।
0: और आपका गला बता रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही हो ही जाती है इस मौसम में, कि कहीं सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो ये सब भी है। लेकिन फिर भी आज सावन की शुरुआत है और बारिश ने जैसी रिमझिम हो रही है और चारों तरफ हरियाली की चादर पैर पसार रही है, उसे देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है
1: जी। सुप्रिया जी, बारिश के मौसम में बारिश का लुत्फ उठाने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य की तरफ भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
0: सही बात। और पत्र तो भेजना ही है, कार्यक्रम सुनना ही है, तो आज भी बहुत सारे पत्र आए। जैसी बारिश होती है वैसी रिमझिम पत्रों की बरसात है
1: जी।
0: तो चलिए कार्यक्रम का पहला पत्र लेते हैं
1: जी। ये पहला ईमेल हमें मिला है लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी ने 23 जुलाई के ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम, इनको लाजवाब और बेहतरीन गीत सुनने को मिले, इसलिए रत्ना जी को इन्होंने बधाई प्रेषित की है।
0: क्या बात है, पत्र के लिए इनका धन्यवाद देते हैं नेमीचंद जी।
1: जी।
0: और ये अगला पत्र हमारे पास आया है कतियापारा जूना बिलासपुर से
1: जी।
0: लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन। इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रमों की समीक्षा लिख भेजी है। 23 तारीख को इन्हें सुबह की सभा में माटी का स्वर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, आपकी पसंद भी अच्छा लगा। अंतरा जी को बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे पत्रों को शामिल किया। चिट्ठी मिली कार्यक्रम 23 तारीख का इन्होंने सुना, सुप्रिया जी और सुनील चिपड़े को बहुत सारी बधाइयां दे रहे हैं। 27 तारीख को सुबह 10 बजे तुहर गोट हमर गीत के लिए मदन पांडे को बधाई दे रहे हैं और 27 तारीख को आज सुबह कार्यक्रम और आपकी पसंद के मधुर मधुर गीतों के लिए मानस तिवारी को बधाई दे रहे हैं और 27 तारीख को खुशबू जी को शाम के ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम के लिए बधाई दे रहे हैं। 28 तारीख को किसान वाणी कार्यक्रम में राजू भैया ने ग्राम कछार विकास खंड मस्तूरी के सब्जी उत्पादक गौपालक किसानों के साथ बहुत बढ़िया बातचीत की और जानकारी दी, कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा। और 29 तारीख को हेलो आपकी पसंद सुनकर ये मंत्र मुग्ध हो गए, पद्मा जी को बधाई दे रहे हैं। 29 तारीख को रजनीगंधा कार्यक्रम श्वेता ने प्रस्तुत किया, नीला नायडू अभिनेत्री के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी मिली और गीत भी सुनवाए गए, उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। लिखते हैं कि बरसात बहुत बढ़िया हो रही है, लेकिन पिछले दिनों की बारिश में बिलासपुर डूब गया था, हमारे घर के अंदर भी पानी आ गया था, भगवान करे ऐसे हालात फिर से ना आए। सही बात है
1: जी,
0: कुछ अतिवृष्टि जब होती है नेमीचंद जी तो सारी जगह पानी भर जाता है और जो निचले इलाके हैं और खास करके हमारी जो ड्रेनेज व्यवस्था है वो उतनी सुचारू और सुदृढ़ नहीं है कि इस पूरे पानी की निकासी अच्छे से कर सके, और इसी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया था। तो आपस में सहयोग जरूर करें, एक दूसरे का ध्यान रखें, यही दोस्ती काम आती है ऐसे समय में जब हम प्राकृतिक आपदा से घिरते हैं। पत्र के लिए इनका भी धन्यवाद देते हैं। अगला पत्र कहाँ से आया?
1: पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू का। इन्होंने 25 जून को 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में मनोरोग कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर अभिषेक गुप्ता से रमा शंकर की बातचीत इन्हें काफी अच्छी लगी। लिखे हैं कि जिस तरह से शरीर के अन्य रोग होते हैं उसी तरह से मस्तिष्क के या मानसिक स्वास्थ्य भी एक बीमारी है, जिसको सही समय पर चिकित्सक को दिखाकर इलाज कराकर स्वास्थ्य लाभ पाया जा सकता है।
0: सही बात है, बिल्कुल सही। हम अभी भी मनोरोगों के संदर्भ में काफी पीछे रहते हैं, हम शरीर के सभी अंगों के बारे में सोचते हैं लेकिन जहां मन की बात आती है हमको लगता है कि ये कोई शर्म की बात है, इस पर बात नहीं करनी चाहिए, इसे दिखाना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे मनोरोग हैं लगभग 80% के करीब जो सिर्फ डॉक्टर की सलाह और काउंसलिंग से ही दूर हो सकते हैं, उसके लिए किसी दवाई की ही जरूरत नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में जागरूकता इस कार्यक्रम के माध्यम से आई, हमें पत्र मिला, हमारे श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं नेमीचंद जी। और ये अगला पत्र हमारे पास आया है, लिखने वाले हमारे श्रोता है बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही, पूजा छुटकी, शरद डोडवानी, किरत राय वाधवानी, प्रदीप कुमार साहू और पूरा उनका कुटुंब। लिखते हैं कि 24 तारीख का रजनीगंधा कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा, अंतर मन को छू गया, मनोज कुमार पर केंद्रित कर अंतरा जी ने प्रस्तुत किया था, इसके लिए हमें बधाई देते हैं। और 25 तारीख का रजनीगंधा सुजाता राय जी ने प्रस्तुत किया था और बहुत सारी बातचीत इसमें इन्हें अच्छी लगी और गीत भी बहुत अच्छे लगे, इसके लिए भी हमें बधाइयां दे रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि सोमवार को तुहर गोट हमर गीत कार्यक्रम मदन जी ने प्रस्तुत किया था, इन्हें बहुत अच्छा लगा और सुबह आपकी पसंद मानस जी की प्रस्तुति में भी इन्हें बहुत अच्छा लगा, इस कार्यक्रम के लिए हमें बधाई दे रहे हैं। और 29 तारीख का कार्यक्रम रजनीगंधा, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था इसलिए बहुत अच्छे से तो नहीं सुन पाए लेकिन कार्यक्रम बहुत

0: लगा जहां जहां भी ये सुन पाए। इन सभी कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी बिलासपुर परिवार को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं।
1: इन पत्रों के लिए इनका धन्यवाद। साथ ही सुप्रिया जी, अभी हमारा एक नया वेव्स ऐप भी आया है जिसके माध्यम से श्रोता अच्छी गुणवत्ता में हमारा रेडियो का प्रसारण सुन सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से वेव्स ऐप डाउनलोड करके भी आकाशवाणी बिलासपुर के कार्यक्रम
0: सुने जा सकते,
1: अच्छी गुणवत्ता में सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और इसी संदर्भ में एक पत्र को भी मैं शामिल करना चाहूंगी
1: जी।
0: ये हमारे श्रोता है जम्मू कश्मीर से लिखने वाले हैं, पुरुषोत्तम कुमार, डंडी तहसील भद्रावा, जिला डोडा से।
1: जी,
0: ये लिखते हैं कि मैं बचपन से रेडियो सुनता आ रहा हूँ और आप बुलंदियों को छू रहे हैं। एक जमाना था जब रेडियो सुनने के लिए लोग घरों में जाते थे और किसी बच्चे ने शोर किया तो उसको डांट देते थे। हम रेडियो लेकर पशुओं को चराने जाते थे, पिकनिक में जाते थे, बड़ी कदर होती थी। लेकिन मोबाइल ने आज सब कुछ छीन लिया है। तो यही बात हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि मोबाइल ने छीना नहीं है,
1: बिलासपुर के कार्यक्रम
0: सुने जा सकते,
1: अच्छी गुणवत्ता में सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और इसी संदर्भ में एक पत्र को भी मैं शामिल करना चाहूंगी
1: जी।
0: ये हमारे श्रोता है जम्मू कश्मीर से लिखने वाले हैं, पुरुषोत्तम कुमार, डंडी तहसील भद्रावा, जिला डोडा से। ये लिखते हैं कि मैं बचपन से रेडियो सुनता आ रहा हूँ और आप बुलंदियों को छू रहे हैं। एक जमाना था जब रेडियो सुनने के लिए लोग घरों में जाते थे और किसी बच्चे ने शोर किया तो उसको डांट देते थे। हम रेडियो लेकर पशुओं को चराने जाते थे, पिकनिक में जाते थे, बड़ी कदर होती थी। लेकिन मोबाइल ने आज सब कुछ छीन लिया है। तो यही बात हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि मोबाइल ने छीना नहीं है, बल्कि रेडियो को हर हाथ में पहुंचा दिया है। जैसे अभी निमी चंद जी ने बताया, तो आप भी अपने मोबाइल में वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज ऑन एयर डाउनलोड कर सकते हैं और दुनिया में कहीं भी बैठकर आकाशवाणी बिलासपुर, और हम तो ये कहें कि पूरे भारत के किसी भी चैनल को सुन सकते हैं
1: जी।
0: तो पत्र के लिए इनका भी धन्यवाद देते हैं
1: जी। अगला मेल हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दूली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू का।
0: क्या लिखते हैं?
1: ये लिखते हैं, आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा 26 तारीख को प्रसारित सभी कार्यक्रम इन्हें बहुत ही अच्छा लगा।
0: चलिए, क्या बात है, पत्र के लिए इनका भी धन्यवाद देते हैं। और ये अगला पत्र है सिंगारवाड़ी घुटकू से, भगत राम पटेल, किशन, सोनम, मानवी पटेल लिखते हैं कि कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो सच बात है। और लिखते हैं कि शरीर स्वस्थ हो तो सभी कार्य समय पर पूरे होते हैं। और इसी संदर्भ में जो हमने डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम प्रसारित किया था, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की, वो कार्यक्रम इन्हें भी अच्छा लगा और हमें धन्यवाद देते हैं। हम भी हमारे श्रोताओं को पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं
1: जी। अगला मेल हमें मिला है उड़नताल विकासखंड बिल्हा से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, आकांक्षा एवं समीर गायकवाड़ का।
0: क्या लिखते हैं?
1: इन्हें 24 जुलाई का कार्यक्रम गुंजेश्वर गांव के, 25 जुलाई का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने, 26 जुलाई की ग्राम सभा में आप मन के गीत और 27 जुलाई की तुहर गोठ हमर गीत प्रस्तुति मदन पांडे की। ये सभी कार्यक्रम इन्हें बहुत ही रोचक, मनभावन पूर्ण, सुरुचिपूर्ण एवं अच्छा लगा। साथ ही पूरे आकाशवाणी परिवार को इन्होंने कोटिशह बधाई भी दिए हैं।
0: बहुत सुंदर और अच्छा लगा कि आपने बड़े गागर में सागर भरते हुए बहुत सारी बातें एक छोटे से पत्र में लिख भेजी है। पत्र के लिए हम आपका भी धन्यवाद देते हैं। सुनते रहिए और पत्र भेजिए। और ये अगला ईमेल आया है नेमीचंद जी, भाटापारा से, बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सियाराम चोवाराम, सूरज बारेकर और नारायण येदू का। 30 जुलाई को श्वेता पांडे द्वारा प्रस्तुत माटी का स्वर कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत प्रस्तुति के लिए बधाई दे रहे हैं। और आज ही सावन मास भी आरंभ हो रहा है, इसके लिए भी ये हम सभी को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि 23 तारीख का चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनील चिपड़े और सुप्रिया जी की प्रस्तुति में इन्हें बहुत अच्छा लगा, बधाई दे रहे हैं। 24 तारीख को अपेक्षा शर्मा की आपकी पसंद की प्रस्तुति अच्छी लगी। 24 तारीख को रजनीगंधा अंतरा ने मनोज कुमार जी की जन्म जयंती पर और उत्तम कुमार जी की पुण्यतिथि पर केंद्रित करके बहुत ही शानदार ढंग से प्रस्तुत किया था, उन्हें भी बधाई। 26 जुलाई का ग्राम सभा अच्छा लगा, वीरेंद्र भैया की प्रस्तुति में आप मन के गीत इन्होंने सुने, अच्छा लगा। 27 तारीख को मानस तिवारी का यादों के झरोके से प्रस्तुति और आपकी पसंद की प्रस्तुति अच्छी लगी, मानस जी को बधाई। और 27 तारीख को खुशबू जी द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा कार्यक्रम गायिका चित्रा के जन्मदिन पर केंद्रित करके प्रस्तुत किया गया था, ये भी इन्हें बहुत अच्छा लगा निमिचंद जी। इतने सारे कार्यक्रमों के लिए हमें बधाइयां आ रही है और ये सारी बधाइयां इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी प्रस्तुतकर्ताओं तक पहुँच रही है, तो पत्र के लिए इनका भी धन्यवाद
1: जी। जी, अगला मेल हमें मिला है सुप्रिया जी मदनपुर कवर्धा से, श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू का। ये लिखते हैं, हमें चिट्ठी मिली माटी के स्वर, हेलो आपकी पसंद, ईमेल करें गीत सुने, ये कार्यक्रम सर्वाधिक पसंद आता है।
0: वाह,
1: इन कार्यक्रमों से हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है और बहरहाल सफल प्रसारण के लिए आकाशवाणी परिवार को बधाई भी प्रेषित किए हैं।
0: हमारा उद्देश्य रहता है कि जो कुछ हमारे श्रोता चाहते हैं, जो जरूरतें हैं समाज की, जो आवश्यकताएं हैं, जहां जागरूकता की जरूरत है, वो सारी बातें हम रेडियो के माध्यम से, हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बड़े ही रोचक अंदाज में आप तक पहुँचा सकें। कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है, जानकर अच्छा लगा। पत्र के लिए इनका धन्यवाद देते हैं नेमी जी। और ये पत्र हमारे पास आए हैं बुड़गहन से, रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति के। इन्होंने 26 तारीख को ग्राम सभा में आप मन के गीत कार्यक्रम को पसंद किया है, बहुत सारे पत्र शामिल हुए, सुंदर गीत सुनवाए, वीरेंद्र भैया को बधाई दे रहे हैं। फिर तुहर गोट हमर गीत 27 जुलाई का इन्हें बहुत अच्छा लगा, जो बातचीत थी बहुत बढ़िया थी, उसके लिए प्रस्तुतकर्ता को बधाई दे रहे हैं। और 29 तारीख को फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद बड़े ही दिलकश अंदाज में प्रस्तुत किया पद्मामणि ने, बातचीत

0: जीत भी अच्छी थी, गीत भी अच्छे थे, दिलकश प्रस्तुति के लिए बधाइयां दे रहे हैं। तो पत्रों के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। अगला मेल हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से रेणु शुक्ला, राजेश कुमार शुक्ला, वैभव शुक्ला, विनी मिश्रा। दिनांक 27 जुलाई, हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम में पद्मा जी की प्रस्तुति इन्हें बहुत अच्छी लगी। इसके लिए आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित किए हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्र के लिए। और नेमी जी, ये अगला पत्र जो मेरे हाथ में है, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश, नेहा वान्या सिंगरौल का 23 तारीख को चित्री मिली कार्यक्रम सुनने का अवसर मिला। बहुत ही सटीक, सहज और रोचक ढंग से श्रोताओं द्वारा भेजे गए ईमेल के उत्तर दिए गए। सुप्रिया भारतीयन जी और सुनील चिपड़े जी को बधाई दे रहे हैं और आगे लिखते हैं कि ईमेल करेगी सुने माटी के स्वर आपकी पसंद, आज सुबह चिंतन, किसानवाणी, युवा जगत, कानून की बात, उमंग कार्यक्रम और फोन इन फरमाइश, हेलो आपकी पसंद, सब कुछ इन्होंने सुना है सप्ताह भर का। सभी उत्कृष्ट प्रस्तुतियां थी, इन्हें बहुत अच्छा लगा और पूरी टीम को बधाई दे रहे हैं। तो भाई आपको भी ढेर ढेर सारा धन्यवाद।
1: अगला पत्र है सुप्रिया जी, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सी, अनुभव सी, ऋषभ सी, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे, माटी के स्वर तथा आप मन के गीत और छत्तीसगढ़ी गीत के अन्य क्रम में श्रीमती तीजन बाई के पंडवानी सुनवाने की कृपा करें।
0: तो नेमी चंद जी, हम अपने श्रोताओं को बताएं कि लगातार पिछले महीने हमने तीजन बाई जी की पंडवानी हमारे श्रोताओं को सुनाई है और निश्चित तौर पर जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है वो तो अमर है और उनके गीत हम लगातार आकाशवाणी से आपको सुनवाते रहेंगे
1: जी। साथ ही लिखते हैं महिला सभा के कार्यक्रम और फोन इन कार्यक्रम भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए पत्र के लिए इनका भी धन्यवाद दे देते हैं
1: जी।
0: निमिचंद जी, और ये अगला ईमेल हमारे पास आया है
1: जी,
0: बरेली कैंट चनहेटी उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं विनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान
1: जी।
0: 23 तारीख का चिट्ठी मिली कार्यक्रम इन्हें भी बहुत अच्छा लगा। 24 तारीख को अपेक्षा द्वारा आज सुबह और सदाबहार गीतों की प्रस्तुति अच्छी लगी। रजनीगंधा में अंतरा की प्रस्तुति जो मनोज कुमार पर केंद्रित थी अच्छी लगी। 25 तारीख को रजनीगंधा कार्यक्रम सुजाता जी की प्रस्तुति थी वो भी अच्छा लगा। 27 तारीख को मानस जी ने आज सुबह और यादों के झरोके से कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो भी इन्हें अच्छी लगी। और एस चित्रा के गीतों को रजनीगंधा में खुशबू ने बड़े खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया वो भी अच्छा लगा। और 29 तारीख को यादों के झरोके से कार्यक्रम में गीत बहुत अच्छे लगे। और सभी शानदार प्रस्तुतियों के लिए आकाशवाणी बिलासपुर परिवार को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं।
1: जी,
0: इतने
1: जी।
0: प्यारे से पत्र के लिए आपको भी बहुत सारा धन्यवाद।
1: अगला पत्र है सुप्रिया जी, बिरगांव तखतपुर से जयमून, दिलीप, भुवनेश्वर और रमायनी का।
0: क्या लिखते हैं?
1: ये लिखते हैं, मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूँ, पोस्ट कार्ड में फरमाइशी गीत आपकी पसंद माटी के स्वर भेजता हूँ, पर लंबे समय से शामिल नहीं हो पा रहा है,
0: हम देखते
1: क्या कारण
0: हैं?
1: है?
0: बिल्कुल, इस संदर्भ में हम अपने श्रोताओं को बोलेंगे कि भी बरसात के कारण बड़े विलंब से पत्र हम तक पहुँच रहे हैं पोस्ट ऑफिस से। यदि आपका पत्र समय से पहुँचेगा तो कार्यक्रम में शामिल होगा, लेकिन फिर भी हम आपके नाम से आपके पत्र की खोज जरूर करेंगे। आपने सूचना दी है, पत्र के लिए आपका हम धन्यवाद देते हैं। और ये जो अगला पत्र है ये देवरी भाटापारा से आया है नेमीचंद जी। लिखने वाले हैं गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनेश्वर, फानेश्वर, मुकेश, हाव्या और तानिया रजक। ये लिखते हैं कि 26 जुलाई को जो आप मन के गीत की प्रस्तुति थी इन्हें बहुत अच्छी लगी, वीरेंद्र भाई को बधाई दे रहे हैं। 30 तारीख को माटी का स्वर कार्यक्रम सावन के लगते ही बड़े सुंदर गीतों के साथ प्रस्तुत किया गया, श्वेता को बधाई दे रहे हैं। और आकाशवाणी बिलासपुर को इतने खूबसूरत कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए सारी बधाई दे रहे हैं। पत्र के लिए आपका भी हम धन्यवाद दे देते हैं।
1: अगला मेल हमें मिला है रतनपुर सिल्ली निर्धि से नरेंद्र कश्यप, गणेशिया कश्यप, आयुष कश्यप, लीना कश्यप और करण कश्यप का। ये लिखते हैं, चिट्ठी मिली कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को सादर नमस्कार और दिनांक 30 जुलाई को माटी के स्वर और सदाबहार नगमे की प्रस्तुति इन्हें बहुत ही अच्छी लगी, सफल प्रस्तुति के लिए पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई और धन्यवाद।
0: आपको भी पत्र के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और ये अगला ईमेल हमारे पास आया है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन। ये लिखते हैं कि आपके सभी कार्यक्रम हमको बहुत सुंदर लगते हैं, बड़े ही आकर्षक रहते हैं। कई बार हम समय अभाव में सुन नहीं पाते हैं तो बड़ा दुख होता है, लेकिन ऐसा कम समय ही आता है क्योंकि इतनी बेहतरीन प्रस्तुति रहती है कि हम तारीफ के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाया करते हैं। तो क्या बात है, ये प्रेम का बंधन बनाए रखिएगा जैसे इन्होंने कहा। हम भी बनाए रखें। और चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुना बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन प्रस्तुति थी। सुनील चिपड़े सुप्रिया जी दोनों को बधाई दे रहे हैं। बहुत सारे पत्रों को इस कदर शामिल किया गया कि समय का पता ही नहीं चला। सही बात है, आपके पत्र इतने सुंदर रहते हैं कि हमें भी पता नहीं चलता कि कब समय पूरा हो जाता है।

0: फिर आगे लिखते हैं कि तुहर गोठ हमर गीत मदन पांडे जी की प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, उसके लिए बधाई दे रहे। वीरेंद्र भाई की प्रस्तुति में आप मन के गीत अच्छा लगा। अंतरा बहनी ने और श्वेता बहनी ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। सभी हमारे प्रस्तुतकर्ताओं ने पूरे सप्ताह भर के कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया, उसके लिए वो सभी को बधाइयां दे रहे हैं। तो आपके पत्र के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: सुप्रिया जी। अगला पत्र है दतरेंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा का। ये लिखते हैं, गुरुवार सुबह माटी के स्वर कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी लोक गीतों को सुनकर दिल खुशी से झूम उठा।
0: वाह,
1: सभी गीतों का चयन लाजवाब था। इसके अलावा आकाशवाणी बिलासपुर से प्रसारित सभी कार्यक्रम हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, प्रतिक्रिया भी भेजते हैं, शामिल भी होता है, अच्छा लगता है। आकाशवाणी बिलासपुर परिवार को दिल से धन्यवाद।
0: देखिए, कहीं शिकायत होती तो कहीं तारीफ भी होती कि प्रतिक्रिया शामिल होती है, अच्छा लगता है
1: जी।
0: ये सुनकर हमें भी अच्छा लगता है। छोटी मोटी शिकायतें रहती है नेमीचंद
1: जी,
0: लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे सभी श्रोताओं के पत्र भी समय से शामिल हो, उनके ईमेल भी शामिल हो और वो ऐसे ही खुशी से भर कर पत्र भेजे। और ये जो ईमेल हमारे पास आया है, अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा
1: जी।
0: लिखते हैं कि 25 जुलाई को समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह इन्होंने भी सुना, बहुत अच्छा लगा। 27 तारीख को ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा। 8-15 को रजनीगंधा भी बहुत अच्छा लगा, खुशबू को बधाइयां दे रहे हैं। 28 तारीख को साहित्यिक पत्रिका साहित्य की इन्होंने सुनी
1: जी,
0: जिसमें डॉक्टर विनोद गुप्ता से हास्य और व्यंग्य पर आधारित वार्ता और मकर ध्वज जी से काव्य पाठ इन्होंने सुना, बहुत अच्छा लगा। दोनों ही प्रस्तुतकर्ताओं को ये बधाइयां दे रहे हैं। पूरे आकाशवाणी परिवार को सभी कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। पत्र के लिए आपका भी धन्यवाद।
1: अगला मेल हमें मिला है सुप्रिया जी, नैला बोरसरा जांजगीर से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी, अमन कुमार तिवारी, मीनाक्षी तिवारी, उमाबाई तिवारी, ठगिया देवी तिवारी और विष्णु प्रसाद तिवारी का।
0: क्या लिखते हैं?
1: ये लिखते हैं, माटी का स्वर आपकी पसंद, ईमेल करे गीत सुने। खेती बाड़ी की जानकारी, रोजगार की जानकारी हमें बहुत ही अच्छी लगती है और हम नियमित रूप से बड़े ध्यान से आकाशवाणी बिलासपुर के कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: क्या बात है, पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं। सुनते रहिए, पत्र भेजिए, अपनी समीक्षा और सुझाव हम तक जरूर लिख भेजिए। और ये आखिरी ईमेल है लेकिन बड़ा सुंदर सा है, हमेशा की तरह सजा धजा ईमेल हमारे श्रोताओं ने भेजा है। और ये श्रोता है नेमीचंद जी, तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, छनुला श्रीवास, सुशील देवांगन और एसएन प्रजापति, सावन की पहली फुहार पर हमें बधाइयां आई हैं और बहुत सुंदर सा चित्र बना हुआ है। हम भी हमारे सभी श्रोताओं को इस खूबसूरत फुहार, इस रिमझिम बारिश और हरियाली की सौगात की कामना करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं।
1: सुप्रिया जी, इसी पत्र में उन्होंने रंगीन पेन का उपयोग करके उन्होंने 31 जुलाई को मोहम्मद रफी जी की पुण्यतिथि और मुंशी प्रेमचंद की जयंती का उल्लेख करते हुए,
0: सच बात है,
1: इस अवसर पर समस्त श्रोता भाई बहन एवं आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित किए हैं।
0: सही बात है नेमीचंद जी,
1: जी
0: एक अद्भुत संयोग है
1: जी,
0: मोहम्मद रफी को भी याद करने का और मुंशी प्रेमचंद को भी याद करने का, जिन्होंने पूरे भारतीय समाज में साहित्य की एक आधारशिला रखी और वो ऐसे स्तंभ बने कि वो आज भी उनका प्रकाश पूरे साहित्य जगत को आलोकित करता रहता है
1: जी।
0: तो प्रेमचंद जी का होना हमारे लिए गर्व की बात है, उनकी समसामयिकता हमेशा रहेगी। 40, 50, 60, 70 के दशक में लिखी हुई बातें आज भी उतनी ही सामयिक हैं, वैसी मोहम्मद रफी की आवाज़ है
1: जी,
0: जो सदा सदा इसी तरह गाई जाएगी, गुनगुनाई जाएगी, उनके गीत हम सुनेंगे और उन्हें याद करेंगे
1: जी।
0: क्या बात है, पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं। और अब चलने का समय हो गया है तो हमारे श्रोताओं को पता बता दिया जाए
1: जी। हमारा ईमेल का पता है patra@bsp.com
0: और हमारा पोस्ट कार्ड का पता है, हालांकि एक भी पोस्ट कार्ड देखिए आज हमें मिल नहीं पाया है
1: जी,
0: लेकिन पोस्ट कार्ड का पता हम श्रोताओं को बता दें क्योंकि इस कार्यक्रम में भी हम पोस्ट कार्ड स्वीकार कर रहे हैं। कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी बिलासपुर, नूतन कॉलोनी, सरकंडा बिलासपुर, और हमारा पिन है 495006। तो अब श्रोताओं से विदा लेते हैं नेमीचंद जी,
1: जी।
0: बातें वही कुछ है कि जल का संरक्षण करें, कैच द रेन वेयर इट रेन्स व्हेन इट कम्स, क्योंकि जरूरी है। ये बारिश जो दिख रही है ये इसके बारे में बहुत अच्छा प्रेडिक्शन नहीं है, मतलब संभावना ऐसी भी होंगी कि अचानक से रुक भी सकती है, तो जहां जहां उसको संग्रह कर सकें कर लीजिए, हरियाली बनी रहे, हम सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के अच्छे रहें
1: जी।
0: तो कार्यक्रम से विदा लेते हैं, सभी श्रोताओं को सुप्रिया
1: और नेमीचंद का
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिट्ठी मिली, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और नेमी चंद। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। आइए आप सुनते हैं ये संदेश।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है और अब आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं राग दरबारी कन्हारा, विलंबित नाद अनाद।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग दरबारी कन्हारा, विलंबित नाद अनाद। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ क्षणों के बाद समाचार संध्या और 9:09 अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
4: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
5: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों

0: के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की, उन पर लागू नहीं होगा।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
2: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि किशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने

0: बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आप तो ऐसे न थे फिल्म का गाना। गीत निदा फाजली का है, संगीत उषा खन्ना का।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए कर्तव्य फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीत कफील आजर का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अप्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम चार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए।

0: प्याले में।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें उस गायक की जो कभी अपनी नर्मो नाजुक आवाज से आपको लुभाते हैं। तुझे तक

आज है सुरीले गायक सोनू निगम का जन्मदिन। आइए आज के फनकार कार्यक्रम में बातें करें जाने माने गायक सोनू निगम की।

से हीरो तक सफर तय करने वाले सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता अगम कुमार दिल्ली के मशहूर स्टेज गायक थे। अपने पिता की उंगली थाम सोनू ने 3 साल की नन्ही अवस्था से ही गायन का सफर शुरू कर दिया। अपने पिता के मार्गदर्शन में ही सोनू निगम ने अपने करियर के आकाश में रंग भरने शुरू किए। दिल्ली की बर्थडे पार्टियों और विवाह समारोहों में गाना गाने से लेकर हिंदी फिल्मों में सफल पार्श्व गायन तक सफर तय करना सोनू निगम के लिए काफी जटिल और संघर्षमय रहा, लेकिन उनके आत्मविश्वास, लगन और उनकी प्रतिभा ने कामयाबी का बुलंद सितारा बनाया।

सोनू निगम के बचपन के दिन काफी संघर्ष में रहे। उन्होंने 12वीं क्लास तक दिल्ली में पढ़ाई की, उसके बाद पत्राचार माध्यम से पढ़ा और शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से संगीत की तालीम ली। दिल्ली के बाद सोनू निगम मुंबई आए और शुरू हुई उनकी जद्दोजहद। शुरुआत में उन्हें कई इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उन्होंने कई म्यूजिकल शो में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। बाल कलाकार के रूप में जब उन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया तो उनके पास पुरस्कारों की झड़ी लग गई।

अपने करियर की शुरुआत में सोनू निगम मोहम्मद रफी की आवाज में गाने गाया करते थे। धीरे धीरे वे मोहम्मद रफी की आवाज बन गए थे। टी सीरीज की रफी की यादें नामक एल्बम के लिए सोनू निगम ने मोहम्मद रफी के गीत गाना शुरू किया। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का अवसर दिया। बतौर पार्श्व गायक सोनू ने अपना पहला गीत गाया फिल्म आजा मेरी जान के लिए। उन्हीं दिनों वे रेडियो के लिए विज्ञापन बनाने लगे। साथ ही 1995 में एक टेलीविजन चैनल के लिए मशहूर कार्यक्रम सारे गामा का संचालन भी शुरू कर दिया। पलक झपकते ही ये कार्यक्रम कामयाबी के परचम लहराने लगा। इसके बाद सोनू निगम को फिल्म बेवफा सनम के लिए गाने का मौका मिला। गाना था

1999 में सोनू निगम का नॉन फिल्मी गीतों का एल्बम दीवाना रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने प्रेम गीतों में अपना जलवा दिखाया। मोहब्बत करने वाले जोड़े अपनी मोहब्बत का इजहार दीवाना एल्बम के गीतों से आज भी करते हैं।

नदीम श्रवण के संगीत से सजी फिल्म परदेश का सोनू निगम का ये गाना खूब मकबूल हुआ। ये दिल दीवाना गाने ने लोगों को दीवाना बना दिया।

के बाद मोहम्मद रफी की परछाई कहलाने का फैसला सोनू निगम ने बदल दिया और अपनी एक अलग खास पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी हर कोशिश कामयाब रही। उनके गायन का उच्च शिखर आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया।

सोनू निगम ने कई भाषाओं में गाने गाए, मसलन कन्नड़, असमिया, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम वगैरह वगैरह। कई भाषाओं के साथ ही साथ हर तरह के गाने उन्होंने गाए। हर मिजाज का गाना दिल की धड़कनों तक उतरा। चाहे खुशी भरा पार्टी गीत हो, प्रणय निवेदन करता प्रेम गीत हो, उदास गीत हो या दर्द से रुला देने वाला गीत हो, हर गीत में उनकी आवाज बेमिसाल होती है। दिल को चीर देने वाला गम के सागर में डूबा, फिल्म के दृश्य को आंखों के सामने ला, आंसुओं से सराबोर करता ये गीत सुनिए।

मजबूरियों से हारो मत, उनका डटकर मुकाबला करो। इस फलसफे के साथ सोनू निगम ने करियर के कई आयाम तय किए। शास्त्रीय संगीत का खूब रियाज किया उन्होंने। ये रियाज उनके गायन में खूब झलकता है। अभिनय में भी उन्होंने अपना करियर आजमाया। फिल्म बेताब में वे बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर नजर आए थे। बाद में जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल जैसी फिल्मों में नजर आए। फिलहाल सुना जाए ये गाना।

सोनू निगम ने कई म्यूजिकल शो में जज बनकर और होस्ट बनकर छोटे पर्दे पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनके स्टेज शोज खूब हिट होते हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। सोनू निगम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आइए एक नजर डालें। फिल्म कल हो न हो इस गाने के लिए सोनू निगम को मिला सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार।

इसके अलावा सोनू निगम को देश विदेश के अनगिनत पुरस्कार मिलते रहते हैं। लंबी फेहरिस्त है उन्हें मिले पुरस्कारों की। आइए सोनू निगम के कुछ मशहूर गीतों पर नजर डालें। ये फिल्म है रिफ्यू।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक सोनू निगम पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 MHz पर रात के 10 बजने को है। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण कुछ ही क्षणों के बाद हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: 2024 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और संघर्ष विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश के भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने कहा कि केश्म द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकोण स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसी प्रकार का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिनों तक रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides
3: management and audit of biodiversity fund and field level monitoring and conservation activities. Sir, as per the Maharashtra is concerned, 11 crore rupees, the ABS amount sanctioned, including the administrative charges also, and definitely it's providing the benefit, the concerned community, which is the question is raised by the particular member. Yes.
4: Also. Third, supplementary. श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार मिट्टल जी,
5: एनवायरनमेंट तथा बायोडाइवर्सिटी के मैनेजमेंट

0: में महिलाओं की भागीदारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थानीय स्तर पर वन उत्पादों के कलेक्शन और प्रोटेक्शन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल ग्रांट्स में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं? इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुरक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए? धन्यवाद।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो बायोडायवर्सिटी का विषय है वह हमारी विकास की प्राथमिकताओं में है। बायोडायवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है। और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। और ये निश्चित रूप से देश की बायोडायवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है। इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी।
3: धन्यवाद सभापति महोदय। बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडाइवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो मेरा प्रश्न है और दूसरा भी इससे जुड़ा है कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडाइवर्सिटी हम कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडाइवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या? ये मेरा प्रश्न है।
2: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है। वो बायोडायवर्सिटी से अलग है। अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 122, श्रीमान ए रहीम जी।
4: प्रश्न संख्या 122, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? ख, श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है? ग, क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है? और घ, क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनकी रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू पी विल्सन जी।
5: थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन from the International Labour Organization Convention on the Decent Work in the Platform Economy, which seeks to set minimum standards for the gig and platform workers and was supported by the both Indian employers and workers, especially when such abstention risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
1: Honorable Minister.
4: Dr. Mansukh Mandaviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
6: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चन पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है, और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने

0: वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है, और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी आईएलओ ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है, हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है। कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इंप्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रमोद बोरा जी।
2: ऑनरेबल चेयरमैन सर, विथ रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, विल द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट इफ एनी असेसमेंट हैज बीन मेड ऑन हाउ the new 50% basic wage rule under the code on wages will impact workers eligibility under the 21,000 ESIC ceiling, and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
1: Honorable Minister.
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट में हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला यह देश बना। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो, और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट ESIC के लाभार्थी नहीं थे, EPFO में उसको लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी लेबर कोड यह सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा, और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ESIC के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर्स उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था, लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा, और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राइमरी सर्वे करा था, और हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया, ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा। 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा। और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क

0: प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिला के हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
2: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उस इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए, जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है, वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
3: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदला है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं, और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदले और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है, ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया, तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा आईटीआई की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक आईटीआई काम करेगी और स्पोक के रूप में ये इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हांसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है? भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको की कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए, ताकि जिसको जॉब चाहिए और जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है, ऐसा स्किल वर्कर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई, तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए, ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय

0: बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट में हमने सुनिश्चित करी है।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 123 श्रीमान संतोष कुमार पी।
2: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? ख, क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ग, क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है? और घ,

0: संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है। और घ, देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
2: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये विषय लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेस है इंक्लूडिंग वीडीए पर डे, वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है, तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर भी है, तीन क्लासिफिकेशंस दी है, ए, बी एंड सी। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है बड़े जगह हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए, और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है, ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पुरता खाना मिले, और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। ये सारी व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है। और जब वेजेस तय करी जाती है तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन, घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था, आज अभी मोबाइल तो हम काउंट ना करें वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है। और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था, स्टेट उसको माने या नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है, तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं उसमें से सभी राज्य अपने। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्प विकसित प्रदेश भी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का ABC यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक का दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा, और फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में दो बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है उसके अनुसार ऐड होता है, और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी।
4: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 year once और 3 year once और 2 year once रेगुलरली। द मिनिस्ट्री शुड अनाउंस द मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर विदाउट फेल। सर, द मिनिमम वेजेस नॉट अनाउंस्ड ईयरली बाय द मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री हैज एनी प्रपोजल टू अनाउंस मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट विल हेल्प द लेबर्स अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में दो बार VDS के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको

0: प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के, अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
2: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ सर। माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास बिलोंग्स करते हैं, जो ऑन स्किल लेबर और स्किल लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है। वो बढ़ाने के कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे ओडिशा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंट्रेक्चुअल में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है। वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो, और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं। उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या, और ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, और बढ़ाने
0: की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना यूएसए 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेस पावर बढ़ता है, देश के नागरिक का परचेस पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहाँ जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको, हेल्थ वर्कर्स को अपने सैलरी बढ़नी चाहिए सभी राज्य को, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ। भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं। किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 124 श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
3: 124
4: प्रश्न संख्या 124, क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांगजनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है? ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है? और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
1: मिस्टर
4: रक्षा निखिल खडसे, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री।
3: पे रखा है।
1: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
5: माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलीट्स हैं, इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं, और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है, और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी है?
6: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और के ऐसे

0: में इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स है वो टॉप स्कीम में भी है जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था। पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेके काफी अग्रसर भूमिका रखी और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी 5th है और जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए। तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है जहाँ पे हमारे महिला एथलीट्स भी काफी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी।
2: शुक्रिया चेयरमैन सर। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कहीं षड्यंत्र से हमें हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्ल कशी करना चाहता है। हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे आज वो स्कूलों में और खेलकूद के जरिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन का जहाँ उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा। शुक्रिया।
3: ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, 2 दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है सरकार की ओर से। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए एक बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए। इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे लेकिन हम हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग अलग सनडाउन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी, सारे देश की जिम्मेवारी है, वो हमारा युवा है, देश का भविष्य है, और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है।

0: और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इन्विटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इन्विटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई न कोई एक ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो, ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े। इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार।
2: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी, कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं, उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहूंगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं, 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग्स हो रही है पूरे देश में, और लगभग 6,00,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है। और इन्हीं लीग्स के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के, उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है। और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है, स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में, उनका भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा बढ़े, कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
4: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा नशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा, लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है, उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहां के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है, और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था, और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है, और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीजें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है, और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग, कई समस्या है। उसके लिए हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कई कारण है। आज बच्चे, उसकी स्थिति, उसका ट्रेस, उसकी जीवन शैली, ये सब एनवायरनमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना, और वहां जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है, और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 125 डॉक्टर ज्योति नागनाथ वाकमारे।
5: क्वेश्चन नंबर 125।

0: रवि शर्मन सर।
1: प्रश्न संख्या 125, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 31.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों में महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड 54% से अधिक हो जाने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है। ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर की कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सुनिश्चित कर रही है, और ग मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, मातृत्व लाभ तथा सुरक्षित कार्य वातावरण, जल, सफाई एवं स्वच्छता और संरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं।
2: फर्स्ट सप्लीमेंट्री यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
0: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों को तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।
2: ऑनरेबल मिनिस्टर
1: शोभा कारंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
3: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं, महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना, एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकारा है। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में क्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने था, अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3500 मैटरनल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली को हमें एक्सटेंशन किया है, वुमेन एम्प्लॉय के साथ इसका इन-लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला को, महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहा है, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इसका पहले का आंकड़ा ही नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ा ही नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसका आंकड़ किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोग सब्सक्राइब, नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है, नया सब्सक्राइबर। पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.69, लाइक इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके कारण है अलग अलग सर, हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं। अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में
4: एंटरप्राइजेस जुड़े हैं वो लोग बताएं।

0: हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, इसी में 40% महिला है सर, हमको बोलने के लिए खुशी होता है 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार मदद दिया, इसके कारण नए बच्चे नए नौजवान युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेन्योर्स बनाए हैं। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी अभी एक योजना शुरू किया, अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रंच का पैसा लोगों एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया, वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना, इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं एंड किसके लिए एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना एंड नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए, इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरा देश में महिला को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए जॉब दिलाने के लिए एंड सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर से सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार महिला हम बनाए, इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
2: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में इसको प्रवृत्त किया गया है, इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
0: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताई 29 कानूनों को हम निकाल के ब्रिटिश का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे वो कानून, हम ऐसे रखे थे उसको हम पूरे निकाल के अभी 4 कोड में लाया है, इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में, एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए, ऐसा हम किया है सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और यानी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए, महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं सर, वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर, ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था, पहले बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नई ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना एंड उसका सुरक्षित के लिए ध्यान रखना, ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं, ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर, एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
3: माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, ये मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: चेयरमैन सर, बिहार में ईश्रम पोर्टल में

0: 2 करोड़ लोग जुड़े हैं, इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ई श्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरों से सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर से, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है, ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.23 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पाटीदार जी।
2: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: कर दिया है, पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान हम रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया सर। थैंक यू।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
3: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
4: प्रश्न संख्या 126, क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ख आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ग उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है। और घ उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
4: श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार।
5: चेयरमैन सर, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। थैंक यू।
1: द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
3: थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, वाइल रिप्लाई इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, इट डज नॉट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द लीगल असिस्टेंस प्रोवाइडेड। सो माय पिन पॉइंट क्वेश्चन टू यू, हैज द गवर्नमेंट अंडरटेकन एनी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल एड, इंक्लूडिंग सक्सेस रेट, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन और क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
5: धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से संबंधित है और इसमें कितना खर्चावार कितने लोग लाभार्थी हुए, ये जवाब इनको दे दिया गया है। मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा है। ये जिलों में भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं। जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो उस स्टेट का नाम से साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में वो डालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं। जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं विगत 3 सालों में, तो 2023 और इसमें हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूँ कि हर जगह सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पे रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निःशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं। इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंदिया जी।
6: थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषा में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
5: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो

0: रीजनल लैंग्वेजेज हैं। अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है। और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है। ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे, विरासत को भी बचाएंगे। धन्यवाद।
1: The House stands adjourned to meet at 2 PM।
2: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today। This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani।
3: संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 11 बजने को है। कुछ ही क्षणों के बाद हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन

0: संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्रगीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gan Man and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Prime Minister Narendra Modi has said government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk." He said, "Keeping all this in mind, reforms in the education and examination system have become essential across the country, both in the states and at the centre." The Prime Minister said today Parliament has passed the bill containing stringent legal provisions.